0: घड़ी मिला लीजिए, इस वक्त सुबह के ठीक 5 बजे हैं।
1: आपकी खट्टी मीठी यादों में आपके संग MVC रेडियो

प्रभात आराधना हर सुबह 5 से 6 बजे तक भक्ति के मधुर सुरों में कीजिए ईश्वर की आराधना रेडियो मॉरिशस पर।

ईश्वर की आराधना के इन मधुर सुरों के साथ प्रभात आराधना का ये सफर यही समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे सुबह 5 बजे भक्ति के नए गीतों के साथ रेडियो मॉरिशस पर।

0: सुंदर है संक्षिप्त समाचार आपसे आस्था। नमस्कार।
1: नमस्कार। 6 बजे के प्रथम समाचारों में स्वागत है आप सभी का। ये नया दिन हम सभी के लिए शुभ हो। व्यापार मंत्री माकेल सिक्योन ने कलेबन में आयोजित प्रेस वार्ता में विपक्ष नेता के बयानों का दिया जवाब। उन्होंने कहा कि एसटीसी और सीबी के बीच हुए समझौते में तय दरों का पूरी तरह पालन किया गया है। मंत्री ने याद दिलाया कि ये समझौता वर्ष 2023 में हुआ था। उस समय जुली रोंगा ऊर्जा मंत्री थे। माकेल सिक्योन ने विपक्ष के आरोपों पर सवाल उठाते हुए सरकार की स्थिति को स्पष्ट किया है। मंत्री ने यह भी कहा कि एसटीसी रोजमर्रा के आवश्यक सामानों का आयात

0: करेगी इसके लिए जल्द ही टेंडर प्रक्रिया जारी की जाएगी वर्ष 2011 में स्थापित मॉरिशस रीयूनियन कॉन्टैक्ट ग्रुप आज इलाकाई सुरक्षा सहयोग का एक मजबूत मंच बन चुका है आंतरिक सुरक्षा समुद्री सुरक्षा और न्यायिक सहयोग से जुड़े कई उपसमितियों के माध्यम से हर 6 महीनों में बैठकें आयोजित की जाती हैं मुख्य उद्देश्य हैं इलाके में मादक पदार्थों की तस्करी और संगठित आपराधिक नेटवर्क पर प्रभावी प्रहार करना इस वर्ष जुलाई में यूएस अफ्रीका बिजनेस समिट का 18वां संस्करण मॉरिशस में आयोजित किया जाएगा 4 दिनों तक मोशवासी गल्फ एस्टेट अफ्रीका और अमेरिका के बीच उत्तरीय और आर्थिक व्यावसायिक चर्चाओं का केंद्र बनेगा आयोजकों के अनुसार इस सम्मेलन में 2500 से अधिक सरकारी प्रतिनिधि उद्योग जगत के प्रमुख हस्तियां भी इसमें शामिल होंगी जिनमें कम से कम 7 राष्ट्राध्यक्ष भी मौजूद रहेंगी हर वर्ष सड़क हादसों में लगभग 11,90,000 लोगों की जान जाती है दुनिया भर में हर दिन 3,000 से अधिक लोग सड़कों पर मौत का शिकार हो जाते हैं ये चिंताजनक आंकड़े WHO ने जारी की हैं जो वैश्विक स्वास्थ्य रुझानों पर निगरानी रखने वाली संयुक्त राष्ट्र की संस्था है आज सड़क दुर्घटनाएं 5 से 29 वर्ष के युवाओं में मौत का सबसे बड़ा कारण बन चुकी है ईरान में हुर्मुज समुद्री मार्ग में अमेरिका और ईरान के बीच तनाव फिर से तेज हो गया ईरानी मीडिया के अनुसार क्षेत्र में विस्फोट और गोलीबारी की घटनाएं हुई जबकि अमरीकी सेना ने दावा किया कि उसके युद्ध पोतों पर ईरान की ओर से मिसाइल ड्रोन और छोटी नौकाओं के जरिए हमले किए गए हैं और अब चलिए जानते हैं मौसम का हाल हमारे इलाके पर हल्की हवाओं का असर जारी है पूर्वानुमान आज सुबह के दौरान देश के ऊंचाइयों पर रह रहकर बरसात हो सकती है अन्य जगहों में दिन के दौरान धूप खिली रहेगी रात को ऊंचे इलाकों पर मौसम खराब रहेगा अन्य जगहों पर मौसम सुहाना रहेगा तापमान न्यूनतम तापमान सेंट्रल प्लाटू पर 17 से 19 डिग्री सेल्सियस अधिकतम 25 से 27 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम साहली इलाकों पर 21 से 24 अधिकतम 29 से 31 डिग्री सेल्सियस के बीच होगा हवा पूर्व दक्षिण पूर्व की दिशा से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी प्रवाल रेखा के परे समुद्र खराब रहेगा विशेषकर दक्षिण पश्चिम में 2 मीटर ऊंची लहरें उठेंगी समुद्र में नहीं निकलने की सलाह दी जाती है सूर्योदय 6:28 पर सूर्यास्त 5:44 पर होगा
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.TV, NBC Radio.TV.
2: RM3 Radio.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم उस मौला के नाम से इब्तिदा जिसके नामों की कोई इंतहा नहीं। मेरे अजीज सामईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहु। यौम जुम्मा मुबारक हो। आपकी खिदमत में ये खाकसार नागुद निसार हाजिर हैं और आपकी समागतों की नज़र है उर्दू प्रोग्राम सबाल खैर। जुम्मातुल मुबारक की इन लतीफ़ घड़ियों में हम दिल की अता गहराइयों से आप तमाम लोगों का इस्तकबाल करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, हुर्मत वाला महीना माहे दुलकादा हमारे दरमियान जारी व सारी है। वो मुबारक महीना जिसका ताल्लुक हज बैतुल्ला से जुड़ा हुआ है, वो अजीम इबादत जिसके लिए अहले ईमान दुनिया भर से मक्कातुल मुकर्रमा का रुख करते हैं, जहां दिल मदीने की हाजिरी के लिए धड़क उठते हैं, जहां लबों पर लब्बैक सजती है। सामईन, इसी खूबसूरत निस्बत की एक झलक आज हम अपने प्रोग्राम में पेश करेंगे। उम्मीद है आप आखिर तक हमारा साथ देंगे। आइए

हस्ब मामूल सबाल खैर का बाकायदा आगाज कलाम रब्बानी की तिलावत से करते हैं। बागौर वदब समात फरमाइए।

मुअज़्ज़ज़ सामईन, अभी आपने कुरान मुबीन की तिलावत समाअत फरमाई। बिलयकीन जिस मकाम पर कुरान मजीद फुरकान हमीद की तिलावत की जाती है वहाँ रहमत के फरिश्तों का नुज़ूल होता है। कुरान मुकद्दस एक पुरहिकमत आफाकी और लासानी किताब है। उसकी तिलावत बाईस अजर व सवाब और अमल बाईस निजात हैं। सामईन, तिलावत कलाम पाक के बाद ये हमदे बारी ताला मुलाइजा फरमाइए।

सामईन कराम, मदीना मुनव्वरा अफजल तरीन शहर है, और क्यों ना हो, क्योंकि ये शहर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। यहाँ महबूब खुदा मुहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा है। मदीना मुनव्वरा शहर मुहब्बत है। इस पाक शहर के 100 से ज़्यादा नाम हैं। मदीना पाक वो मुक़दस शहर हैं जिससे अल्लाह तबारक व ताला भी मुहब्बत फर

फरमाता है, उनके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मोहब्बत फरमाते हैं और अल्लाह तबारक वताला के फजल से उसकी अता से सहाबा इकराम से लेकर आज तक आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने से मोहब्बत करते हैं।

मोहतशम सामईन, उर्दू मजलिस सबाल खैर में निसार अख्तर एक बार फिर आप तमाम लोगों का इस्तकबाल करता है। मदीना तैबा अल्लाह अज़्ज़वजल का महबूब शहर है। रब्बे कदीर ने कुरान मुकद्दस में कई मकामात पर मदीना मुनव्वरा का जिक्र किया। ये वो पाक सरजमीन है जहां सुकून मिलता है, करार मिलता है, परेशान हालों को चैन मिलता है। गम के मारे वहां जाकर गमों से निजात पाते हैं।

सामईन कराम, मक्का मुकर्रमा वो मुबारक शहर है जिसे उम्मुल कुरा कहा जाता है। इसके बनने के 2000 साल पहले फरिश्ते उस मकाम पर तस्बीह किया करते थे। मक्का मुकर्रमा वो मुबारक शहर है जिसे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने आबाद किया, जहां जाने के लिए आज दुनिया भर के मुसलमान तड़पते हैं, दिल उस जानिब माइल होते हैं। मक्का मुकर्रमा वो शहर है जहां आखिरी आसमानी किताब यानी कुरान मुकद्दस के नुज़ूल की इब्तिदा हुई।

सामईन ज़ीवकार, मक्का शरीफ वो बाबरकत मकाम है जहां दीन इस्लाम का आगाज हुआ। यह वही मुकद्दस जगह है जहां अल्लाह तबारक व ताला ने अपने महबूब सैयद आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज के लिए अपनी बारगाह में बुलाया और फिर तमाम आसमानों की सैर करवाई। मक्का मुकर्रमा वो शहर है जहां अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हबीब, दिलों के तबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हयात ज़ाहिरी के 53 साल गुजारे।

मुअज़्ज़ज़ सामईन, बिलाशुबा ये अल्लाह तबारक व ताला का फजल व करम ही है कि हर साल लाखों उशाक उसकी बारगाह की हाजिरी का शर्फ पाते हैं, मकामात मुकद्दस पर जाकर रो रो कर गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं और हज की मकबूलियत की उम्मीद लगाए दुआ इस्तिग़फ़ार में मशगूल रहते हैं। सामईन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब को जल्द अज़ जल्द हज करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।

इश्क मुस्तफ़ा जिसके सीने में है, इश्क मुस्तफ़ा जिसके सीने में है, वो जहां भी रहे मदीने में है। मुअज़्ज़ज़ सामईन, इसी शेर के साथ हमारा आज का उर्दू प्रोग्राम सबाल खैर अपने अख्तिताम को पहुंचता है। उम्मीद है आपने इसे ज़रूर पसंद फरमाया होगा। जो हुज्जाज कराम इमसाल हज के लिए जा रहे हैं, उन तमाम खुश नसीबों को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करते हैं। अल्लाह तबारक व ताला उनका सफ़र आसान फरमाए, उनकी इबादात को शर्फ़ कबूलियत अता फरमाए और उनको सलामत अपने अहलो अयाल में लौटाए। आमीन या रब्बल आलमीन। सामईन, इन दुआया कलिमात के साथ अब निसार अख्तर आपसे इजाज़त लेता है। आपसे रुख्सत होने का तो दिल नहीं करता, मगर क्या करें, यही दस्तूर है। इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल अगले जुम्मे को फिर आपसे मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम, फ़ी अमानिल्लाह।

Center 94 North South 95.6 East West 98.2 You are listening to RM3 Radio.

Center 94 North South 95.6 East West 98.2 You are listening to RM3 Radio.

भक्ति में शक्ति प्रणाम श्रोताओं, भक्ति में शक्ति कार्यक्रम में आप सभी का अभिवादन करती हैं पूजा। कहा जाता है मनुष्य जिनके मन में भक्ति है उनके मन पवित्र होते हैं और साथ में वे किसी को हमेशा दर्द नहीं दे पाते। तो चलिए इसी भक्ति के साथ और आस्था के साथ कार्यक्रम का आरंभ करते हैं गणेश वंदना से। आइए सुनते हैं वक्रतुंड महाकाय।

माता रानी शक्ति का स्वरूप है, इसी कारण हर नारी में भी शक्ति का ही एक रूप है। कहा जाता है मैया जब अपनी कृपा बरसाती हैं तो आपके सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इसीलिए कहते हैं जो भी इंसान, जो भी मनुष्य माता रानी को पूरे तन मन से और भक्ति के साथ पूजता है तो माता रानी उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं और उनकी कृपा भी उन पर हमेशा बरसाती हैं।

माता रानी के दरबार में जो भी भक्त जाता है कभी खाली हाथ नहीं आते, माता उनकी झोली भर भर के उनको भेजते हैं। कहते हैं माता रानी में वात्सल्य प्रेम, ममत्व और वो ममता भरी हुई है, जिसके कारण वे अपने भक्तों पर, अपने बच्चों पर अपनी कृपा बरसाती हैं।

माता रानी की कृपा अपरंपार है, जिस पर भी माता रानी की कृपा उन पर है, उनके जीवन पर है, हमेशा सकारात्मक सोच के साथ ही चलते हैं।

भक्ति में शक्ति। चलिए श्रोता हूँ, इसी के साथ हम भक्ति में शक्ति कार्यक्रम के अंत तक आ पहुँचे हैं। आप लोगों ने साथ दिए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी के मन में प्रभु भक्ति रहे, बस यही आशा है। पूजा की ओर से आप सभी को प्रणाम। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए।

忍耐着可欠，完全为见你一面。

0: घर मिलाते चलिए दिन के 12 बजे हैं
1: सभी को नमस्कार आप सुनते हैं आस्था से संक्षिप समाचार आस्था आपको नमस्कार
0: नमस्कार 12 बजे के समाचारों में स्वागत है आप सभी का व्यापार मंत्री माइकल सिक्योन ने कल बेन में आयोजित एक प्रेस वार्ता में विपक्ष नेता जुली रोंगो के बयानों का जवाब दिया उन्होंने कहा कि स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन और सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के बीच हुए समझौते में तय दरों का पूरी तरह पालन किया गया है मंत्री ने यह भी याद दिलाया कि यह समझौता वर्ष 2023 में हुआ था उस समय जुली रोंगो ऊर्जा मंत्री थे माइकल सिक्योन ने विपक्ष के आरोपों पर सवाल उठाते हुए सरकार की स्थिति को स्पष्ट किया उन्होंने ये भी बताया कि एससीसी रोजमर्रा के आवश्यक सामानों का आयात करेगी इसके लिए जल्द ही टेंडर जारी किए जाएंगे थिंक बिग एंड एक्ट ग्लोबल विषय पर आधारित नेशनल वुमेन एंटरप्रेन्योर काउंसिल अवार्ड्स 2026 में 76 प्रतिभागियों में से 12 महिला ठेकेदारों ने फाइनल तक अपनी जगह बनाई रेजी में आयोजित समारोह में पुरस्कार 5 लोगों को दिए गए डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ओयन नवो माही ने महिला उद्यमियों को अफ्रीका और हिमसागर इलाके में नए अवसरों की ओर आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया उन्होंने कहा कि वित्तीय सहायता तकनीकी सेक्टरों में असमानता और पारिवारिक जिम्मेदारियां आज भी बड़ी चुनौती बनी हुई है बुधवार 6 मई तक मॉरिशस में चिकुनगुनिया के 147 मामले दर्ज किए गए हैं इस वर्ष की शुरुआत से अब तक कुल मामलों की संख्या 2470 तक पहुंच गई डॉक्टर फाजिल कोदाबोकस के अनुसार मॉरिशस इस समय महामारी के चरण पर है कॉन्डिस प्रयोगशाला में जांच का दबाव बढ़ गया है हालांकि स्वास्थ्यकर्मी पीसीआर परीक्षण के परिणाम 48 घंटे के भीतर देने का प्रयास कर रही है दक्षिण पूर्वी मैक्सिको में आयोजित एक मेले में भीषण आग लगने से कम 5 लोगों की मौत ये हादसा एक संगीत कार्यक्रम के दौरान हुआ जहां बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो में लोग घबरा कर बाहर दिखाई देती नजर आई इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए बढ़ते हैं शोक समाचारों की ओर नंबर 23 गुद्दे का सी पोटली में 61 साल की 61 ईयर्स ओल्ड की वृंदा हरनारायण की मृत्यु हो गई है वृंदा हरनारायण की मृत्यु हो गई है पैदाइश नाम खेमराज लोग उन्हें सुरेखा के नाम से अधिक जानते थे उनकी अर्थी आज सवेर 3 बजे उन्हें के मकान रॉयल रोड गुद्दे कासी पोटली से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए लेसालीन पोटली की शमशान भूमि ले जाया जाएगी क्रिमेशन टू डी एट 3 PM शोक में डूबे इस परिवार के प्रति हमारी गहरी सहानुभूति है
2: RM3 रेडियो

0: सुहाना सफर सुहाना सफर।
1: गुड आफ्टरनून, नमस्कार। 12:09, आज है 8 मई। जी हाँ, शुक्रवार का दिन है और आज सभी बड़े खुश लग रहे हैं क्योंकि आज है फ्राइडे। जी बिल्कुल, सारे गमों को, सारी परेशानियों को, सारे स्ट्रेस को फ्राई करके बनता है ये फ्राइडे। तो चलिए आप भी छौंके डालिए अपने सारी परेशानियों को और हमारे साथ हमारे इस खूबसूरत सफर में जो हम निकले हैं आपको मनोरंजन, आपके मनोरंजन करने के लिए, उसमें आप शामिल हो जाइए, हमारे साथ रहिएगा। और याद रखिए कि रेडियो मनोरंजन जो है हमारा टिकटॉक लाइव थोड़ी देर में होगा, बस आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। और अगर आपको हमें कॉल करना है, नंबर है 4028070। विनीता की ओर से स्वागत है और बहुत सारा प्यार है। जो लोग आज अपना जन्मदिन मना रहे हैं,
2: You're listening RM Free Radio.

0: इस समय दिन के 12:15 नहीं 16 मिनट हुए हैं। विरिता का साथ है रेडियो मनोरंजन RM3 पर। चलिए इसी के साथ जो हमारा अगला गाना आ रहा है किशोर कुमार की आवाज में, फिल्म है महान।
1: RM3 रेडियो रेडियो रेडियो

0: सुहाना सफर, सुहाना सफर। दिन के 12:26 हुए हैं और चलिए देखते हैं हमारे साथ कोई है फोन पे। हेलो
1: हेलो
0: हेलो जी,
1: हाय वेनिता, कैसी हो?
0: मैं ठीक हूँ, कैसी हो सायरा बानू?
1: मैं ठीक हूँ।
0: कहाँ पे हैं आप अभी?
1: अभी काम पे हूँ।
0: वही कहाँ पे हैं?
1: नीचे मैं काम कर रही
0: हूँ। ओके, बताइए क्या सुनना चाहेंगी आप?
1: फिल्म चलते चलते का गाना।
0: चलते चलते का गाना, क्या बात है, कौन सा गाना?
1: जाना कहाँ है यार,
0: कहाँ? आपको मैं पूछूँ कहाँ जाना है? आपको कहाँ जाना है रामीची से?
1: मैं काम पे हूँ, गाना सुनना है।
0: तो वही तो मैं कह रही हूँ कि आप तो रामीची में है ना, तो आपको रामीची से निकल के कहाँ जाना है? कहीं जाना नहीं है?
1: रेडियो मनोरंजन थीम पर गाना
0: सुनने के लिए। ओहो, क्या बात है, क्या बात है। चलो तो ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपको, और आपने गाने की फरमाइश की तो लीजिए आपका गाना हम चला रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपको प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। बाय बाय
1: बाय।

0: ना सफर था ना सफर
1: जाने कैसे कब कहां इकरार हो गया देखा इंसान सोचता रहता है और प्यार हो ही जाता है तो प्यार अगर हो गया है आपको भी इजहार करना चाहते हैं तो जरूर 4028070 पे या तो फिर वो पुराने दिन जो आपने किसी के साथ बिताए होंगे जिनके साथ अभी भी आपकी थोड़ी सी छोटी-मोटी लड़ाइयां हो ही जाते हैं रूठ जाते हैं कभी मनाना पड़ता है और कुछ गाने ऐसे होते हैं जो आपकी याद बन गई है तो हमें जरूर बताएगा 4028070 पर। और अभी यहां पे मैसेज आया है अब मुझे नहीं पता मैसेज कहां से आया बस इतना पूछा है कि हाय वेदू मैं परी अच्छा परी ने मैसेज भेजा बोला यार आज लाइव नहीं है होगा थोड़ी देर में होगा बस 5 मिनट में चलिए 5 मिनट में आपसे लाइव मिलते हैं हमारे रेडियो मनोरंजन के टिकटॉक पर।
2: You're listening to RM3 Radio.

दोस्तों जिंदगी की यही रीत है, हर कोई रोज हंस नहीं सकता, मुस्कुरा नहीं सकता, कभी कभी रोना भी पड़ता है। जिंदगी में कोई भी गम आए बस मुस्कुराते रहो, आगे बढ़ते रहो।

सुहाना सफर, सुहाना सफर। दोस्तों हार के बाद की जो जीत होती है ना, कमाल होती है जी। बिल्कुल, आप भी यही सोच रहे होंगे कि जिंदगी में कभी हम उस ऐसे मोड़ पे आते हैं जहाँ पे हमें लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया, अब कुछ हो नहीं सकता, लेकिन तभी सब कुछ बदल जाता है। लाइफ में मौके मिलते हैं, एक बार नहीं, दो बार नहीं, कई बार मिलते हैं, आपको बस उस सही मौके का इंतज़ार करना पड़ता है। वो कहते हैं ना कि तकदीर जो है वो बदलती है, भले थोड़ा टाइम ले लेकिन बदलती ज़रूर है। तो आपको भी उस बदलाव का इंतज़ार करना चाहिए, आपको भी इस इंतज़ार में रहना चाहिए कि भाई ज़िंदगी में कुछ नया होगा, कुछ अच्छा होगा। जब हमारी लाइफ में कुछ बुरा होता है तो हम क्या करते हैं, बस कोसते रहते हैं, कोसते रहते हैं, कोसते रहते हैं, और फिर उसके बाद क्या होता है, हमारे साथ जितना बुरा होना था उससे कहीं ज़्यादा बुरा होता है। इसीलिए अच्छी अच्छी चीज़ें सोचो, बी पॉजिटिव इन लाइफ, फिर देखो आपकी ज़िंदगी क्या कमाल का बदलती है। तो चलिए इसी के साथ अगला गाना हम सुनेंगे और फिर उसके बाद ये गाना हमें लेके जा रहा है

0: एक बजे के समाचारों की ओर।
1: You're listening RM Free
2: Radio. दूर होते होते वो आवाज डूब गई, सुनने के लिए सिर्फ यादें रह गईं। चंदन चला गया और इतनी दूर चला गया कि आरती के लिए वो फासले तय करना नामुमकिन हो गया। मुड़ के जब भी देखा चंदन का चेहरा नजर नहीं आया।

0: Center 95.5, North South 95.6, East West 98.2.
1: You are listening your RM3 Manoranjan Radio.
2: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.
3: घड़ी मिलाते चलिए समय दिन के एक बजा है।
4: आइए सुनते हैं समाचार रजनी के साथ। नमस्कार।
5: नमस्कार श्रोताओं को भी नमस्कार। समाचारों में आप सभी का स्वागत करते हैं। सबसे पहले स्थानीय खबरें। स्वास्थ्य के क्षेत्र में चिकनगुनिया कई बात करते हैं। मॉरिशस में चिकनगुनिया के मामलों में बढ़ोतरी होती जा रही है। पिछले जनवरी महीने में 2400 से अधिक मामले दर्ज किए गए। इस तरह मॉरिशस महामारी को लेकर चरम तक पहुंच रहा है। पिछले 6 मई तक 147 नए मामले दर्ज किए गए, जिससे कि साल की शुरुआत से अब तक कुल 2470 मामले पाए जा रहे हैं। डॉक्टर फाजिल कोनावाकस ने समझाया कि देश महामारी चरम तक पहुंचने के करीब ही है, खासकर गर्मी और सर्दी के मौसम के बीच की अवधि में। रोड्रिग्स में भी एक मामला पाया जा रहा है। संबंधित सावधानियां बरतने की मांग की जा रही है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में ही रहते हैं, लेप्टोस्पायरोसिस के मामले भी देश में पाए जा रहे हैं, जिनके चलते संबंधित सावधानियां बरतने की मांग की जा रही है। स्वास्थ्य के बाद अब चलिए अन्य प्रमुख चुनौती की बात करते हैं, जिससे दुनिया के कई मिलियन परिवार संबंधित हैं। दुनिया भर में रोज 3000 से अधिक लोगों की जानें सड़क दुर्घटनाओं में होती हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार प्रतिवर्ष 1.19 मिलियन लोगों की मौत सड़क हादसों में होती है। 5 और 29 वर्ष की आयु के बीच के लोगों में मृत्यु का ये पहला कारण है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से याद दिलाया जाता है कि अधिक जिम्मेदाराना तरीके से गाड़ी चलाने के चलते दुर्घटनाओं से बचा जा सकता है। इसी के साथ बढ़ते हैं विदेश समाचारों की ओर, रुख करते हैं सबसे पहले चीन। चीन के ह्यूनान प्रांत में लियोलांग शहर में एक पटाखा फैक्ट्री में हुए भीषण धमाके में मरने वालों की संख्या बढ़कर 37 तक हो गई है, जबकि एक व्यक्ति अभी भी लापता है। एशिया में ही रहते हैं, इंडोनेशिया में देश के पूर्व में स्थित दुकोनो ज्वालामुखी के विस्फोटित होने से कम 3 हाइकर्स की मृत्यु हो गई। राहत कर्मियों के अनुसार ज्वालामुखी के विस्फोटित होने के बाद से अन्य कई लोग अभी भी लापता हैं। मारे गए लोग ऐसी जगह में थे जहां पर उनका जाना मना था। इंडोनेशिया द्वीप समूह के इस इलाके में अभी भी खोज कार्य जारी है। संक्षिप्त समाचार यहीं पर समाप्त हुए। आपने ध्यान दिया, इसके लिए धन्यवाद। कुछ ही समय में शोक समाचार। नंबर 23 गुद्देकासी पोर्टलिस में 61 साल के 61 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती बृंदा हरनारन, पैदाशी नाम खेमराज, जो सुरेखा नाम से भी जानी जाती थी, की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दिन के 3 बजे उनके घर नंबर 23 गुद्देकासी पोटली से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए ले सालिन पोटलीस की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 3 PM। रोथ्रॉयल पेटी राफ्रे में 68 साल के 68 ईयर्स ओल्ड के श्री चंद्रदत्त अनुत, जो पेदो नाम से भी जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दिन के साढ़े तीन बजे उनके बेटे श्री विक्रम अनुत के घर रोथ्रॉयल पेटी राफ्रे से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए पेटी राफ्रे की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रोमेशन टुडे एट 3:30 PM। नंबर 77 मौसलमा ओबोन बॉम्बू में 85 साल के 85 ईयर्स ओल्ड के श्री महादेव कहानू, जो जिसिक नाम से भी जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल सुबह साढ़े नौ बजे उनके घर नंबर 77 मौसलमा ओबन बॉम्बू से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए ससुर बॉम्बू की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रोमेशन टुमोरो एट 9:30 AM। शोक में डूबे इन सभी परिवारों के साथ हमारी दिली हमदर्दी है।
6: Your news on NBC Play, NBC Play, NBCRadio.tv, NBCRadio.tv.
0: RM3 Radio.

0: सुहाना सफर। सुहाना सफर के हमारे सभी श्रोताओं का एक बार फिर से हम स्वागत करते हैं। दिन के 1:11 हुए हैं। मैं हूं विरिता, साथ देने के लिए आई हूं आपके अपने रेडियो मनोरंजन पर, जहां पे सिर्फ खुशियां ही खुशियां हैं, प्यार ही प्यार हैं, बहुत सारी खूबसूरत यादें भी जुड़ी हुई हैं। बस जिंदगी में इंसान को खुश रहने के लिए क्या चाहिए, प्यार के दो पल। वो प्यार के दो पल गीतों में ढाल कर हम आ जाते हैं आपका साथ देने के लिए, और आप भी हमारे साथ जुड़ जाते हैं। तो जो लोग हमारा जो लाइव है उसके लिए इंतजार कर रहे थे, तो मैं आपको बता दूं कि हमारा रेडियो मनोरंजन जो है अब टिकटॉक पे लाइव है। आप चाहे तो हमें वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। काफ़ी सारे मैसेजेस मिले हैं कि भाई क्या बात हो गया, आप लाइव क्यों नहीं हैं। तो मैं लाइव आ गई हूँ, आप लोग अब हमें वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं, हमें देख सकते हैं और हमसे बहुत सारी बातें भी कर सकते हैं। वैसे बातें वहाँ पर बहुत सारी होती है ना। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले हम सेरेना का वेलकम करते हैं। दीपक बिहारी जी, नमस्ते जी, कैसे हैं आप? आज फ्राइडे है और जैसे मैंने कहा ना कि जितने भी टेंशंस प्रॉब्लम्स हैं सबको फ्राई करके रख दो और हमारे साथ बस जुड़ जाओ और खूबसूरत यादों में घुल जाओ। यहाँ पर मनीता जी का मैसेज आया है, जय माता दी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आप कैसी हैं ये बताते चलिए। कहते हैं कि आज तो हमारे यहाँ छुट्टी है। वैसे यहाँ पे तनु शाम हमारे साथ जुड़ी हैं, नमस्कार, स्वागत आपका। और साथ में यहाँ पर जो गाना होगा हम डेडिकेट करना चाहेंगे आपके लिए। कहते हैं कि आज सब घर पर हैं और बहन सचिता के लिए गाना मांग रही हूँ, अगर हो सके तो उनके लिए गाना चलाएगा। यहाँ पर जय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, नमस्कार आपको। अमृता, आपका भी स्वागत करते हैं प्रोग्राम में। तो बेटा यादव, राहुल, बेटी केशा फ्रांस से हैं, उनके लिए गाना होगा। साथ में अनीता पैरतोप का वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं। चलिए यही गाना हम डेडिकेट करते हैं भामा के लिए जो साथ दे रही हैं। और जैसा मैंने कहा कि हमारा टिकटॉक लाइव है, तो आप लोग हमें ज़रूर वहां पे ज्वाइन कर सकते हैं।
1: You're listening RM Free Radio.

0: वही तो कह रहे हैं कि हम रहे ना रहे हमारी यादें हमेशा रहेंगी, इसलिए यादें बनाओ प्यारी प्यारी।
1: सुहाना सफर।
0: बेल्जियम से प्रकाशवती जी का मैसेज आया है, कहती है क्या बढ़िया सिलेक्शन है आज का, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और यहाँ पर हमारा अगला गाना हम आपके नाम चलाना चाहेंगे, चलिए देखते हैं कि कौन है हमारे वो लिसनर्स जो हमारे साथ टिकटॉक पे जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर गाना होगा आपके लिए, आप हैं कौन, ये हैं मिमी, कहती है मेरी बेटी मिलिसा के लिए और आपकी टीम के लिए थैंक यू। और अंश हमारे साथ हैं, कहते हैं मैं हूँ ललिता, अच्छा ललिता है कालबास से, और गाना होगा आपके लिए फिया के लिए। साथ में यहाँ पर हमारे साथ जुड़ी हुई हैं जयश्री, कहती है सही गाना है, थैंक यू सो मच। और यहाँ पर हमारे साथ हैं अनीता रामधारी और उनकी सिस्टर के लिए गाना होगा सुनीता, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पर ईशानी को हम कहेंगे हेलो और प्यार से हमारा साथ देने के लिए, जयश्री को भी कहेंगे नमस्कार। उनके पूरी परिवार के लिए गाना होगा और साथ ही साथ ये गाना होगा बिंता के लिए, मनीता जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और बिंता कहती है आम लेट, आप लेट नहीं हो, लेट हम हो गए थे, हमारा टिकटॉक अभी एक घंटे के बाद शुरू हुआ है। और चलिए यहाँ पर काफ़ी सारे दोस्तों के मैसेज आ रहे हैं और इनसे बात करना तो बनता ही है, तो चलिए सबसे पहले इनसे मिलते हैं। हेलो
2: हेलो प्यारे से वेदिता जी।
0: आशा जानू कैसी हमारी आशा?
2: मैं अच्छे, और आप अपने सुनाइए।
0: बिल्कुल मस्त मूड में, फ्राइडे है आज।
2: आपने भी कहा ना फ्राइडे में सारे गम फ्राई कर दो।
0: हाँ तो आप फ्राई करने आ गई।
2: फ्राई करने आ गई तो वेरी गुड, इसे हमारा वीकेंड भी एकदम मस्त हो जाएगा।
0: अच्छा बताइए क्या सुनना, क्या सुनाना चाहेंगी?
2: आज सुनाना चाहूंगी एक मेरी जिंदगी है, ये वादा रहा किशोर कुमार और आशा जी की वॉइस।
0: कल चलाया था हमने ये वादा रहा का गाना। कोई बात नहीं कोई बात नहीं कोई बात नहीं, ये दूसरा गाना है।
2: नहीं तो मैं और एक बोल सकती थी, अनाजा है मेरे पास।
0: आपके पास तो पूरी लिस्ट है।
2: मेरे पास पूरी लिस्ट ही होती है।
0: पूरी लिस्ट के साथ आती है। एक नहीं, अच्छा कोई बात नहीं, दूसरा चला दो, दूसरा, अरे कुछ नहीं ये वाला चला दो। अच्छा बताइए।
2: ओके, रॉकी क्या यही प्यार है,
0: रॉकी फिल्म का गाना। ये मस्त गाना है।
2: क्या यही प्यार, सच में क्या यही प्यार है, जो जो हमें रुलाता भी है, हंसाता भी है और जीवन को रंगीन भी कर देता है।
0: थैंक यू सो मच। चलिए ठीक है, ये गाना आपके लिए, आपकी पूरी फैमिली के लिए।
2: यस, फॉर ऑल द लिसनर्स के लिए। और सभी को कहेंगे हैव अ नाइस फ्राइडे, हैव अ नाइस ग्रेट वीकेंड,
0: थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, बाय बाय। चलिए जी, एक और कॉलर है। हेलो हेलो

कोई बात नहीं ऐसा करते हैं हम किसी और से बात कर लेते हैं ओहो ये भी चले गए तो कभी कभी होता है ज़्यादा इंतज़ार नहीं कर पाते हैं लोग अभी के लिए तो हम बिंता जी कहते हैं कि मैंने बहुत मिस कर दिया अरे कुछ नहीं आप रेडियो सुनो प्रॉब्लम नहीं है और यहाँ पर रायांश हमारे साथ हैं और उनके लिए गाना होगा एंड साथ में अमेली कहते हैं ओके थैंक यू सो मच अभी के लिए यश हमारे साथ जुड़े हुए हैं और गाना आपके लिए आपकी पूरी फैमिली के लिए गाना कौन सा होगा वैसे आपको पता चल गया होगा क्योंकि अभी अभी थोड़ी देर पहले रॉकी फिल्म की फरमाइश की है इन्होंने

0: भाई प्यार तो यही है हमारा, आपका जो साथ है। यहाँ पर गाना हम परी के नाम डेडिकेट करना चाहेंगे, साथ में गाना जाएगा हेमा लक्ष्मण के लिए, सूबी, कविता, कल्याण, तनु और बिल्कुल तनुश्री, उनकी पूरी फैमिली के लिए। वी हैव करीना पन्नू फ्रॉम सिंगापुर, हाय हाउ आर यू डूइंग, माया रामदोष, शवि, पृथ्वी, एजे, नितेश बुलाके, निशा गणेश के लिए हीरो फिल्म का गाना।
1: RM3 Radio.

यहाँ पर हमारे साथ सरिका बनारस सिंह सिंह जी हैं और उनके लिए गाना हम डेडिकेट करना चाहेंगे और साथ में है हमारे जीमन. हेलो, कैसे हो अविनाश? स्वागत है आपका वैदेही. आई एम गुड, थैंक यू सो मच. सनी कोया, कैसे हो आप? प्रोग्राम में वेलकम है, स्वागत है. मधुबाला जी, आपका भी स्वागत करते हैं हमारे प्रोग्राम में.

सुहाना सफर सुहाना सफर सुहाना सफर में यहाँ पर सफर हमारा सुहाना बन रहा है। आपका मैसेज आया है, आप हैं सरिता फ्रॉम काटरबोन कह रही हैं कि हाँ जैसे हम फ़ोन उठाने गए आपने फ़ोन काट दिया, कोई बात

0: बात नहीं, तो ऐसा करते हैं अगला गाना आपके लिए, वैसे ये किशोर कुमार की आवाज़ में ही है गाना, तो ऐसा करते हैं यहाँ पर आपके लिए गाना डेडिकेट करते हैं, गाना होगा आपके लिए, कौन है हमारे साथ, अविनेश, विश्वनाथ, पूनम, विरन सिंगम, दीप्ति, रेखा, कर्नेल सिंह इटली से हैं, और वहीं पे हमारे साथ ओकलैंड से हरी शर्मा हैं, शालिनी, जेविना, लोलिता, सभी वुमेन एंटरप्रेन्योर के लिए जो गुडनेस मॉल में भी काम कर रहे हैं, वो को आज टू यू, ठीक है, और शालिनी है उनके पति अनूप, बेटे अयूर और बेटी आयुषी के लिए, प्रीति की तरफ से जय के लिए गाना होगा, वहीं सुनील ब्रो आपके लिए गाना होगा, और यादव अमरीश हमारे साथ हैं। एक और मैसेज आया है, सरस्वती आपके लिए भी हम यही गाना डेडिकेट करते हैं, फिल्म का नाम आप जानना चाहते होंगे, फिल्म का नाम है दीवार।
1: You're listening to RM3 Radio मनोरंजन।
2: तुम्हें
3: हाँ
2: या चुप रहूं
3: ना,
2: दिल में मेरे आज क्या है,
3: क्या है,

0: चलो भाई, जिसको गुरु मानना था आपने गुरु मान लिया होगा, लेकिन यहाँ पे हमारे दोस्तों का हम क्या करें, वो तो इंतजार में हैं।
1: सुहाना सफर
0: प्रोग्राम में जो अगला गाना होगा वो हम डेडिकेट करेंगे आपके लिए, बीना फ्रॉम मोतावा। जी हाँ, और कहते हैं कि गाना

मेरे लिए और मेरे दोनों बेटों के लिए, और साथ ही साथ ये गाना जाएगा इंदिरा मतो सिंह के लिए। नमस्ते, आपका स्वागत करते हैं हम प्रोग्राम में। राधा कैसी हैं, कहती हैं राधे राधे सिस्टर, राधे राधे राधा कैसी हो। तो बस गाना होगा आपके लिए, सुनता ना खंदाए हमारे साथ हैं। और नेक्स्ट गाना मामा संगीता और पापा धर्मराज के लिए मोगू से है। थैंक यू जुड़े रहने के लिए प्रोग्राम में, ओके। और साथ ही साथ यहाँ पर चित्रा का मैसेज आया है, बहुत बहुत थैंक यू, शुक्रिया। रोहन हमारे साथ हैं, और रोहन लगता है कि अभी हमारे गीतों को काफ़ी एंजॉय कर रहे हैं। तो नेक्स्ट गाना आपके लिए होगा, और ये गाना हम सिया के नाम भी डेडिकेट करना चाहेंगे जो हमें सुन रही हैं, आराम कर रही हैं। यहाँ प्रतिमा, रेखा गोपोल, रीता बिहारी, और कहते हैं थैंक यू सो मच फॉर दिस लवली सॉन्ग, ओके। विक्रम जी कैसे हो आप, आप हैं घोंबुआ से, और कहते हैं कि हम जो सीनियर सिटीजन्स हैं ना सोसाइटी, वहाँ से हैं हम। और विक्रम जी घोंबुआ में मेरे ख्याल से भी ये काफ़ी अपने सारे दोस्तों के साथ होंगे। तो चलिए नेक्स्ट गाना आप सभी दोस्तों के लिए, गंगाराम फैमिली के लिए गाना होगा, और गाना होगा आपके लिए अशोक सुकन के नाम, ठीक है। और पापा के लिए अगला गाना, चलो ठीक है, निशा भवानी आप सुखी नाम से है ना, ओ माय गॉड थैंक यू सो मच। चलो तो सभी दोस्त मिल गए हैं, प्रकाश जी नमस्ते, जीतन दुलो आपको भी नमस्ते, स्वागत है, शारदा आपका भी वेलकम है, अक्षय विवेक का हेलो आपका वेलकम करते हैं, शर्मिला जी नमस्ते मैं ठीक हूँ, संजय ओमी प्रणाम, न्यूजीलैंड से वी हैव जीत, और नेक्स्ट गाना हस्बैंड अविनाश, बेटा आरव, बेटी तियाशा, ये सभी हैं फ्रॉम घन गैत, और कुजुदा कैसी हो बहना, दिनेश गोपी स्वागत है, ललित मोहन भट्ट आपका भी वेलकम है। RM3 Radio.

0: दोस्तों तुम सबको ये शाम मुबारक हो। वैसे दिन की इस टाइम पे तो जाहिर सी बात है लोग इंतज़ार शाम का ही करेंगे जब 4 बज जाएंगे और उनको घर जाने का मौका मिलेगा। चलिए इसके साथ नेक्स्ट जो गाना होगा डेडिकेट करते हैं प्रवीणा दुर्गा के लिए, आशीष रूप नारायण, अमिशाव गणपत, अलविन, दिनेश गोपी, मनोज के लिए एंड पूनम के नाम।
1: You're listening RM Free Radio. Radio. Radio.
0: आया तो एक और मैसेज है और गाना होगा आपके लिए वेरी स्वीट हमेशा की तरह। अच्छा आधिया आपकी पोती है, उनका कल बर्थडे है, सो बहुत सारा प्यार आपके पति के लिए भी। और फ्राइडे मनोरंजन टिकटॉक पे आप लाइव हैं, ओके। अनिता जी थैंक यू सो मच, आपने हमें याद किया फ्लिक ऑफ फ्लाक से। और ये गाना हम विम के नाम डेडिकेट करेंगे, थैंक यू सो मच। उम्मीद करती हूँ गाना आपको अच्छा लग रहा है। शाहीन आपका भी, शाहीन हुसबाकस आपका वेलकम करते हैं।

हमारे से नाच रहे हैं गा रहे हैं और ये हैं कौन विम एंड वंशिका काम कर रहे हैं साथ में हमारे साथ झूम रहे हैं हेलो काजल आप भी झूम रहे होंगे और हमारे साथ यहाँ तक कि हमारी आवाज़ पहुँच गई है लिवरपूल इंग्लैंड यश कहते हैं हेलो मैंने कहा चलो चलो आगे बढ़ो और यहाँ पर आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट गाना जो होगा डेडिकेट करेंगे हमारी तमाम लिसनर्स के लिए साथ देने के लिए थैंक यू जाने का टाइम हो गया है चलिए अब हम भी चलते हैं आपसे मुलाकात करेंगे अब हम मंडे को आ जाएंगे आपके लिए लेकर कुछ खूबसूरत ऐसे खूबसूरत प्यारे गाने अभी के लिए विदिता सिंह बाय बाय हैव अ ग्रेट ग्रेट ग्रेट वीकेंड

0: Center 94 North South 95.6 East West 98.2. You are listening to RM3 Radio.
1: दो बजे हैं। Check your time, it's a sharp at 2 PM. आई संध्या समाचार रजनी के साथ नमस्कार।
2: नमस्कार श्रोताओं को भी नमस्कार। समाचारों में आप सभी का स्वागत करते हैं। एक टिकाऊ कृषि और कृषि डाइवर्सिफिकेशन के लिए खाद्य सुरक्षा की राष्ट्रीय स्ट्रैटेजी के संदर्भ में कृषि उद्योग मंत्री डॉक्टर

0: अरविंद बुलेल और जूनियर मंत्री फैब्रिस दाविद ने कल रोजबेल सुगे स्टेट द्वारा संचालित कृषि जमीनों का दौरा किया। यहां पर जमीन तैयार की जा रही है जहां पर मुख्य रूप से सब्जी पैदावार की जाएगी। 300 बीघा कृषि जमीन में से 150 खेतिहरों के लिए निर्धारित, साथ ही अन्य जमीनों पर ईख के गन्ने उगाए जाएंगे। लोगों से वापस जमीन की ओर जाने के अलावा उत्पादन के फसल तक सभी चरणों में मशीनीकरण पर जोर दिया जा रहा है ताकि श्रम शक्ति खर्च कम किया जा सके। चलिए अब स्विमिंग तैराकी स्कूल की बात करते हैं। ये युवा एवं खेल मंत्रालय की पहल है जो इस मॉरिशस स्पोर्ट्स काउंसिल की ओर से संचालित मूल ढांचों के माध्यम से प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों में बच्चों और छात्रों को तैरने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करना चाहता है। देश के 4 स्विमिंग पूल से संबंधित 18 में मौदालबेया, पावियों, कैटरबोन, रिवेज रॉपा और पुबासे स्थित सेर्ज अल्फ्रेड स्विमिंग पूल 7 और 17 वर्ष की उम्र के बीच के बच्चों के लिए ये निर्धारित है। 3 चरणों में ट्रेनिंग है और 14 और 24 सेशंस भी होंगे। संबंधित वेबसाइट पर 13 और 14 मई को रजिस्ट्रेशन होंगे। स्वास्थ्य के क्षेत्र में चिकुनगुनिया की बात करते हैं। मॉरिशस में चिकुनगुनिया के मामलों में बढ़ोतरी नोट की जा रही है। पिछले जनवरी महीने से 2400 से अधिक मामले दर्ज किए गए। इस तरह मॉरिशस महामारी को लेकर चरम तक पहुंच रहा है। पिछले 6 मई तक 147 नए मामले दर्ज किए गए, जिससे कि साल की शुरुआत से अब तक कुल 2470 मामले पाए गए। डॉक्टर फासिल कोदामाकस ने समझाया कि देश महामारी चरम तक पहुंचने के करीब ही है, खासकर गर्मी और सर्दी के मौसम के बीच की अवधि को लेकर। रॉड्रिक्स में भी एक मामला पाया गया और साथ में देश में लेप्टोस्पायरोसिस के मामले भी पाए जा रहे हैं, जिनके चलते संबंधित सावधानियां बरतने की मांग की जा रही है। विदेशी समाचारों में भारत में विधानसभा चुनाव में मिली प्रचंड जीत के 4 दिन बाद शुक्रवार को आज बंगाल को भाजपा का पहला मुख्यमंत्री मिल जाएगा। गृह मंत्री व पार्टी के केंद्रीय पर्यवेक्षक अमित शाह की उपस्थिति में दोपहर बाद कोलकाता के न्यू टाउन स्थित विश्व बंगला कन्वेंशन सेंटर में भाजपा के नवनिर्वाचित विधायक दल की बैठक में नेता यानी मुख्यमंत्री के नाम पर अंतिम मुहर लग जाएगी। भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 11 मई को पुनर्निर्मित सोमनाथ मंदिर के लोकार्पण की 75वीं वर्षगांठ के कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। उन्होंने ये जानकारी देते हुए एक लेख में भव्य दिव्य सोमनाथ धाम को समर्पित अपनी भावनाएं भी व्यक्त की। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में अमेरिकी नौसैनिक विनाशक और ईरान के बीच गोलीबारी के बावजूद ईरान के साथ अभी भी युद्ध विराम जारी, दोनों ही पक्ष एक दूसरे पर पहला हमला करने के आरोप लगा रहे हैं। संक्षिप्त समाचार यही पर समाप्त हुए। आपने ध्यान दिया, इसके लिए धन्यवाद। कुछ ही समय में शोक समाचार। नंबर 23 गुद्दे कासी पोटलिस में 61 साल के 61 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती बृंदा हरनारन जो खेमराज, पैदाशी नाम खेमराज, जो सुरेखा नाम से भी जानी जाती थी, की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दिन के तीन बजे उनके घर नंबर 23 गुद्दे कासी पोटलिस से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए लेसालिन पोटलिस की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रोमेशन टुडे एट 3 PM। रोत्रॉयल पेटी राफे में 68 साल के 68 ईयर्स ओल्ड के श्री चंद्रदत्त अनुत जो पिदो नाम से भी जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दिन के साढ़े तीन बजे उनके बेटे श्री विक्रम अनुत के घर रोत्रॉयल पेटी राफे से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए पेटी राफे की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रोमेशन टुडे एट 3 PM। शुक्मेलुबेन परिवारों के साथ हमारी दिली हमदर्दी है।
1: Your news on NBC Play, NBCRadio.tv, NBCRadio.tv.
2: Center 94 North South 95.6 East West 98.2. You are listening to your RM3 Radio.

0: संगीत नृत्य और परंपरा।
1: सभी श्रोताओं का हृदय की गहराई से स्वागत करते हैं। समय हो चुका है, कार्यक्रम है, आप सभी जानते हैं, गीत नृत्य और परंपरा। श्रोताओं, गत सप्ताह हमने नृत्य पर बातचीत की थी, तो इस बार लाजमी है कि हम गीत पर बात करें, क्योंकि हर सप्ताह हम कुछ नया लाते हैं और हमारे साथ जो अतिथि होते हैं वो आप सबको एक ना एक चीज़ की पहचान तो होती ही है पर उसको बढ़ा देते हैं। आज हमारे साथ स्टूडियो में जुड़े हैं, वे एक चिकित्सक हैं, मेडिकल डॉक्टर हैं, जो आजकल मिनिस्ट्री ऑफ सोशल इंटीग्रेशन में कार्यरत हैं। आप सामाजिक कार्य भी करते हैं, महत्वपूर्ण भागीदारी है इनकी, साथ ही प्रिवेंटिव केयर और अच्छी जीवन शैली पर सहयोग देते हुए अपने आप को कम्युनिटी हेल्थ एजुकेशन पर भी पूरे देशवासियों के साथ खड़े होते हैं। आप रोटरी क्लब ऑफ पॉम्पलेमूसेस में भी माननीय और सामाजिक दायित्वों को बखूबी निभाते हैं। आप गीत संगीत में अनेक भाषाओं की बात करूं तो 6 भाषाओं में आप अपनी अभिव्यक्ति करते हैं गीतों के माध्यम से। वो आपका शौक है, आपका पैशन है और अपनी स्थानीय पहचान भी बना रहे हैं। और स्थानीय लोक गीत संगीत को बढ़ावा देते हुए कला के माध्यम से अध्यात्म से भी जुड़ते हैं और अन्य लोगों को भी इंस्पायर करते हैं। भावनात्मक रूप से भी उनको हीलिंग हारमोनी ट्रीटमेंट भी देते हैं। आप चाइनीज़ भाषा की जो प्रतियोगिता है गीत की, उसमें 2 बार वाटर क्यूब कप जीत चुके हैं। तो हम स्वागत करें अपनी श्रोताओं के साथ आज डाव शंकर पांडे बसावन डॉक्टर जी, आपका हार्दिक स्वागत है कार्यक्रम में। और आप तक पहुंचाने में हमारी मदद कर रहे हैं यज और दीपशिखा, और प्रोडक्शन सीट पर बैठी हुई हैं शीतल। इस पूरी टीम के साथ सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत करती हूं और फेसबुक लाइव जो हमारे साथ जुड़े हैं सभी श्रोताओं का भी हार्दिक स्वागत है। डॉक्टर जी, आप चिकित्सक हैं, मैं आपको डॉक्टर संबोधित कर रही हूँ, कैसे आप गीत संगीत की दुनिया में पहुँचे, सबसे पहले हमारे श्रोताओं के लिए?
2: सबसे पहले प्रणाम सभी को।
1: प्रणाम।
2: जो ये प्रोग्राम रेडियो पर सुन रहे हैं
1: जी,
2: MBC पर देख रहे हैं, सोशल मीडिया पर फॉलो कर रहे हैं
1: जी।
2: अंजू जी, पहले मैं आपको कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने मुझे इस मंच पर बुलाया है।
1: ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि एक कलाकार को हम इस मंच से जोड़ रहे हैं जो 1 नहीं 2 नहीं 4 नहीं 6 भाषाओं में गीत सुनाते हैं।
2: तो मैं MBC और गीत नृत्य परंपरा की पूरी टीम का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ पर बुलाया है।
1: स्वागत है आपका डॉक्टर जी। अब मेरा प्रश्न फिर से मैं दोहराती हूँ कि आप चिकित्सक होते हुए गीत से कैसे जुड़े?
2: मेरे लिए म्यूजिक सिर्फ एक हॉबी नहीं है
1: जी,
2: बल्कि एक इमोशन है। एक इमोशन है, जब भी मैं गाता हूँ मैं दिल से गाता हूँ। तो जैसे मॉरिशस एक मल्टीकल्चरल देश है, तो हम इधर बहुत डिफरेंट लैंग्वेज सीखते हैं। जब मैं चीन गया, मैं अपनी पढ़ाई डालियान मेडिकल यूनिवर्सिटी में किया था
1: जी,
2: वहाँ पर जब हम पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाई के बाद टाइम होता है घर पर काम करना, जैसे कि कुकिंग करते हैं और पढ़ते हैं, तो और टाइम होता है, पर वो टाइम हम नहीं जानते हैं कि हम कैसे इस्तेमाल करें। तो वो हमारे माता पिता नहीं हैं, हमारे दोस्त जो
1: मतलब आप विदेश में हैं और अकेलापन से जूझना पड़ता है।
2: तो इस अकेलापन को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, अपने देश का अपने इसका संगीत डालते हैं और
1: सुनते हैं
2: और गाते हैं
1: जी।
2: जैसे कि हमारे क्रियोल भाषा में सेगा होते हैं, सेगे होते हैं, और भोजपुरी होता है,
1: गीत गवाई
2: होता है, तो हम ये सब ढाल

0: रहती है, और जैसे हम विदेश में हैं पर जैसे ये
1: अपने
0: महसूस
1: आपको अपने देश में पाते हैं।
0: हाँ
1: जी, तो मैं समझ पाई, भावनात्मक रूप से आप जुड़ जाते हैं और पहुंच जाते हैं अपने परिवार में, अपने देश के लोगों में।
0: हाँ
1: जी,
0: तो ये एक कोपिंग मेकानिज्म है। जैसे हम लोनी फील करते हैं तो हम कुछ गीत गाते हैं, डालते हैं जो YouTube पर है, हम गाते हैं और उसको शेयर करते हैं, क्योंकि डिफरेंट कल्चर्स वहाँ पर हैं। हम जैसे एक यूनिवर्सिटी में क्या है, उसके डोम में बहुत डिफरेंट नेशनलिटीज़ हैं।
1: जी,
0: मैं चीन में था पर सिर्फ चीनी लोग नहीं थे, क्योंकि सब
1: अन्य देशों से भी लोग आए हुए थे।
0: तो जब हम डोम में जाते हैं तो वो इंटरनेशनल हैं, इंटरनेशनल, तो इंडियंस हैं, पाकिस्तानीज था, जो इजिप्शियन था, बहरेनी, अफगानिस्तानी,
1: बहुत सारे
0: ब्रिटिश
1: जी,
0: ब्रिटिश और फ्रेंच लोग भी थोड़ा थे वहाँ पर
1: जी,
0: तो रशियन भी थे। तो ये सब जब हम अपने से अपना कल्चर दिखाते हैं एक माध्यम, जैसे गीत के माध्यम से हम वो कुछ गिटार बजाता है और हम अपने लैंग्वेज में, वो जानते नहीं हैं कि हम क्या बोल रहे हैं हम, पर वो सिर्फ
1: म्यूजिक हैज नो बैरियर्स।
0: हाँ
1: जी,
0: तो ये मेरे लिए एक जैसे हम दोस्त बनाते हैं एक तरीका होता था, तो म्यूजिक ने मुझे इस ऐसे ये इमोशन डालते हैं हर गाने में, तो ये इमोशन डिफरेंट कल्चर फील करते हैं। जैसे रशियन है वो लैंग्वेज नहीं जानते हैं पर वो फील करते हैं कि क्या इमोशन है इसमें, ये सैड गीत है या
1: खुशी
0: का है
1: जी।
0: तो और जैसे हमारी भोजपुरी का है वो साथ में भी खुशी लाती है
1: जी, बड़ा लाइवली होता है।
0: हाँ
1: जी, चलिए हम कार्यक्रम को एक गीत के साथ सजाते हैं, फिर बातचीत जारी रखेंगे आप लोगों के साथ।

श्रोताओं, अभी आप श्वेता जी का गाया हुआ गीत सुन रहे थे, पर आज हमारे साथ डॉक्टर बसावन जी हैं। चलिए हम उनसे जानते हैं कि आपने शिवरात्रि पर एक शिव भजन लिखा भी और गाया भी, तो हमारे श्रोताओं के लिए वो गीत अवश्य प्रस्तुत करें।

भूतेश्वराय काल काल कालेश्वराय शिव शिव सर्वेश्वराय शंभु शंभु महादेवा दौ मेजिता सोनू तू व्रे कॉन्फो शंभु शंभु महादेवा पुई सौ सफिनी।

0: तो आपने उसमें एक मंत्र भी जो भजा और साथ में आपने शिव शंकर को भी याद किया। आपने दो भाषाओं का इस गीत में प्रयोग किया, एक क्रेओल और एक हिंदी भाषा, और मंत्र तो संस्कृत में है ही। आप का जैसे मैं सीवी देख रही थी तो उसमें आपने चाइनीज में अवार्ड भी पाए हैं, 2 बार वाटर क्यूब कप पाया है, तो कैसे आप चाइनीज संगीत के साथ जुड़ पाए?
1: जब मैं पढ़ाई करके वापस मॉरीशस आया तो यहाँ पर कोविड नहीं था, कोविड आने वाला था।
0: okay.
1: तो इस समय जब कोविड
0: 2019 की बात कर रहे हैं,
1: हाँ, जब तो मैंने एक शख्स से मिला, वो चाइना टाउन फाउंडेशन से हैं, तो उसने मुझे हम बातचीत कर रहे थे, उसने मुझे तो आओ हम चाइनीज कल्चर का
0: कार्यक्रम
1: कर रहे हैं, तो आओ तुम भी कुछ साथ ले लो। तो मैंने गया और चाइनीज सिंगिंग, मैं चाइनीज में था तो चाइनीज लैंग्वेज मेरे
0: सीख पाए,
1: हाँ, मैंने सीखा, तो वो ज़्यादा मुश्किल नहीं था। पर मैंने शुरू किया उसके वाटर क्यूब कप जो सिंगिंग कॉम्पिटिशन था उसमें भाग लिया, और भाग लेने से मैं दूसरी जगह पर प्राइज मिला। तो इससे इसके बाद उसने मुझे
0: हौसला बढ़ गया, हाँ, गीत गाने के लिए।
1: उसने मुझे अपॉर्चुनिटी दी कि कल्चरल प्रोग्राम, चाइनीज कल्चरल प्रोग्राम में भाग लेने का, जो चेन सान पाओ जो बाहर चीन से आए थे वो बहुत मशहूर सिंगर हैं वहाँ पर। तो जब वो आया वो मुझे सिखाया हक्का गीत, हक्का में गीत,
0: चाइनीज में 2 भाषाएं हैं, हाँ, मंदारिन और हक्का,
1: हाँ,
0: तो आपने हक्का में गीत गाया,
1: हक्का में गीत सीखा। और जब भी एम्बेसडर्स, चाइनीज एम्बेसडर्स आते हैं और जो शंघाई कोऑपरेशन आते थे, तो मैं वहाँ पर कुछ गीत गाता था, और एक टीम के साथ हम ये कर पाते कि उनको हमारे देश में जो, जैसे मेरा स्किन है वो चाइनीज़ की तरह नहीं है, पर जब मैं चाइनीज गाता हूँ तो वो शॉक हो जाते हैं,
0: अचंभित रह जाते हैं कि कोई हिंदू चाइनीज भाषा में गीत गा रहा है।
1: हाँ,
0: तो संगीत की कोई भाषा नहीं है, संगीत इमोशन से जुड़ा हुआ है, एहसास से जुड़ा हुआ है, ये हम सब जानते हैं, क्योंकि एक रिदम के साथ जब आप गीत गाते हैं वो किसी भी भाषा में हो तो हाँ, लोगों को प्रभावित करता है। अच्छा, छोटा सा एकांश हमारे श्रोताओं के लिए, जो आपने हक्का में लोगों को सुनाया या जो भी फेस्टिवल चाइनीज के हुए उसमें आपने प्रस्तुत किया, उसका भी एक अंश हमारे श्रोताओं के लिए।
1: तो जो हाका है, मैं छोटा पौध करूंगा
0: जी।

0: ये हाका थी और मैं कुछ मंडरिन में, क्योंकि मंडरिन में जो गीत मैंने गाया जो सेकंड प्राइस मिला
1: जी,
0: वो फ्रेंडशिप का गीत है,
1: गीत है दोस्ती का,
0: दोस्ती का। तो उस गीत का मतलब क्या है, जब फ्रेंडशिप करते हैं, मिलते हैं, मिलते हैं, सैड खुशी के समय बिताते हैं, फिर एक दिन हमको अलग होना, अपने अपने ज़िंदगी में
1: आगे बढ़ना है,
0: आगे बढ़ना है, तो हम अपने को हम एक दूसरे को खो जाते हैं, पर याद रखना कि तुम हमारे साथ हैं। ये गीत फंग्यो यानी फ्रेंड्स।
1: ओके
0: ओके।
1: संगीत के साथ दोस्ती का एक प्रमाण दिया है कि चाहे वो कोई भी भाषा हो, दोस्ती सबसे ऊपर आती है और उसके ऊपर भी आता है संगीत। संगीत जो है वो एक दूसरे को जोड़े रखता है, चाहे भाषा ना भी समझ में आए, संगीत आपको वो जोड़ देता है, एक दूसरों के अनुभव से, एक दूसरों के संवेदनाओं से लोग जुड़ पाते हैं। अच्छा, अब मैं आती हूँ कि आप मॉरिशस में कभी कोई आयोजन होता है तब भी आप गीत प्रस्तुत करते हैं या गीत गाते हैं?
0: हाँ,
1: आपको खुशी मिलती है भोजपुरी, जैसे भोजपुरी गीत गवाई होती है, शादियों में शुक्रवार को गीत गवाई का एक आयोजन होता है, उसमें भी आप मंच संभालते हैं?
0: तो मेरा पहली बार जब मैं भोजपुरी गीत गाया वो मेरे दीदी के शादी में। हाँ, तो
1: भाई का गीत गाना लाजमी है।
0: मैं और मेरा भाई दोनों, हम दोनों गीत में शौक डालते हैं और मैं गाया। इसके बाद मैं वागन पेमार के साथ वो कुछ माशअप किया, भोजपुरी माशअप जो बॉलीवुड का गाना है इसमें डाला, मैंने उसके सहायता किया और हम दोनों ने दो गीत वो किया, बॉलीवुड माशअप एक और दो, तो मैंने उसका सहायता किया। तो इसके बाद जो भी मैं मेरे दोस्त या कुछ रिश्तेदार हैं या जो कल्चरल इवेंट होता है इसमें मैं भाग लेता हूँ।
1: इसमें भाग लेते हैं। तो इसमें जो आप गीत प्रस्तुत करते हैं थोड़ा सा एक अंश हमारे श्रोताओं के लिए बताइए, कैसे आपने उसको तैयार किया और कैसे आपने भाग लिया?
0: जब हम जैसे एक गीत है जो बहुत पॉपुलर है भोजपुरी का, मैं उसको प्रस्तुत करना चाहूँगा।
1: अवश्य, स्वागत है।
0: ओके, तो ये हम सब जानते हैं इसमें और बहुत नाचते हैं इस पर, जो भी
1: जब गीत गवाई का कार्यक्रम होता है, शादी होती है, चौतारी होती है, तब आप ये प्रस्तुत कर सकते हैं।
0: तो ओके, मैं शुरू करता हूँ।
1: अवश्य।
0: जय बे के कर संगे मामा, तू जय बे के कर संगे मामा, भैया अन ले बा मोटर गाड़ी, भैया अन ले

0: बे जय बे के कर संगे मामा, तू जय बे के कर संगे मामा। बैगन बागी में
1: या भोजपुरी बॉयज पर आ गए।
0: बैगन बागी में करेला तोड़े ना जय हा।

0: ओ बैगन बागी में करेला तोड़े ना जय हा।
1: बहुत सुंदर, आपने बताया हमें कि एक दूसरे का सहयोग देते हुए स्वर पद और ताल से युक्त जो है वो संगीत आप प्रस्तुत करते हैं। आपने कहा कि आपने किसी के साथ मिलकर इसके शब्द भी लिखे और सहयोग भी किया कार्यक्रम में प्रस्तुत करने के लिए, इसके अतिरिक्त आप क्या करते हैं?
2: जब हम
1: संगीत से जुड़े रहने के लिए,
2: जब देखो, जब मैंने ये शंभु महादेवा का गीत बनाया तो इसमें जब महाशिवरात्रि होती है तो लोग तीर्थ यात्रा पर जाते हैं
1: जी,
2: पैदल या बस या गाड़ी पर। वो ये गाना उनको प्रोत्साहित करता है, जो मैं इसमें एक डिवोशनल डाला, स्पिरिचुअल टुगेदरनेस और जगाने वाला वाइब डाला। उसका म्यूजिक भी एक बहुत अच्छा से बनाया है और स्टेप बाय स्टेप म्यूजिक का हमने बनाए, क्योंकि देखा हर अंश को बनाए, क्योंकि ये गाना सिर्फ हिंदू के लिए नहीं है, पूरे मॉरिशस के लिए है। तो मैंने इस गाने के क्लिप में हमने दिखाया कि हमारे कल्चर जो हैं, हमारा परंपरा जो हैं, हमने पहले कांवड़ बनाते हैं, फिर तीर्थ यात्रा पर जाते हैं पूरे श्रद्धा और भक्ति के साथ
1: जी,
2: फिर जब हम गंगा तालाब पहुंचते हैं तो हम जल पूजा करते हैं। तो ये सब मैं एक साथ एक गीत में जैसे प्रेजेंट किया, क्योंकि ये जब मैं पहले जब मैं वापस आए मॉरिशस स्टडी के बाद चाइना से, तो मैंने ये जो हाका गीत हैं, हमने एक चाइनीज गीत भी लिखा, पर मैंने नहीं लिखा, जो आर्टिस्ट था जो चीन से आए उसने लिखा। तब से मुझे मेरा मैं सोचा कि क्यों मैं अपने कल्चर के लिए ये

0: अपनी संस्कृति के लिए कुछ करूं,
1: कुछ करूं। तो ये पहला गीत जो शंभू महादेवा, मैं सभी और एम रेडियो के और जो हमें सुन रहे हैं उसको यूट्यूब पर हैं उसको हम आपको निमंत्रण देते हैं कि आप वो यूट्यूब पर जाएं, शंभू महादेवा का गीत देखें। हम नेक्स्ट अगर भगवान की कृपा से, महादेव की कृपा से जो मासिक शिवरात्रि आ रही है,
0: हर महीने जो शिवरात्रि आती है, मासिक शिवरात्रि,
1: हाँ, तो इसमें हम एक दूसरा जैसे एक
0: भाग गीत प्रस्तुत करेंगे।
1: हाँ, तो वो काम तैयार हो रहे हैं अभी हम म्यूजिशियन से। तो ये एक छोटा सा अंश मैं आपको प्रस्तुत कर सकता हूँ,
0: अवश्य फिर मैं बातचीत जारी रखती हूँ जी।
1: ये निकला अभी नहीं तक, पर वो अगले गीत में एक छोटा सा अंश है
0: जी।
1: ओके, तो

0: महेश्वर बम बम भोले भोला महेश्वर। तो ये इसका रिफ्रेन है।
1: आप हर सप्ताह मिलते हैं संगीतकारों से, गायकों से, या के हर महीने? कैसे आप ये अभ्यास कार्य करते हैं? क्योंकि आप एक चिकित्सक हैं, हाँ। वो एक बिल्कुल अलग दायित्व है, और संगीत वो आपका पैशन है, इसलिए आप जुड़े रहते हैं उससे। तो अभ्यास के लिए भी तो समय निकालना पड़ता है, और अभ्यास के लिए आप महीने में एक बार मिलते हैं, हफ्ते में एक बार मिलते हैं, कि जब समय मिलता है तब बैठ जाते हैं?
0: देखियो, मेरा काम डॉक्टर,
1: यही तो मैंने कहा कि वो एक अलग है, चिकित्सक हैं आप,
0: ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग है
1: जी।
0: तो टाइम नहीं मिलता है गाने पर
1: रियाज करने का,
0: हाँ। पर अगर हम देखते हैं वो जो गीत हमने बनाया शंभु महादेवा, हमने उसको 3 दिन में बनाया, 3 दिन में, 1 दिन रिकॉर्डिंग, जैसे
1: तो उसके म्यूजिक प्रॉपर आपके पास बना हुआ कोई हॉल है, कहाँ आप रियाज करते हैं, कोई ऐसा रूम है प्रोडक्शन जहाँ पे आपका होता है, म्यूजिशियंस बैठते हैं, संगीतकार बैठते होंगे तभी, हाँ। तो रियाज होता है, तो वो आपके लिए स्पेसिफिक जगह है?
0: नहीं, हमारे घर पर जो हमारे दोस्त हैं, रिश्तेदार जो
1: घर पर ही बैठते हैं,
0: पार्टिसिपेट करते हैं, जैसे कि हमारे दोस्त तरुण हैं और मेरा भाई विमल हैं, वो जो मेरा नेफ्यू अक्षय और अर्जुन जो हैं, वो हम सब मिलकर, जैसे 1 घंटा मिला आज तो हम मिलते हैं, उसका 1 महीने में एक या 1 हफ्ते में कोई दिन का तैयार नहीं होता है, जैसे आज हेलो फ्री हो ए आओ, तो
1: जैसे आपको समय मिलता है उसके, हाँ, अनुरूप आप कार्य कर लेते हैं।
0: तो हम बैठते हैं और जैसे अर्जुन है वो थोड़ा गिटार बजाता है और हम ट्राई करते हैं, देखते हैं
1: प्रैक्टिस करते
0: कैसे जब शब्द और संगीत से जुड़े होते हैं, कैसे उसका फीलिंग क्या है, क्योंकि ये एक
1: स्वर को लय ताल में जोड़ना पड़ता है,
0: हाँ,
1: जी।
0: तो ये हम करते हैं और एक लिरिक्स बनाते हैं, जैसे कि सॉन्ग का हर शब्द कैसे प्रोनाउंस हो जाएगा, कैसे हम गीत गाएंगे,
1: कैसे उसका स्वर बिठाना, हाँ, है लय ताल में।
0: तो इसके बाद हम जाते हैं एक म्यूजिक प्रोड्यूसर के साथ, वो म्यूजिक प्रोड्यूसर वो संगीत से जो म्यूजिक है वो उसका मास्टर है, तो ये म्यूजिक और मेरा जो
1: लिरिक्स
0: हैं उसके जोड़ने से, अगर हम देखते हैं जैसे हम शंभु महादेवा किया, वो 2 दिन में कर दिया,
1: पूरा हो गया,
0: क्योंकि इसमें म्यूजिशियन आते हैं और वो बजाते हैं, फिर रिकॉर्डिंग पर डालते हैं, तो सब अंश हम देखते हैं। तो ये एक बहुत कठिन काम है, पर अगर हम ध्यान में हम दिल से करते हैं तो वो इजीली हो जाते हैं,
1: कठिन नहीं रहता है, क्योंकि वो आपका पैशन है, वो आपका शौक है, उस शौक को पूरा करने के लिए आप कठिन से कठिन कार्य भी कर जाते हैं, उसके लिए समय भी निकालते हैं। पर कहीं आपको लगता है कि संगीत एक थेरेपी भी है?
0: हाँ,
1: क्योंकि आप रोगियों से मिले हुए हैं, तभी मेरे दिमाग में आ रहा है प्रश्न कि क्या संगीत एक थेरेपी है?
0: हाँ जरूर, क्योंकि ये थेरेपी दिमाग मेंटल हेल्थ का होता है। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ जो मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ है। मैं एक पेशेंट को देखने गया, वो पेशेंट बीमार, बहुत बीमार था, कैंसर हो गया और उसका अंतिम
1: समय आ चुका था।
0: पर मुझको बुलाया गया, तो मैं वहाँ पर देखा, जाकर देखा वो पेन में था, तो कुछ पेन की दवाई हम डालते हैं, जो भी दवाई डालते हैं, मैंने उसको दिया। और मैंने क्या किया, मैंने एक दादी था और भी है, मैं इस एग्जांपल को देता हूँ। मैंने दादी को बोला, दादी क्या आप रेडियो सुनते हैं? दादी बोला, कुछ नहीं बोला। मैंने देखा, दादी कुछ आपको पसंद
1: आप
0: होगा,
1: उनसे बातचीत अपने पर्सनल उससे बातचीत कर रहे हैं।
0: तो फिर मैंने एक गीत गाया उसके साथ, छोटा सा है, बेकरार करके हमें यूं न जाइए, आपको हमारी कसम लौट आइए। फिर दादी क्या हुआ, दादी जो एक तरफ देख रही थी वो दवाई डाल रही थी सीरम और वगैरह, तो वो एक तरफ देख रही, फिर वो घूम के
1: मेरी आपके साथ आई कांटेक्ट में आ गई।
0: हाँ, जब वो हम फिर बातचीत किया, फिर वो बातचीत किया मेरे साथ,
1: वो आई कांटेक्ट होना जरूरी था, इसलिए हाँ। बातचीत का सिलसिला वहीं से शुरू होता है, तो जब तक आप आई कांटेक्ट नहीं रखेंगे तो नहीं हो पाता है।
0: तो उसका फैमिली 5 दिन से वो कुछ नहीं बोली,
1: वो कोशिश कर रहे हैं उनसे बात करने की, पर वो बात नहीं कर रही थी।
0: तो वो मुझसे बात किया और फैमिली देख शॉक हो गए और मुझे देखा और बोला।
1: तो ये है संगीत की थेरेपी।
0: ये एक एग्जांपल। दूसरे एग्जांपल, जब हम सैड हो जाते हैं, जब हम जो भी कठिन
1: समय आता है जीवन में जी,
0: तो हम एक गीत डालकर पूरे दिल से गाते हैं, तो क्या होता है, वो स्ट्रेस
1: रिलीज करता है।
0: जब हम देखते हैं स्ट्रेस का कारण क्या है, स्ट्रेस का डेली लाइफस्टाइल, जब हम डेली लाइफस्टाइल और स्ट्रेस को देखते हैं एक तरफ, तो उसका जब क्या होता है, हाइपरटेंशन हो जाते हैं, क्योंकि हर रोज एक एग्जांपल, जैसे कि एक वाइफ, हाउसवाइफ को देखते हैं, सुबह उठते हैं, काम करते हैं, नाश्ता करते हैं, फिर हर
1: घर साफ करना है, रोज के जो दिनचर्या है उसकी,
0: तो फिर इसमें उसके दिमाग में क्या चलता है, ये रूटीन है, पर जब कुछ कठिन समय आता है, उस दिमाग में चलते हैं, जैसे कि वो कुछ काम कर रही हैं या कर रहे हैं, पर दिमाग में वो प्रॉब्लम है, तो ये प्रॉब्लम क्या करता है, ब्लड प्रेशर को थोड़ा थोड़ा बढ़ाता है, क्योंकि इसमें स्ट्रेस होता है, जो फैमिली या कोई भी समस्या है उसको दूर करने के लिए वो सिर्फ दिमाग में घूमता है, ये
1: वो दिमाग में घूमता है, निकलता नहीं है।
0: तो इसमें अगर
1: संगीत को लाया जाता है
0: और
1: वो स्ट्रेस रिलीज कर देता है,
0: वो जब हम सांस लेते हैं और गीत गाते हैं, तो थोड़ा फ्रीक्वेंसी जाता है, तो सब फ्रीक्वेंसी से जुड़े हुए हैं, तो ये फ्रीक्वेंसी

0: सी, जैसे मोजार हैं, जैसे कि क्लासिकल म्यूजिक हैं, एक फ्रीक्वेंसी होता है, जैसे कि सितार एक एक
1: वाद्य यंत्रों में भी है, तबला बजाएं तो स्ट्रेस रिलीज होता
0: है। तो ये सब फ्रीक्वेंसी क्या करता है, हमारे पूरे पहले हमारे दिमाग का जो हम 60% वाटर है ना, तो वाटर जो है फ्रीक्वेंसी से हिलता है,
1: डिसबैलेंस भी होता है।
0: तो अगर हम इस इसको एक तरफ से देखें, इस पर्सपेक्टिव से देखें, तो हम देखते हैं कि जब हम गाते हैं तो एक फ्रीक्वेंसी बाहर आते हैं जो खुशी का है। अगर हम एक सैड गीत डालते हैं तो आप आए फिर सैड हो गए, क्यों? क्योंकि आप वो फ्रीक्वेंसी से मिला,
1: आंखें नम हो गई। हाँ जी,
0: तो जब हम खुशी के गीत गाते हैं डालते हैं तो आप कुछ जगाया हुआ है शरीर,
1: स्ट्रेस रिलीज हो जाता है।
0: तो ये सब संगीत का महत्व का
1: संगीत का जादू है,
0: जादू है। हाँ, तो अगर देखते हैं ये फ्रीक्वेंसी काम करते हैं, क्योंकि अब अगर हम देखते हैं जो यूट्यूबर होता है, जो फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज, थीटा वेव, डेल्टा वेव होता है, तो कुछ लोग म्यूजिक डालते हैं सोने के लिए, ये म्यूजिक नहीं है पर एक एक
1: नाद है,
0: नाद है। और अगर हम हमारे ग्रंथों, हमारे मंत्र को देखते हैं, वो कुछ एक तरीके से बोलना चाहिए इसको।
1: बिल्कुल।
0: तो ये सब फ्रीक्वेंसी डालते हैं, क्योंकि जब जब ओके जब हम मंदिर जाते हैं, जब पूजा पाठ करते हैं, तो एक एक एक तरफ जब एक मंत्र आता है तो हमारे शरीर का
1: रुएं खड़े हो जाते हैं,
0: रुएं खड़े हो जाते हैं। तो हम देखते हैं कि ये जगाता हुआ म्यूजिक है, ये म्यूजिक नहीं पर सिर्फ शब्द, सिर्फ मंत्र किया जा रहे हैं। तो
1: वो
0: ये
1: जाप
0: सब
1: जो आप करते हैं मंत्रों द्वारा, वो आपको कहीं ना कहीं प्रभु से तो जोड़ता ही है, पर आपके शरीर को भी उसका, उसमें ढालता है,
0: उसका इफेक्ट है,
1: इफेक्ट है,
0: इफेक्ट है। और ये इफेक्ट हमारे पूर्वज, हमारे एंसेस्टर्स जानते हैं। अभी के लिए हम फार्मास्यूटिक का इस्तेमाल करते हैं ज़्यादातर, पर होलिस्टिक भी हैं। पर अगर हम देखते हैं जो एंशेंट टेंपल्स हैं, जो एंशेंट टेंपल्स जो स्ट्रक्चर हैं, इसमें क्या है, इसमें चैम्बर्स हैं। जब आप जाते हैं उसमें बात करते हैं तो एक अलग सा फ्रीक्वेंसी होता
1: echo.
0: है, इको होता है। तो ये इको एक फ्रीक्वेंसी रिलेट बैक करते हैं बॉडी पर। तो ये एक साइंस है, एक साइंस है। तो इसीलिए जब हम
1: जिसे आप हील भी कर सकते हैं,
0: तो अगर हम देखते हैं इस पर्सपेक्टिव से, अगर हमको कुछ दर्द हो रहे हैं उसका भी फ्रीक्वेंसी है। तो हम नहीं बोल रहे हैं कि फार्मास्यूटिक नहीं करना चाहिए, नहीं, हम डॉक्टर हैं तो दवाई देते हैं, पर दिमाग, मेंटल हेल्थ के लिए संगीत ज़रूरी है,
1: ज़रूरी है।
0: हाँ, ये मेरा विचार है।
1: आप एक डॉक्टर हैं, जब म्यूजिशियन से भी बात करते हैं, जब हमारे कार्यक्रमों में बहुत से लोग आते हैं, बहुत बड़े बड़े शोधकर्ता आते हैं, वो भी बताते हैं कि जब आप डांस करते हैं, नृत्य करते हैं और गीत गाते हैं, तो कहीं ना कहीं वो आपके शरीर को संयम में, डिसिप्लिन, नियम में लाते हैं और आपको रोग से मुक्त भी रखते हैं।
0: ये सही है,
1: ये मैं आज एक चिकित्सक से पूछ रही हूँ कि रोग मुक्त होने के लिए संगीत, वाद्य यंत्र और नृत्य कितना आवश्यक है हमारे लिए।
0: ओके, अगर हमने अभी गीत के लिए बात की। हम नृत्य के थोड़ा, जब हम भारत नाट्यम देखते हैं तो अगर हम पोज करते हैं, सब
1: मुद्राएं जी,
0: एक पोश्चर होता है
1: जी।
0: जब हम पोश्चर को देखते हैं तब हमको

0: ख्याल आते हैं कि ये पोस्चर हमारे शरीर का स्पाइनल कोड को स्ट्रेट करते
1: हैं, एनलाइन्ड
0: एनलाइन करते हैं। जब हम कुछ मुद्रा पेश करते हैं तो वो हिलता है एक रिदम के साथ,
1: जी
0: एक रिदम के साथ,
1: लय ताल के साथ।
0: हाँ, तो ये रिदम अगर हम म्यूजिक निकालते हैं और सिर्फ देखते हैं और अंदर का एक्सरे देखते हैं तो हम देखेंगे कि ये शरीर कुछ कर रहे हैं जो उसका पूरे शरीर का बेनिफिट होता है, क्योंकि हमारे शरीर का स्पाइनल कोड में नर्व्स आते हैं और जब नर्व्स
1: रिलैक्स होती हैं
0: तो कैसे रिलैक्स होना चाहिए उसको नर्व को, तो ये सब एक्सरसाइज में इसीलिए फिजियोथेरापी है। जब हम देखते हैं साइटिका पेन, लोअर बैक एक, ये सब वो क्या करते हैं, हर रोज एक सेडेंटरी लाइफस्टाइल में जुड़े जाते हैं, जो ये सेडेंटरी लाइफस्टाइल बॉडी का कैसे थस जाता है, बॉडी मूवमेंट नहीं है। अच्छा मूवमेंट जब हम नृत्य में देखते हैं, जो भी भारतनाट्यम है और दूसरे
1: शास्त्रीय नृत्य शैलियां हैं,
0: तो ये सब क्या करते हैं, ये सब शरीर को हिलने से कुछ ये नस रिलैक्स हो जाते हैं और प्रॉपर सर्कुलेशन बैलेंस बनाते हैं। जैसे हम नस को नर्व्स को वो कुछ सिग्नल पहुंचता है एंड नर्व एंडिंग से, जब हम ये हिलते हैं तो ये नस इधर बॉडी में हमारे
1: शोल्डर तक जाता है। जी,
0: तो ये जब हम हिलते हैं तो ये सब हम उसका उपयोग करते हैं, तो
1: उसी प्रकार गीत भी जब आप गाते हैं तो अंदर से नाभि से आवाज निकलती है।
0: हाँ, ये हमारे लंग्स जब हम देखते हैं हमारे वोकल,
1: तो हमारे शास्त्रीय गीत संगीत में भी तो ओम का उच्चारण कितना आवश्यक मानते हैं, तो ओम भी खाली मुंह से नहीं, उसका उच्चारण नाभि से किया जाए तो वो आपको लाभप्रद होता है। और उसी प्रकार जब आप मंत्रोच्चारण भी करते हैं तो वो नाभि से किया जाए तो वो ज़्यादा आपके श्वासों को भी कंट्रोल करता है और साथ साथ में आपको एक बेनिफिट भी देता है, हीलिंग प्रोसेस भी चलता है।
0: हाँ।
1: तो गीत संगीत भी तो एक हीलिंग थेरेपी है।
0: ज़रूर ज़रूर,
1: इस पे आप और अपना विचार देंगे।
0: ओके, जब हम गाते हैं जैसे आपने बोला ओम अ उ म, इसमें तीन तीन अक्षर होते हैं, अ उ म, इससे ओम होते हैं, तो इससे हमारे शरीर का लाभ होता है, क्योंकि जब हम ये जो बोले अभी फ्रीक्वेंसी निकलता है, ये फ्रीक्वेंसी हमारे दिमाग पर और हमारे मेंटल रिलैक्सेशन के लिए
1: आवश्यक
0: है। और जब हम देखते हैं दूसरे कल्चर में, वो भी कुछ न कुछ मंत्र जैसे जाप हैं, कुछ न कुछ होता है, क्योंकि ये सब हमारे बायोलॉजिकल देता है। जैसे हम देखते हैं हर कल्चर में कुछ गीत हैं, कुछ
1: संगीत
0: हैं, नृत्य हैं, वो सब एक ही लक्ष्य का है, हम नहीं जानते हैं आज, क्योंकि हम
1: जड़ एक ही है।
0: हाँ।
1: उस पर शाखाएं अनेक हैं।
0: हाँ
1: जी,
0: क्योंकि आज हम एक अब मोबाइल फोन है और जो भी हम
1: प्रौद्योगिकी है, टैबलेट्स हैं, कंप्यूटर्स हैं,
0: जो भी हम देखते हैं एवोल्यूशन हुआ, तब जिस एवोल्यूशन से लोग क्या करते हैं अब एआई में, एआई में जो

0: जो आ रहे हैं, तो ये सब हमारे मेंटल हेल्थ के ये ज़्यादा अच्छा नहीं है, क्योंकि जब हम देखते हैं एक फ़ोन को लेकर उसका उपयोग करने से कुछ तरीके होता है, जैसे अगर एक इंसान ऐसे फ़ोन करते हैं देखते हैं तो ये सब स्पाइन पर
1: असर
0: करता है ऑन लॉन्ग टर्म, उसका उसका शरीर में दर्द होता है। गीत अभी तो एक एआई का है, जैसे एआई का एरा हो रहे हैं, तो लोगों क्या करते हैं, कुछ शब्द डालते हैं इंटरनेट पर, ये शब्द एआई कुछ म्यूजिक बनाता है और वो बन गया प्रस्तुत होते हैं। तो ये ऑटिस्ट के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि ऑटिस्ट ये एक गीत एक इमोशन है, एक इमोशन
1: क्रिएटिविटी सृजनात्मकता नहीं आई,
0: क्रिएटिविटी होता है ये सब अगर हम देखते हैं तो हमको हम मेरा विचार है सब आर्टिस्ट का सब ओके, आप उपयोग कर सकते हैं एआई का यूज कर इस्तेमाल कर सकते हैं, पर अपना क्रिएटिविटी मत
1: खोना। बिल्कुल, सृजनात्मकता को बनाकर उसमें कुछ जोड़ा जाए तो वो अधिक बेहतर बनेगा।
0: हाँ।
1: पर अपने आप को सृजनात्मकता से जोड़े रखें, अपनी जड़ों को सशक्त करके रखें, तभी आप फल फूल पाएंगे। जी, बहुत चलिए हम कार्यक्रम के अंत की ओर आ रहे हैं। अब मैं जानना चाहूँगी कि आज दुनिया प्रौद्योगिकी से, जैसे आपने ही बताया कि जुड़ी हुई है, एआई का प्रचलन हो रहा है, पर कहीं ना कहीं संगीत कैसे हमारे संस्कृति हमारी भाषा को भी संजोता है, क्योंकि देखिए आप ही ने बताया मुझे कि आप 6 भाषाओं में गाते हैं, तो लैंग्वेज इज़ नॉट अ बैरियर संगीत के लिए, भाषाएं सभी सम्मानित हैं, चाहे वो हिंदी हो, उर्दू हो, तमिल हो, तेलुगु हो, सभी भाषाएं सम्मानित हैं, और उसमें हम संगीत जब जोड़ते हैं तो आप संगीत को महत्व दे रहे हैं, कैसे आज की युवा पीढ़ी को संगीत नृत्य के साथ उनको होलिस्टिक लाइफ की ओर ले जा सकते हैं, इस पर आपका विचार।
0: ओके, अगर हम यूथ को देखते
1: हैं, युवा पीढ़ी की ही बात कर रही हूँ,
0: यूथ को देखते हैं तो एक बात है
1: ताकि वो भटके नहीं,
0: एआई का अभी एआई का एरा हो रहे हैं
1: जी,
0: एक दूसरा जो हमारे सोसाइटी का प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि ड्रग्स, जैसे कि एक ड्रग्स है, ये एक बहुत बहुत
1: ज्वलंत समस्या है हमारे देश में।
0: दूसरा एक सेडेंटरी लाइफस्टाइल
1: जी,
0: तो जो ओबेसिटी लाता है, ओबेसिटी, हाइपरटेंशन, अर्ली एज में 30 के उम्र में कुछ हाइपरटेंशन हो गया, ये सब एक प्रॉब्लम है। तो यूथ को क्या करना चाहिए
1: जी,
0: युवक को क्या करना चाहिए, वो पहले अपने से अपने संस्कृति से जुड़े रहना चाहिए
1: जी,
0: जैसे कि कोई भी नृत्य हैं, अगर नृत्य नहीं पसंद करते हैं तो गीत, जो भी वोकल ट्रेनिंग हैं एमजीआई में हैं,
1: शास्त्रीय संगीत भी हो सकता संगीत, है, तबला बजाना, सितार से जुड़ना, कोई भी वाद्य यंत्र ले लें,
0: कोई भी डिसिप्लिन के साथ जुड़े रहना, क्योंकि वो डिसिप्लिन लाता है हमारे जीवन में,
1: लाइफस्टाइल
0: में,
1: जीवन शैली में वो नियम आ जाता है।
0: जैसे एक पहला हमने बताया ड्रग्स, अगर हम कुछ डिसिप्लिन लाते हैं हमारे हर रोज के
1: दिनचर्या में
0: तो वो उसका नाम ही नहीं लेंगे युवक,
1: क्योंकि वो झुकाव दूसरी ओर है, संगीत की ओर, गीत की ओर।
0: तो ये एक एक एक तरीका होता है इससे ये सब निगेटिविटी से
1: और अपने पाठ्यक्रम से हटकर वो किसी नियम से जुड़ रहा है।
0: हाँ, दूसरा चीज हमारे पोस्चर के लिए, हमारे मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ भी के लिए अच्छा है।

0: वो जैसे हमने ओबेसिटी का नाम लिया, ओबेसिटी अगर एक यूथ नित्य करता है, कैसे ओबेसिटी
1: नहीं हो पाएगा।
0: नहीं हो पाएगा। गाने से भी, क्योंकि गाने में थोड़ा

0: एक डिसिप्लिन या नृत्य या गीत एक या जो भी स्पोर्ट है, स्पोर्ट भी होते हैं
1: जी,
0: एक से चुनकर जुड़े रहना, क्योंकि ये डिसिप्लिन लाएगा अपने जीवन में
1: और बीमारियों से दूर रखेगा,
0: बीमारियों से दूर रखेगा
1: हाँ। फिर आपकी आवश्यकता कम पड़ जाएगी नहीं, हम ये चाहते हैं कि हमारा जीवन, हमारे युवा पीढ़ी, हमारा समाज स्वस्थ रहे, तभी देश आगे बढ़ पाता है। बहुत सुंदर विचार आपने हमारे साथ साझा किए, हमारी टीम में सहयोग दिया आप तक ये कार्यक्रम पहुंचाने में, आपने अपना बहुमूल्य समय हमें दिया, इसके लिए बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं कि आप एक चिकित्सक होते हुए भी एक नियम जो कि आपने गीत में ढूंढा, पर आप युवा पीढ़ी को ये बता रहे हैं कि गीत संगीत नृत्य किसी भी एक डिसिप्लिन के साथ एक नियम के साथ जुड़ पाएं तो हम अपने स्वास्थ्य को भी बचा पाएंगे और अपनी दिशा को भी बदल पाएंगे। एक अच्छा मार्गदर्शक मिल रहा है हमें डॉक्टर जी के रूप में, वो मार्गदर्शन कर रहे हैं युवा पीढ़ी के कि वे सही दिशा अपनाएं और अपने स्वास्थ्य को भी अच्छा रख पाएंगे। और संगीत तो सबको अच्छा लगता ही है, हमारी MBC हमें सहयोग देती है, पूरा दिन कार्यक्रम चलते हैं आपको गीत संगीत के साथ जोड़े रखने के लिए। और आज हमारी टीम, जिसमें मैंने आपको पहले भी बताया, शीतल जी हमारे साथ हैं, यज जी हमारे साथ हैं और दीपशिखा जी के सहयोग से आप तक ये कार्यक्रम पहुंचा। गीत नृत्य और परंपरा में ऐसे ही अन्य अतिथियों के साथ भी जुड़ेंगे और आपको बहुत सारी जानकारियों के साथ अवगत कराते रहेंगे। आज हम धन्यवाद देंगे डॉक्टर बसावन जी को, जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय निकाल के हमारे साथ जुड़कर आपको इतने सारे गीतों से परिचित करवाया, वे चाहे हिंदी में हो, चाहे भोजपुरी में या चाइनीज में, हक्का मंदारिन का भी फर्क उन्होंने हमें बताया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देंगे। आज का कार्यक्रम यहीं पर समाप्त करते हैं, बहुत सारे शुभकामनाओं के साथ, शुभ संध्या।

0: संदेह देश विदेश की खबरें रजनी से आपको नमस्कार।
1: नमस्कार श्रोताओं को भी नमस्कार। समाचारों में आप सभी का स्वागत करते हैं। सबसे पहले स्थानीय खबरें। एक टिकाऊ कृषि और कृषि डाइवर्सिफिकेशन के वास्ते खाद्य सुरक्षा की राष्ट्रीय स्ट्रेटेजी के संदर्भ में कृषि उद्योग मंत्री डॉक्टर अरविंद उडेल और जूनियर मंत्री फैबिस दाविद ने रोजबेल शुगर स्टेट द्वारा संचालित कृषि जमीनों का दौरा किया। यहाँ पर जमीन तैयार की जा रही है जहाँ पर मुख्य रूप से सब्जी पैदावार की जाएगी। 300 बीघा कृषि जमीन में से 150 खेतिहरों के लिए निर्धारित, साथ ही अन्य जमीनों पर ईख के गन्ने उगाए जाएंगे। लोगों से वापस जमीन की ओर जाने के अलावा उत्पादन से फसल तक सभी चरणों में मशीनीकरण पर जोर दिया जा रहा है ताकि श्रम शक्ति खर्च कम किया जा सके। कल बोपलों के एक पंप स्टेशन में चलाई गई ये कार्रवाई के बाद दो संदिग्ध लोगों को हिरासत में लिया गया जिनके पास से भारी मात्रा में मादक द्रव्य बरामद हुए। पुलिस ने गाड़ी को रोका जिसे निकोला कौशी चला रहे थे। उनकी मॉरिशन एवं फ्रांसीसी दोहरी नागरिकता प्राप्त है। गाड़ी में अफसरों को 146

0: 20 ग्राम से अधिक के तथाकथित हेरोइंस मिले, ड्रग के कई पैकेट्स भी मिले और साथ में कैलिबर 12 की एक बंदूक भी। संदिग्ध व्यक्ति गुडलैंड्स के रहने वाले एक वॉचमैन इमिलियो बंदूक के साथ था। उसके बाद जांचकर्ताओं ने पेरेबिया में निकोला कौशे के घर पर छापा मारा, वहां से गांजा और हेरोइन के कई पैकेट्स मिले। इसके अलावा एक इलेक्ट्रॉनिक तराजू भी, जिस पर मादक द्रव्य के निशान थे। दूसरे संदिग्ध के यहाँ पुलिस को शस्त्र और कैलिबर 12 की गोलियां मिली। संदिग्ध व्यक्ति ने जिस गाड़ी का इस्तेमाल किया गया उसे जब्त कर दिया गया। बरामद मादक द्रव्य की लागत 2.7 मिलियन रुपए से अधिक की बताई जाती है। गांधीनगर नॉर्थवेस्ट के कैदखाने में पेश आए हादसे के बाद एक जांच शुरू की गई है। असल में दो कैदियों पर अस्थायी आरोप है कि उन्होंने एक अन्य कैदी पर हमला किया। 46 वर्षीय व्यक्ति को चेहरे पर चोट लगी। कैदखाने के एजेंट जल्द ही स्थिति को नियंत्रित करने पहुंचे, साथ ही अन्य दो कैदियों पर अन्यों ने हमला किया। कैदियों की मेडिकल यूनिट की ओर से तीनों घायल लोगों को संभाला गया, फिर इलाज के लिए उन्हें रोजवेल स्थित जवाहरलाल नेहरू अस्पताल ले जाया गया। बढ़ते हैं विदेशी समाचारों की ओर। सबसे पहले रुख करते हैं भारत, जहां पर भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 11 मई को पुनर्निर्मित सोमनाथ मंदिर का लोकार्पण की 75वीं वर्षगांठ के कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। उन्होंने ये जानकारी देते हुए एक लेख में भव्य दिव्य सोमनाथ धाम को समर्पित अपनी भावनाएं भी व्यक्त की। और भारत से ये भी खबर है कि तमिलनाडु में यथापति विजय की पार्टी तमिलनाडु वेंट्री कजगम TVK के सरकार बनाने का रास्ता लगभग साफ हो गया है। CPI, CPIM, VCK और कांग्रेस ने TVK को समर्थन देने की घोषणा की है, जिसके बाद पार्टी मुख्यालय के बाहर जश्न मनाया जा रहा है। और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ में अमेरिकी नौसैनिक विनाशक और ईरान के बीच गोलीबारी के बावजूद ईरान के साथ अभी भी युद्ध विराम जारी। दोनों ही पक्ष एक दूसरे पर सबसे पहला हमले करने का आरोप लगा रही है। संक्षिप्त समाचार ये पर समाप्त हुए। आपने ध्यान दिया, इसके लिए धन्यवाद। कुछ ही समय में शोक समाचार। नंबर 31 सेंट फामी रोड सेंट क्वामे, नंबर 31 सेंट फामी रोड सेंट क्वामे 64 साल के 64 ईयर्स ओल्ड के श्री कुमार नेओल जो दत्त नाम से भी जाने जाते थे की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थ थी कल सुबह 10 बजे उनके घर नंबर 31 सेंट फामी रोड सेंट कॉसे उठाकर अंतिम संस्कार के लिए वाले दिफ्र की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रोमेशन टुमरो एट 10 AM। फेलिक्स देवाटो शॉ दे माउस पोर्टलिस में, फेलिक्स देवाटो शॉ दे माउस पोर्टलिस में 70 साल के 70 ईयर्स ओल्ड के श्री बिपिन रोही जो बिपिन नाम से भी जाने जाते थे की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल दिन के दो बजे उनके घर फेलिक्स देवाटो शॉ दे माउस पोर्टलिस से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए थॉकबर्ग की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रोमेशन टुमरो एट 2 PM। शोक में डूबे इन परिवारों के साथ हमारी दिली हमदर्दी है।
1: Center 95.5, North South 95.6, East West 98.2.
2: You are listening.

0: देखता था कि कैसे वहां पर ये जितने जो अडाप्टेशन होते हैं, जैसे यूनिवर्सिटी के बिल्डिंग है, बच्चों के लिए अलग से जैसे एक संस्था होता है, और वहां पर ये लोग कितना आराम से ये एग्जाम के लिए जब पढ़ते हैं तो बैठते हैं तो आधा घंटा एक घंटा और मिलता है, क्योंकि उन लोगों का लर्निंग डिफिकल्टी है ना, तो उन लोगों का ये राइट होता है।
1: अच्छा,
0: तो मैं ये देखा। दूसरी बार है कि वहाँ पर जैसे स्पेशल नीड स्कूल होते हैं, और कितने धैर्य से, जैसे आपने बोला, वो बच्चों को पढ़ाते हैं,
1: तो मैं सोच रहा था
0: पेशेंस, बहुत पेशेंस, हाँ, क्योंकि अलग अलग बच्चे अलग अलग तरीके से वो बिहेव करते हैं,
1: ये वन टू वन होता है।
0: हाँ, तो वन टू वन रहता है या वन टू इज टू, मैक्सिमम वन इज टू सिक्स, तो वहाँ पर हेल्पर भी होता है, क्योंकि बड़ा देश है ना इंग्लैंड, तो बड़ा देश है, तो वहाँ पर रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा है। हाँ। और जैसे यहाँ हर देश का नागरिक उन लोगों के लिए प्रिय है, तो मॉरिशस में भी हम सब बच्चे तो हमारे ही देश के बच्चे हैं, तो उन सब लोगों को देखना हमारा जिम्मेदारी रहता है ना, तो वहाँ पर भी यूके में खास, तो वहाँ से मैंने प्रेरणा ली है। और जब मैं मॉरिशस आया 11 साल के बाद, तो मैंने देखा कि यहाँ पर काम है लेकिन उतना ज़्यादा नहीं था उस समय, तो मैंने सोचा तो गवर्नमेंट तो अपना काम कर रहा है, तो एज एन एनजीओ मैं क्या कर सकूंगा। जैसे बोलते हैं ना, लुक व्हाट यू कैन डू फॉर योर कंट्री एंड नॉट व्हाट द कंट्री कैन डू फॉर यू, तो उस विषय में तो मैंने सोचा कि एक संस्था हो जो इस क्षेत्र में काम करे, और एक स्कूल से सीमित नहीं हो
1: जी,
0: ज्यादा से ज्यादा बच्चे उससे जुड़े,
1: यानी कि आप बाकी स्कूल को अपने साथ जोड़ लेते हैं।
0: हाँ, जोड़ लेते हैं, या वहां पर जाते हैं, खेल कूद, जैसे खाना वितरण, कुछ ऐसा एक बच्चों को आकर्षित करने के लिए
1: जी।
0: अभी हाल ही में गत हफ्ता मैंने एक स्कूल में वो स्टोरी टेलिंग किया था।
1: अच्छा,
0: तो जो
1: स्टोरी टेलिंग कोर्ट करता है, आपके टीचर्स आपके साथ
0: नहीं, मैं खुद,
1: आप खुद करते हैं?
0: हाँ, मैं खुद करता हूँ, और खुद मैं जो वॉलंटियर्स जो होते हैं, जो स्कूल जो बच्चे जो स्कूल से जो छुट्टी पैर पर है, तो मैं उन लोगों को लेकर उन लोगों को मैं जोड़ता हूँ।
1: तो ये तो आप हमारे नौजवानों को, हमारे बच्चों को प्रेरित कर रहे हैं कि वो भी ऐसे जो कि ज़्यादातर आजकल मोबाइल पे समय बिताते हैं, कम से कम वो बच्चे जब उनसे मिलेंगे तो उनको पता चलेगा कि भाई हम कितने खुश नसीब हैं कि हम लोग एक नॉर्मल स्कूल जाते हैं, हमारे लिए किसी को कुछ करना नहीं पड़ता, हम अपनी चीज़ें खुद कर सकते हैं। तो बच्चों के लिए भी प्रेरणादायक होता है कि वो कुछ समझते हैं, कुछ सोचते हैं, और अगर ऐसे बच्चों को छुट्टी के टाइम अगर हम ऐसी जगह लेके जाएं और उनकी दोस्ती कराएं, उनको आदत दें, तो कल को जैसे कि आपने एक अच्छा काम शुरू किया तो ये सारे बच्चे साथ मिलकर काम करेंगे।
0: मैं एक उदाहरण देता हूँ आपको। 20 साल पहले मॉरिशस में जब जैसे देखते हैं यहाँ मॉरिशस में मॉल्स होते हैं बहुत ज़्यादा,
1: जी जी,
0: 20 साल तो 20 साल आगे नहीं, तो नहीं था ये नहीं सब था। तो विषय नहीं था, तो हम सिर्फ मार्केट में जाते थे या स्कूल जाते थे जहाँ पर बहुत लोग जुटते थे, जैसे शादी में चले गए, तो अब मॉल है, तो मॉल में एक नॉर्मल बच्चा और एक स्पेशल नीड बच्चा वहाँ पर मिलते हैं, तो वो मान लो उसको एक फिट हो गया, जैसे एक सीजर जैसा, तो ये देखेगा तो उसको जैसे एक अजीब सा दिखेगा, तो ज्यादातर लोग क्या करते हैं, मोबाइल निकाल कर उसको फिल्म करते हैं।
1: हाँ हाँ, आजकल तो ये ही सब चल रहा है कि वीडियो बना लेते हैं, सोशल मीडिया पे डाल देते हैं, मदद करने के लिए कोई नहीं आता।
0: मान लो स्कूल में, स्कूल बस में है या कहीं जा रहा है, तो उसको फिट हो गया, तो वो ये क्या करेगा, उसको बुली करेगा। तो बोलेगा जैसे अलग अलग, मैं यहाँ ये सब शब्दों का मैं उपयोग नहीं करूँगा, लेकिन आप समझ जाएंगे कि ये बोलते हैं कि ये फलाना ऐसा है, तो ये सब इंक्लूजन के दृष्टि से हमने ये संस्था की स्थापना की है, जिससे कि ये दो जो नॉर्मल बच्चे हैं और स्पेशल नीड बच्चे हैं साथ में आकर काम करें।
1: उनको पता होना चाहिए कि कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जिनको हमारी जरूरत है, तो उन बच्चों को बताना पड़ता है, सिखाना पड़ता है कि आपको जाकर उनकी मदद करनी चाहिए, उन बच्चों को आपकी ज़रूरत है। तो जब उनको लगेगा कि हाँ उन बच्चों को हमारी ज़रूरत है तो हमें जाना पड़ेगा। अब जैसे स्टोरी टेलिंग, जब वो वहाँ पे स्टोरी टेलिंग कर रहा है तो कहीं ना कहीं वो अपने आप को भी एडुकेट कर रहा है। तो ये सेल्फ एडुकेशन जो होता है, सेल्फ एडुकेट करें बच्चे खुद को, क्योंकि उनको कहानी सुनाने के लिए कहानी पहले पढ़नी चाहिए, सीखनी चाहिए। तो वो सीख कर सिखा रहे हैं जो कि उनके ही
0: स्व

0: स्वाध्याय जैसे मैं बच्चों को मैं डालता हूँ, ये मैं प्रेरणा देता हूँ कि आकर खुद देखें, क्योंकि ये जो बच्चे हैं वो लोग पढ़ते हैं, नॉर्मल बच्चे तो आकर पढ़ लेंगे, एक टेक्स्ट को पढ़ लेंगे, तो ये जिसके डिफिकल्टी है वो शब्द वो नाच रहे, जैसे हाँ। किसी को वो पढ़ रहे ना, तो जैसे मान लो ये शब्द नाच रहे हैं तो उसको फोकस करने में थोड़ा समय लगेगा। किसी को पढ़ना आता है लेकिन वो दिमाग और जो जुबान है वो अलग अलग कोऑर्डिनेशन में चल रहा है,
1: वो बोल नहीं पाता।
0: हाँ, बोल नहीं पाता है। कोई विजुअली इम्पेयर्ड है तो उसके लिए अलग से तरीके।
1: लेकिन सारे बच्चे एक ही स्कूल में होते हैं
0: लगभग। हाँ। लेकिन स्पेशलाइज भी होता है मॉरिशस के अंदर, तो विजुअली इम्पैक्ट का अलग से स्कूल होते हैं।
1: जिन बच्चों को आंखों की प्रॉब्लम है हाँ, वो अलग, अलग होते अलग। हैं, जिनको बोलने की प्रॉब्लम हाँ, है वो हाँ। थोड़ा अलग होते हाँ। हैं, और फिजिकली अगर हाँ। उनके लिए तो सारे बच्चे जो हैं उनको अलग अलग।
0: लेकिन लगभग जब मॉरिशस में लर्निंग डिफिकल्टी, ऑटिज्म ज़्यादा और डाउन सिंड्रोम, कोई सब एक ही स्कूल में लगभग जाते हैं।
1: तो ये जो ऑटिज्म वाले जो बच्चे होते हैं इनको एक्स्ट्रा अटेंशन देना पड़ता है।
0: हाँ, देना पड़ता है, और उन लोगों के लिए थेरेपी भी है,
1: क्योंकि मुझे पता है कि वो लोग ज़्यादातर लोगों से मिलना पसंद नहीं करते, वो ह्यूमन टच पसंद नहीं करते, जो कि मैंने अभी थोड़ी कुछ जाना है जब हमारे प्रोग्राम के लिए, तो मैं जानना चाहती थी उनके बारे में। तो मुझे पता है कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो मिलना चाहते हैं, जिनको अच्छा लगता है। मेरे साथ भी ऐसा हुआ था कि मैं एक फंक्शन में गई थी जहाँ पर एक बच्चा था, और वो आके मुझे टच कर रहा था, मेरे हाथ को टच कर रहा था, ऐसे आके टच कर रहा था, और फिर बहुत खुश हो रहा था, और फिर मेरे गाल को टच करके बहुत खुश हो रहा था। जबकि दूसरे बच्चे, तो मैंने सोचा कि सारे बच्चे ऐसे ही होंगे, तो मैं दूसरे बच्चे के पास जब गई तो वो पीछे हट रहा था, क्योंकि उसको पसंद नहीं है, उनको भीड़ भाड़ पसंद नहीं है। और मैंने ये भी जाना कि उनको लाइट्स वगैरह भी अच्छे नहीं लगते।
0: लाइट
1: हाँ, बहुत ज्यादा लाइट्स हो तो उनको अच्छा नहीं लगता, बहुत सारे लोग हो तो उनको अच्छा नहीं लगता।
0: कोई फोटो सेंसिटिव होते हैं, जैसे लाइट है ना, तो ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, तो उन लोगों को भी वो सब नहीं अच्छा लगता है। और एक मजे की बात मैं बताता हूँ, जैसे यूके में टीवी पर जब कोई ऐसा फ्लैश होता है या कुछ होता है तो आपको चेतावनी दी जाता है। हाँ, नीचे लिखते हैं कि there will be flashing on the, क्योंकि कुछ किसी को उसको पसंद नहीं है ना, तो लोग जान जाते हैं कि इसमें थोड़ा फ्लैश होगा या ज्यादा लाइट होगा या कुछ ऐसा रहेगा,
1: तो बच्चों को
0: तो सावधान, हाँ, उसको सावधान करने के लिए जैसे लिखते हैं ना, धूम्रपान ये सब मना है, तो उस तरह का फ्लैशिंग लाइट डाल देते हैं।
1: वैसे बात करते हैं जब ऐसे बच्चों की, तो नॉर्मली जब एक बच्चे को डायग्नोसिस किया जाता है, उनका डायग्नोसाइज किया जाता है, जब पता चलता है कि ये जो बच्चा है ये लाइक ऑटिज्म उसको हुआ है या तो फिर उसको आँखों की प्रॉब्लम है, तो ऐसे बच्चे जो हैं, जब माँ बाप को पता चल गया कि बच्चों को कोई प्रॉब्लम है, तो इन बच्चों के लिए उनका लीगल राइट क्या होता है?
0: उन लोगों के लिए जैसे मैंने बताया है कि कॉन्स्टिट्यूशन में उन लोगों का ये सेम, जैसे सब बच्चों का राइट एक ही है, समझना, तो इन लोगों को राइट है कि वो अप्रोच करते हैं, जैसे यहाँ अब अथॉरिटी बन गया है स्पेशल एजुकेशन नीच अथॉरिटी, तो वहाँ पर बच्चों के लिए एक स्पेशल वो वहाँ पर अप्लाई कर सकेंगे। और दो है, एक तो गवर्नमेंट स्कूल रिसोर्स सेंटर्स, और दूसरा है एनजीओज होते हैं, जैसे लकी चार।
1: तो ज्यादातर बच्चे आपको, आप तो हर एक स्कूल में जाते हैं, तो आपको ज्यादा बच्चे कहाँ नजर आते हैं?
0: सभी जगह है जहाँ पर उसका, जहाँ पर रहते हैं
1: पास।
0: हाँ, पास
1: में। अगर वो पास में रहते हैं तो हाँ, जो गवर्नमेंट स्कूल है वहाँ जाते हैं। हाँ, लेकिन अगर वो जो लोग थोड़ा दूर रहते हैं उनके अगर बगल में अगर कोई एनजीओ है तो वो बच्चे वहाँ पे जाते हैं। और बहुत सारे एनजीओ हैं मॉरिशस
0: में, बहुत एनजीओ आ रहे हैं इस क्षेत्र में काम करने के लिए, और होना भी चाहिए, क्योंकि देख रहे हैं कि आधुनिकीकरण की वजह से और ये सब पॉपुलेशन और बढ़ रहा है, तो ये है। और लगे हाथ में बताना चाहता हूँ कि जितने जो ये बच्चे हैं उन लोगों के लिए जैसे सरकार पूरा उन लोगों को देखते हैं,
1: यानी कि ये गारंटी है सरकार की तरफ से
0: कि एजुकेशन फुल
1: इनका अधिकार है, इनको अधिकार है, तो इनको पढ़ाई के लिए, लाइक कोई भी ऐसा बच्चा नहीं है जो घर पे रहता है,
0: नोबडी इज लेफ्ट आउट।
1: हाँ, यानी कि अगर कोई माँ बाप जो हैं वो काम करते हैं और के घर में कोई बच्चा है, दादी उनका ख्याल रखती है वगैरह, तो ये जो एनजीओज हैं या तो सरकार की तरफ से, उनके लिए ट्रांसपोर्ट आता है उनको लेने के लिए?
0: ये सब होता है
1: सारे बच्चों के लिए,
0: बच्चों
1: कोई बच्चा पीछे नहीं रहता, सारे बच्चे
0: कोई ना कोई उस लोगों के लिए ये रहता है, वो ट्रांसपोर्ट ये सब उपलब्ध हो जाता,
1: उनको प्रोटेक्ट किया जाता है।
0: हाँ ये सब, क्योंकि इन ये बच्चे स्पेशल नीड होते हैं, लेकिन हमको ये भी दे आर नॉट लेस एबल,
1: जी लेस एबल, जी
0: दे आर नॉट लेस एबल,
1: जी
0: इसीलिए आगे बोलते थे, ये एक टर्म आया था बीच में, आगे तो औजिकापे बोलते थे,
1: हाँ
0: तो बाद में आया कि ओथोमा कपाब, तो पुकवा ओथोमा कपाब, everybody is able, nobody is, समझ रहे ना,
1: इसीलिए उसको चेंज किया,
0: इसको चेंज किया, फिर वापस गया औजिका पे, और इन लोगों को स्पेशल नीड,
1: स्पेशल नीड्स,
0: हाँ
1: क्योंकि
0: ओथोमा कपाब,
1: हाँ क्योंकि
0: पॉलिटिकली रॉन्ग हो गया,
1: फर्क है दोनों में, फर्क है दोनों में, एक बच्चा जिनको शारीरिक तौर पे कोई प्रॉब्लम है और एक बच्चा जो अपने आप से पढ़ाई नहीं कर पा रहा है, उनको आंखों से नहीं दिख रहा है, तो दो अलग चीजें हो गई, क्योंकि जिस बच्चे को पैर के साथ प्रॉब्लम है या हाथ के साथ प्रॉब्लम है, फिर भी उनका दिमाग सही चल रहा है और वो अपने स्कूल में जा रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, फोकस कर रहे हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम तब आता है जब बच्चे समझ नहीं पाते हैं, जब उनको समझाना पड़ता है, तब उनसे बात करनी पड़ती है। और मुझे लगता है कि ऐसे बच्चों के साथ बहुत कार्मली पेश आना चाहिए, आराम
0: कोमलता से,
1: हाँ बहुत आराम।
0: मैं एक चीज़ मैं अपना अनुभव से मैं बताता हूँ आपको, जब ये गत हफ्ते की बात है, जैसे मैंने बोला स्टोरी वाला, तो एक क्लास में 20 लोग थे, तो पहला जिसको हमने बोला कि एक हमने रखा था कितने अभी स्टोरी बुक्स, तो उन लोगों को बोला गया कि एक चूज करो, पढ़ो और आकर सामने पढ़ो। तो पहला जो सबसे कॉन्फिडेंट था, क्योंकि उसमें घर में इंग्लिश ये सब काफ़ी कॉमन था, तो वो आकर बात किया। तो चलते चलते जिसको जो पिछला जो है सत्र में जो सबसे जो टिमिड था बच्चा, वो बोल रहा है नहीं नहीं मैं नहीं जाऊंगा। तो ये बच्चों को देखकर तो बाद में उसको भी थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया,
1: यानी कि बच्चों के साथ रहकर, उनके साथ पढ़ लिख कर, जब उनको देखते हैं कुछ करते हुए, तो उनको कॉन्फिडेंस आता है,
0: आता है।
1: तो ये यानी कि जहां तक मैं समझ रही हूँ कि ऐसे जो बच्चे होते हैं उनमें कॉन्फिडेंस नहीं होता है,
0: थोड़ा
1: उनमें डर होता,
0: हाँ,
1: है
0: थोड़ा थोड़ा डर होता है, लेकिन सभी में नहीं। मैं एक उदाहरण देता हूँ, अभी साउथ में एक मैं एक स्कूल में गया था, एक स्पेशल एजुकेशन नीड्स स्कूल में, तो वहाँ पर बच्चे गाना गा रहे थे,
1: बच्चे गाना गा रहे थे,
0: हाँ, हाँ। बच्चे गाना गा रहे थे और एक आह्वान बजा रहा था,
1: हाँ।
0: और जब वे आए तो डीजे थोड़ा देर से वो म्यूजिक चलाया, तो ये बच्चा जाकर सब सबसे ऐसे ऐसे कर रहा है, सबको मिल रहा है, वो बोल रहा है आलो आलो सबसे, तो इतना कॉन्फिडेंस आ गया। तो मैं मेरे पास एक वहाँ के जो एक मंत्री था, तो मैं बोल रहा हूँ देखो कितना हम इन लोगों पर जैसे कॉर्पोरेट में कितना पैसा खर्च करते हैं कॉन्फिडेंस के लिए, और ये देखो इसमें ब्रीमिंग कॉन्फिडेंस इतना ज़्यादा है
1: बच्चों को, जैसे एक टाइम पे जब उनको ये खुशी मिल जाती है, क्योंकि जैसा मैंने कहा था कि मैं भी एक इवेंट में गई थी और वहाँ पर मैंने भी विटनेस किया कि बच्चे जो हैं अगर म्यूज़िक लगा दो, अगर एक ने डांस करना शुरू किया, दूसरा आ गया, तीसरा आ गया, तो एक दूसरे को देखते हुए सब थोड़ा सा उनका डर भाग जाता है कहीं, और फिर एक बात अगर उन्होंने एंजॉय करना शुरू कर दिया, मैंने उनको डांस करते हुए देखा है, मैंने गाना गाते हुए सुना है, मैंने उनको गावान आप बोल रहे हैं, मैंने गावान बजाते हुए सुना है, मैंने उनको बॉलीवुड के गाने गाते हुए सुना है, और मैंने सबसे उनसे मिल एक बच्चा आया जो जिसने मुझे हक किया, फिर दूसरा आया, फिर तीसरा आया, तो सब बारी बारी करके जैसे जैसे उनके लिए एक उनको करना ही है, तो वो मुझे जानते नहीं पहचानते नहीं, एक से मैंने बात करी उसने मुझे हक किया, दूसरे ने देखा दूसरे ने आके हक किया, तो लगा जैसे वो अपनापन ढूंढते हैं, लेकिन थोड़ा सा समय लगता है,
0: समय लगता है। लेकिन एक मैं अब एक उदाहरण देता हूँ, जैसे एक लीड होता है उसी ग्रुप में,
1: हाँ।
0: तो जैसे म्यूजिक लगा तो ये उसको देख रहा है,
1: सब फॉलो करते हैं,
0: सब सब सब फॉलो करते हैं, तो एक एक शब्द आता है हमने नेगेटिव उसका कोनोटेशन दिया है, पीयर प्रेशर, तो पीयर प्रेशर हो गया ना, तो ये एक मॉब बिहेवियर हो जाता है, इंग्लिश में मॉब बिहेवियर, तो ये एक किया और दूसरा किया, तो जिसके पास कॉन्फिडेंस बिल्कुल जीरो है
1: वो भी आएगा,
0: वो भी चला आएगा,
1: क्योंकि उसको पता है उसको करना है, सबने मुझे करना है,
0: तो ये ग्रुप थेरेपी बहुत बहुत आवश्यक है इन बच्चों के लिए, जैसे ग्रुप थेरेपी जैसे सब लोग आते हैं। तो लकी चाइल्ड एक दूसरा काम करता है
1: जी।
0: लकी चाइल्ड क्या करता है, जो माँ बाप होते हैं
1: जी,
0: अब ये तो बच्चे हो गए, जो माँ बाप होते हैं उन लोगों को कॉन्स्टेंटली ये परेशानी होती है कि मेरा बच्चा ऐसा है, मेरा बच्चा ऐसा है। कोई तो डिनायल में भी है, वो बोलते हैं नो नो नो नो मुजाफोबिया, तो ये भी एक बुरी बात है। बच्चा यदि पीड़ित है उसको स्पेशल स्कूल में लेकर जाओ
1: जी,
0: उसको अटेंशन वाला ये ऐसा ग्रुप थेरेपी ये सब कराओ। और दूसरी बात है कि पेरेंट्स जितने जो होते हैं, जैसे यूके यूएस में होता है अल्कोहल एनोनिमस, जो जैसे शराब भी है वो सब आकर एक जगह बात करते हैं, तो प्रयास हो रहा है लकी चाइल्ड में जितने जो पेरेंट्स हैं एक साथ आए और उन लोगों का डिस्कशन कैसे तो वो हैंडल कर रहे हैं,
1: ऐसे बच्चों के साथ इवेंट्स वगैरह होता है, म्यूजिक डे वगैरह होता है, तो पेरेंट्स आते हैं।
0: हाँ आते हैं, तो ये जैसे मैं बता रहा था उस दिन जब ये बच्चा कर रहा था तो उसके माँ बाप
1: बड़े खुश थे।
0: हाँ बहुत खुश थे, क्योंकि इतने कॉन्फिडेंस से बच्चे आ गए हैं स्कूल में और पढ़ाई के साथ साथ ये सब एक्टिविटी,
1: क्योंकि एक नॉर्मल इंसान को मान लो कोई इवेंट हो रहा है, एक नॉर्मल इंसान से जब आप बात करने जाते हो, हम ही जब कभी बात करते हैं, कभी इंटरव्यू लेने जाते हैं, अगर हमने माइक लेके अगर किसी के सामने रख दिया तो वो घबरा जाते हैं, नॉर्मल इंसान घबरा जाता है। अब एक इवेंट कर रहे हैं, एक म्यूजिक डे कर रहे हैं, एक स्पेशल प्रोग्राम कर रहे हैं जहाँ पर आपका जो बच्चा है स्टेज पर परफॉर्म कर रहा है, तो ये बड़ी बात होती है,
0: बहुत बड़ी बात।
1: तो ऐसे बच्चों को स्टेज पर लाने के लिए मुझे लगता है कि जो एफर्ट्स होता है वो ज्यादातर उन टीचर्स का होता है जो उनके साथ काम करते हैं।
0: बहुत सराहनीय बात है, क्योंकि ये क्योंकि बच्चों को पहला तो वो लोग जब आते हैं स्कूल में तो जैसे बोलते हैं फाहुश, क्योंकि एक तो अकेले से उसका है, वो अकेले अकेले रहता है, बाद में स्कूल में आता है तो ये मॉब बिहेवियर के साथ वो बढ़ता है, बड़ा होता है, अब बाद में इसको स्टेज पर लेकर जाना, तो ये बहुत एक भरतनाट्यम भी मैंने देखा है
1: जी,
0: जो स्पेशल नीड बच्चे को और एक पियानो बजाते हुए और गाना, तो मल्टी टैलेंटेड होते हैं ये बच्चे।
1: तो अगर हम बात करते हैं इक्वल अपॉर्चुनिटीज एक्ट 2008 डिस्क्रिमिनेशन को रोकने में क्या रोल अदा करता है,
0: तो जैसे बोलते हैं ना उसमें इक्वल अपॉर्चुनिटी में सबको एक समान। आप शायद अभी पोर्टलू में जाएंगे तो सोशल ये है एनपीएफ बिल्डिंग, उसमें देखेंगे तो काफी एक विकलांग वो एक लड़का है, वो लिफ्ट चलाता है।
1: अच्छा।
0: हाँ। तो उसको सामान्य रूप से उसको रखा है, क्योंकि उसका भी काम होना चाहिए ना उसके रोजगार के लिए
1: जी,
0: तो उसको बैठाया है वहां पर, तो उसको काम है सिर्फ आपको पूछना कहाँ जा रहे हैं किस फ्लोर पे, तो वो दबा देगा, बस सिंपल सी बात है। किसी को रिसेप्शनिस्ट में बैठाया है रिसेप्शन पे, या फोन ऑपरेटर, तो उसका रोजगार आ रहा है, उसका भी इक्वल राइट है। और एक दूसरा चीज है कि हमने ये मॉरिशस में 20 साल पहले हमारे बिल्डिंग्स जो होते थे वो अडाप्टेड नहीं थे, जैसे विकलांग लोग आ गए या कोई ऐसा जो उसको नहीं समझ में आता था या विजुअल इम्पेयर, तो अब देखेंगे बाय है वहां पर जाएंगे तो डॉट डॉट होता है, तो ये सब जैसे
1: हर जगह
0: असिस्टिव ये टेक्नोलॉजी आ गया है और उसमें एआई भी आ गया है अब
1: जी
0: सभी जगह, तो इन लोगों की मदद के लिए।
1: ओके, तो हमारे पास एक दो सवाल भी, अगर हमारे श्रोता भी सवाल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। एक सवाल हम आपसे करना चाहेंगे तो कि आप समझा सकते हैं कि ये जो डिसेबिलिटी एक्ट 2016 इंक्लूजन और एक्सेसिबिलिटी जो होता है वो कैसे सपोर्ट करता है।
0: हाँ, तो यही मैं बोल रहा हूँ, जैसे बिल्डिंग पब्लिक बिल्डिंग्स ज़्यादातर उसमें स्कूल्स में, तो ये जो जितने जो स्कूल है जितने जो पब्लिक बिल्डिंग्स है आप अभी जाएंगे तो
1: इसके अलावा
0: हाँ उसमें ये एक चीज़ हो गया है। और दूसरा है कि इक्वालिटी, उसमें कोई भेदभाव कुछ नहीं
1: जी।
0: हाँ
1: तो नॉर्मली अगर कोई ऑफिस में जा रहा है काम करने के लिए तो दोनों का हक बराबर बनता है, यानी कि अगर अगर किसी को कोई समस्या है भी, लेकिन अगर उनका रिजल्ट देखते हैं और देखते हैं कि वो ज़्यादा लायक हैं उस काम के लिए, तो उसको इग्नोर करके उनको पूरा हक दिया जाता है कि वो
0: नहीं, उसको उसको उसके हिसाब से एडजस्टमेंट।
1: जी चलो ये तो ठीक है। अभी जब हम बच्चों की बात कर रहे हैं तो जैसा भी आप कह रहे थे कि ये जो बच्चे हैं इनके लिए अलग अलग स्कूल बनाए गए हैं, अलग अलग एनजीओज में इनको रखा जाता है, तो वहाँ पे जो बच्चों के लिए काम होता है तो क्या सिर्फ पढ़ाई ऐसी पढ़ाई होता है, वो नॉर्मल तरीके से जो बच्चे होते हैं उनका तो शायद नॉर्मल तरीके से होता है, लेकिन जब हम ऑटिज़म की बात करते हैं तो यहाँ पर बच्चों को समझने में थोड़ी तकलीफ होती है, तो ऐसे बच्चों का जो फ्यूचर होता है सरकार की तरफ से लाइक क्या होता है?
0: यहाँ पर देखेंगे कि एक जैसे एक प्रैक्टिकल थिंग में मैं आपको मैं बस बताता हूँ, हमारे जो ब्रेन होता है वो प्लास्टिक होता है
1: जी,
0: समझे ना, तो उस पर काम करते करते वो जो एक जैसे प्लास्टिसिटी होता है वो बदलता रहता है, हमारा जो दिमाग होता है जो ब्रेन है, तो वो जाकर अब देखेंगे एक बच्चा जब एक मैंने एक प्रैक्टिकली मैंने देखा है कि बच्चा जो है जो जब आया था स्कूल में तो वो ऐसा स्पेशल नीड का वो हम उसको एक एक्सट्रीम केस था, तो बाद में चलते चलते चलते वो जैसे पेशाक पार कर गया वो HSC पार कर गया, यूनिवर्सिटी तक चला गया। तो ये भी होता है,
1: ऐसे बच्चे,
0: ऐसे बच्चे हैं
1: आपके, आपके,
0: मैंने देखा,
1: आपने देखा है,
0: हाँ, यूनिवर्सिटी तक चले जाते हैं,
1: तो ऐसे बच्चे, लेकिन बहुत कम ऐसे बच्चे होते हैं,
0: कम होता है लेकिन होता है,
1: होता है,
0: हाँ, हो जाता है,
1: वो काम भी करते हैं, नॉर्मल काम भी करते हैं,
0: नॉर्मल काम करते हैं, कोई आर्टिस्ट बन गया, कोई प्रोफेशनल बन गया, कोई डॉक्टर बन गया,
1: डॉक्टर भी,
0: तो क्योंकि ये बदलता रहता है ना आपका, क्योंकि वो पढ़ रहा है उसको समझ में आ रहा है, कोई म्यूजिशियन बन गया, बड़ा म्यूजिशियन, तो ये सब होता है।
1: ओके, जब स्कूल की बात करें तो स्कूल में ये लाइक बच्चों के लिए एडजस्टमेंट करना ये उनका अधिकार बनता है कि अगर कोई किसी बच्चे को कोई तकलीफ़ है, अगर वो स्कूल जा रहा है, नॉर्मल स्कूल भी जा रहा है, तो ये जो स्कूल है चाहिए कि वो एडजस्ट करे बच्चे के साथ, जैसे कोई बच्चा अगर व्हीलचेयर में जा रहा है तो
0: उसकी, वही मैं तो पता है ना,
1: हाँ नहीं मैं स्कूल की बात कर रही हूँ, स्कूल की बात कर रही हूँ, तो स्कूल में भी ये सब, यानी कि स्कूल में भी ये सारी जो सुविधाएं हैं ये भी बच्चों को प्राप्त हो रहा है अभी।
0: और मॉरिशस में और एक चीज है कि हेल्पर भी आ गया है
1: स्कूल में,
0: हाँ स्कूल में, जो जो बच्चे वहाँ पर रजिस्टर करते हैं, जो मान लो कोई हैंडीकैप हो गया या कोई इसमें है, तो उन लोगों के लिए एक खास एक हेल्पर भी आ गया है, तो सरकार उन लोगों को भी ये देते हैं,
1: सारे सारे स्कूल में,
0: सारे स्कूल एक बच्चे स्पेस,
1: हाँ,
0: बच्चे,
1: नहीं,
0: के
1: साथ,
0: कि,
1: हाँ, बच्चे
0: बच्चा
1: के साथ।
0: का एक बच्चा जब भी स्कूल प्राइमरी स्कूल में है तो एक केयर उसके साथ रहता है, तो मान लो एक क्लास में पढ़ रहा है, मान लो उसको
1: एक क्लास से निकलकर दूसरी क्लास में जाना
0: है, या वॉशरूम जाना है,
1: तो वो उनको लेकर जाते
0: हैं, उसको लेकर जाते हैं, हैंडल करते हैं, उसको वॉशरूम लेकर जाना, उसको एक क्लास से दूसरे क्लास में जाना। अब मान लो सेकेंडरी स्कूल में चला गया तो प्राइमरी स्कूल में एक ही क्लास डेडिकेटेड होता है, है ना, और सेकेंडरी स्कूल में एक क्लास से यहाँ कंप्यूटर लैब से आर्ट रूम, आर्ट रूम से डिज़ाइन रूम, डिज़ाइन रूम से म्यूजिक रूम, तो ये सब के लिए एक डेडिकेटेड रहता है,
1: तो ये ज़रूरी है, यानी कि उनको
0: सरकार दे रही है,
1: मांग करनी चाहिए,
0: हाँ,
1: और अगर एक जो हेल्पर है अगर वो नहीं आ पाए तो उसके उसको कोई और किसी और को भेजा जाता है,
0: हाँ,
1: लेकिन हेल्पर होना
0: चाहिए,
1: यानी कि बच्चे का हक है, पूरा अधिकार है कि उनके साथ स्कूल में एक हेल्पर हो। अब अगर एक क्लास में दो या तीन बच्चे ऐसे हो तो तीनों का अलग अलग हेल्पर होता है या एक ही हेल्पर होता है जो तीनों की मदद करता है?
0: तो डेडिकेटेड होना चाहिए ना, तो ये बहुत रेयर है
1: ऐसा अभी तक,
0: क्योंकि
1: अगर अगर हम देखें, अगर लीगली तौर पे हम अगर देखते हैं कि अगर
0: सबका अपना अपना होगा,
1: सबका अपना अपना होता है, यानी कि अगर एक क्लास में तीन ऐसे बच्चे हैं तो तीनों का अलग अलग एक हेल्पर होगा,
0: एक नहीं होगा कि सभी, समझे ना, और बहुत यहाँ मॉरिशस में पॉपुलेशन कम है ना
1: जी,
0: तो इंसिडेंस प्रोबेबिलिटी बहुत कम है कि एक क्लास में दो तीन ऐसे बच्चे होंगे, लेकिन होंगे तो सबका अपना अपना रहना चाहिए।
1: तो
0: पर्सनल केयर है ना, तो सबका अपना अपना होना चाहिए।
1: आप कभी, आप लोगों को ऐसे केसेस आए हैं जहाँ

0: वहाँ पर जो माता पिता हैं उनका बच्चा जो है उनको कोई प्रॉब्लम है, लेकिन फिर भी वो अपने बच्चे को स्कूल नहीं भेजते, क्योंकि बच्चे का तो हक है ना स्कूल जाना।
1: नहीं, स्कूल जाना तो अनिवार्य है
0: जी,
1: लेकिन ऐसे
0: मान लो कोई माँ बाप है, उनके घर में एक ऐसा बच्चा है जो थोड़ा सा देर से समझता है, लेकिन माँ बाप जो है कहते हैं कि नहीं, मैं अपने बच्चों को नहीं स्कूल नहीं भेजना चाहती हूँ, तो लीगली तौर से अगर हम देखते हैं तो ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि वो बच्चे की पढ़ाई रोक रहे हैं, जबकि बच्चा स्कूल जाके कुछ सीख सकता है, जबकि बच्चा हो सकता है कि धीरे धीरे करके अपने आप को इम्प्रूव कर सकता है। लेकिन अगर आपने उनको घर में कहे नहीं, हमारे पास दादा दादी हैं, बच्चे को वही देखेंगे, हम उनको स्कूल नहीं भेजेंगे, ऐसा हुआ है?
1: नहीं, स्कूल भेजना तो ये
0: नहीं, आपके पास कोई ऐसे
1: ऐसे नहीं आया है, लेकिन केसेस आए हैं जहाँ पर माँ बाप डिनायल में है कि मेरा बच्चा स्पेशल नीड्स है। ये है।
0: तो ऐसे में क्या करते हैं, वो उनको नॉर्मल स्कूल भेजना चाहते हैं?
1: तो वो जैसे अड़े रहते हैं कि मेरा बच्चा ठीक है और वो वही स्कूल में जाएगा,
0: तो
1: और वहाँ सबको परेशान कर रहा है,
0: ऐसा हुआ है कई केसेस हुए
1: है,
0: तो ऐसे में लीगली तौर पे
1: तो तब उसको उन लोगों को काउंसलिंग किया जाता है,
0: माँ बाप को।
1: हाँ, तो कि
0: उनको समझाया जाता है कि देखो ये सही नहीं है, आप गलत कर रहे हैं, और अगर वो उसी जिद पे अड़े रहे तो
1: होता है, और टेस्ट ये सब रहता है, तो ये
0: बच्चों का टेस्ट होता है।
1: हाँ, बच्चों का टेस्ट, काउंसलिंग, थेरापिस्ट ये सब जाकर, ये ऑक्यूपेशनल थेरापिस्ट भी होता है, तो उन लोगों को सब जब एक डायग्नोसिस होता है तब ऑफिशियली उन लोगों को बताया जाता है कि
0: तो हम अगर यहाँ से अगर हम 10 या अच्छा ठीक है यहाँ से अगर हम निकलकर 20 साल पीछे जाते हैं तो बच्चों का ये अधिकार था पहले, उनको एक्नॉलेज किया गया था,
1: था, 20, हाँ। था, लेकिन संस्था नहीं थे
0: अच्छा
1: इतना ज्यादा, बहुत कम एनजीओज होते थे उस समय
0: उन बच्चों के लिए।
1: हाँ, बच्चों के लिए
0: तो अभी सारी सुविधाएं
1: अब सब है ना, बहुत जब रिसोर्स सेंटर हो गया है, एनजीओ बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं, और
0: तो बच्चों को अभी कोई परेशानी नहीं,
1: नहीं अभी तो कोई नहीं बोल सकेगा, लेकिन सिर्फ एक चीज है कि मान लो मैं विजुअली इम्पेयर्ड हूँ, मैं माइबू में रहता हूँ और स्कूल बोबासा में है, तो ये थोड़ा दूर पड़ जाता है
0: जी।
1: लेकिन ज्यादा ऐसा वो हम मॉरिशस के अंदर ये देख रहे हैं कि सभी जगह स्कूल्स है, एनजीओ और रिसोर्स सेंटर।
0: आपके हिसाब से जब हम इन बच्चों के बारे में बात करें हैं जो स्पेशल नीड्स वाले बच्चे हैं, तो ये जो बच्चे होते हैं इनको जब पढ़ाया लिखाया जाता है, इनको इनको पढ़ाया लिखाया इसलिए जाता है ताकि बाकी बच्चों की तरह इनको भी वो हक मिले कि वो अपने आप को एडुकेट करे, लेकिन जब आप लोग बाहर जाते हैं जैसे आपने कहा कि एक स्कूल में अगर कोई बच्चा है उसको हेल्पर की ज़रूरत है, तो ऐसे जो बच्चों का जो स्कूल होता है उनको बाहर आप लोग लेकर जाते हैं, पिकनिक्स पे लेकर जाते हैं, तो वहाँ पे उनको हेल्प कौन करता है?
1: तो यही जो डेडिकेटेड जो रहता है उन लोगों के साथ, तो उन्हीं लोगों के साथ जाते हैं,
0: क्योंकि अगर एक एक बच्चे के साथ अगर आप एक हेल्पर डाल रहे हैं तो मान लीजिए एक क्लास में 10
1: नहीं, आप स्पेशल स्कूल्स के बारे में बात कर रहे हैं, स्पेशल स्कूल से तो उन लोगों के साथ हेल्पर रहता है, तो एक एक मान लो 5 बच्चे के लिए एक हेल्पर और एक टीचर है
0: वो रहता है।
1: हाँ, वो रहता है ना,
0: यानी कि उनकी
1: सब सुविधाएं होती है,
0: या तो फिर माँ बाप के साथ उनको भेजा जाता होगा?
1: नहीं नहीं, वो सब लोग आते हैं, मैं अभी इंडिविजुअली स्कूल में मुझको पता नहीं है, लेकिन जैसे देखते हैं कि स्कूल में जब जाते हैं तो वहाँ पर जो सीवियर केसेस है उन लोगों के साथ एक डेडिकेटेड रहता है
0: जी,
1: जो सीवियर केसेस में जो बच्चे है तो अटैच रहता है
0: जी,
1: लेकिन बाकी जो होता है वो अलग अलग से एक बाँच का एक टीचर और एक हेल्पर या 6 बच्चों
0: का। आज हम जब हम बात कर रहे हैं बच्चे, वो बच्चे स्पेशल नीड्स वाले जो बच्चे हैं उनका जो अधिकार होता है वो सिर्फ पढ़ाई तक सीमित नहीं होता,
1: पढ़ाई तक सीमित नहीं होता है, जैसे मैंने बोला इक्वल अपॉर्चुनिटी काम के लिए। अब जैसे आप बोल रहे थे कि एक मान लो एक संस्था में उसको काम मिला, तो उसके आधार पे मान लो, क्योंकि सिर्फ मान लो उसका हैंडीकैप उसके पैर में है, तो दिमाग हाथ तो शाम का काम कर रहे हैं ना,
0: हाँ, तो उनको काम करने में कोई तकलीफ नहीं होगी, वो काम कर सकते हैं।
1: सिर्फ अडाप्टेशन होना चाहिए, जैसे एक मान लो विजुअली इम्पेयर है तो उसके लिए अलग से

0: कीबोर्ड होता है और स्क्रीन थोड़ा बड़ा होगा या उसका अडाप्टेशन, वो तो सभी कंप्यूटर में होता है
1: जी। यानी कि बच्चों को अभी ऐसी कोई तकलीफ नहीं होती?
0: नहीं होना चाहिए।
1: और नहीं होना चाहिए,
0: नहीं होना चाहिए।
1: और ऐसे कोई केसेस आपको मिले हैं जहाँ पर माँ बाप शिकायत करते हैं किसी चीज़ को लेकर कि बच्चे जो हैं स्कूल जाना नहीं चाहते, कोई टीचर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होता है, ऐसे
0: ऐसा कुछ नहीं है। अब जब ट्रेनिंग हो रहा है, MI में ट्रेनिंग होता है और यूनिवर्सिटी में भी ये सब आ गया है, UTM भी कुछ अभी ट्रेनिंग दे रहा था, अभी MI भी इसमें सक्रिय हो गया है, तो जो बच्चे जो काम करते हैं उस क्षेत्र में उन लोगों को जैसे बोलते हैं गॉड सेंट, गॉड गिफ्ट है
1: जी,
0: उन लोगों में एक अलग का यो करेज हो जाता है जो इन लोग इन सब बच्चों के साथ काम करता है और बहुत करेज के। और मैं अभी 6 साल हो गया है जब से हमने लकी चाल का वो हमने किया है, 2019 में हुआ था, तो अब देखते हैं कि बहुत एम्पैथी हो गया है इन टीचरों में,
1: अलग लेवल
0: का हो गए है, तो जो काम करते हैं वो बहुत नमी से पेश आते हैं बच्चों के साथ, कोई कोई तो मारता है भी वो कैरो को जब एक फिट में उसको मार देता है, तो लेकिन वो सह लेते हैं क्योंकि वो लोग को पता है कि ये
1: यानी कि जो लोग काम करते हैं बच्चों के लिए उनको पहले से ही समझा दिया जाता है कि देखो ये बच्चे इनको फिट्स आते हैं तो आपको थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा, और ऐसे में अगर बच्चे को ये आ गया तो उनको पता है कि ये
0: ये तो नॉर्मल पॉटन पॉसिल, नॉर्मल चीज है।
1: वैसे हमारे जो श्रोता है अगर आप हमें फोन करना चाहते हैं तो 4028085 पर आप हमें फोन कर सकते हैं अगर आपके पास कोई सवाल है। तो अभी के लिए तो हम इतना जान चुके हैं कि जो बच्चा स्पेशल नीड वाले जो बच्चे होते हैं उनका क्या अधिकार है, उनका अधिकार है कि वो पढ़ाई करें, उनका अधिकार है कि वो समाज में बैठे, उनका अधिकार है कि वो अगर काफ़ी होशियार है तो वो डॉक्टर भी बन सकते हैं, वो जीवन में आगे बढ़ सकते हैं, वो कोई भी ऐसा काम है वो कर सकते हैं, है ना। तो जब हम स्पेशल नीड्स वाले बच्चे बात कर रहे हैं तो 18 प्लस या अगर कोई इंसान जैसे कि कोई डॉक्टर बन गया जैसे आपने बोला, तो कभी ऐसा हुआ है कि बाद में जाकर उनको कोई तकलीफ हो रही है या हम उनको बच्चे तो नहीं बोलेंगे क्योंकि वो तो बड़े हो गए, एडल्ट्स हो गए हैं, तो मैं थोड़ा सा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट निकल कर मैं आपसे पूछ रही हूँ, तो कभी ऐसा हुआ है कि लोग आकर कहते हैं कि नहीं ये डॉक्टर के साथ मुझे ये नहीं करना, नहीं, उनको थोड़ा
0: ये
1: मेंटली क्या वो प्रिपेयर्ड होते हैं इसके
0: लिए? लेबल नहीं करेंगे ना क्योंकि
1: वो मेंटली प्रिपेयर्ड होते हैं।
0: हाँ, क्योंकि एक चीज़ है, मैं एक किसी को पर्सनली जानता हूँ, वो उसको ये थोड़ा स्पेशल नीड है फिर भी उसको ये फिट होता है, ये क्या वो एपिलेप्सी, एपिलेप्टिक फिट होता है, तो अब आधुनिकरण में देखेंगे कि उसको स्लो रिलीज टैबलेट दिया जाता है, तो एक टैबलेट सुबह में लेता है तो पूरा दिन उसको हेल्प करता है, तो
1: उनको रोज लेना पड़ता है?
0: हाँ, रोज लेना पड़ता है, लेकिन वो ठीक है, वो काम कर रहा है, अपना काम कर रहा है। आगे 20 साल पहले तो रेगुलरली उसको फिट आता था, अब आ गया है टैबलेट जो स्लो रिलीज है, उसको लेता है और आप मज़े से काम करता है।
1: यानी कि अभी अगर हम देखेंगे कि ये जो स्पेशल नीड्स वाले जो बच्चे हैं ये किसी से कम नहीं है, ये सेम है, हम जैसे ही हैं, जैसे हमें लगता है कि उनमें कोई कमी है उनको लगता हो कि हमें कोई कमी है, है ना, हम उनको जिस नज़र से देख रहे हैं वो हमें दूसरी नज़र से देख रहे हैं कि इसका दिमाग बहुत ज़्यादा चलता है, इतना स्ट्रेस क्यों लेता है, क्योंकि ज़्यादातर स्ट्रेस तो जो जिन्हें हम नॉर्मल कहते हैं वही लेते हैं ना, एग्जाम का स्ट्रेस होता है, सबका स्ट्रेस होता है, ऐसे बच्चों को किसी चीज़ का स्ट्रेस नहीं होता है, वो जो भी करते हैं अपने धुन में करते हैं।
0: ये एक चीज़ मैं मज़े की बात में बताता हूँ आपको, मैं किसी को जानता था, वो बहुत बढ़िया वो पेंटिंग करता था
1: जी,
0: तो पेंट करते करते करते एक चूक हो गया, पता क्या किया उसने, उसको फाड़ के फिर उससे बताना है परफेक्ट,
1: यानी कि उनके दिमाग में होता है कि उनको परफेक्ट बनाना है,
0: परफेक्शन,
1: कहीं कभी कुछ गलती हो गई तो
0: गलती नहीं, गलती से फिर से शुरू करेगा।
1: तो हमारा प्रोग्राम ही ऐसा है कि हम इन बच्चों के बारे में जानें, इनके अधिकार के बारे में जानें। कुछ और ऐसी चीजें हैं जो मैं कहीं पे मिस कर रही हूं जो आप हमारे श्रोताओं को बताना चाहते हैं?
0: नहीं, हमको उन लोगों को एक बहुत पॉजिटिव तरीके से देखना पड़ेगा, इंक्लूजन। कोई कोई शरारती होते हैं तो ये सब तो नॉर्मल है, लेकिन उन लोगों को डिफरेंट, वी शुड नॉट सी देम एज डिफरेंट,
1: क्योंकि हम बच्चों के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम बच्चों के अधिकार के बारे में बात कर रहे हैं, उनके लीगल राइट्स के बारे में बात कर रहे हैं, चाहे उनके माँ बाप हो, चाहे वो बच्चे हो, चाहे वो स्कूल हो, हम उनकी लीगल राइट्स के बारे में बात कर रहे हैं कि उनका हक बनता है। तो उनका हक और कहाँ पे बनता है, यही जानने के लिए आज हमने आपको बुलाया है, ताकि जो माँ बाप उनको लगता है कि भाई हमारा बच्चा कुछ कर सकता है, जैसे आपने कहा कि कोई बच्चा है जो पेंटिंग कर सकता है, तो पेंटिंग सिर्फ घर के अंदर चार दीवारी के अंदर क्यों, उनका हक बनता है, तो उनको कहीं ना कहीं सपोर्ट मिलता है कि वो तो कुछ करे।
0: यहाँ पर जब जैसे
1: हर कोई डॉक्टर नहीं बन सकता, हर कोई ऑफिस में बैठ के काम नहीं कर सकता, कुछ बच्चे जो होते हैं जैसे आपने कहा उनको सिर्फ ड्राइंग करना आता है तो वे सिर्फ ड्राइंग करेंगे, तो सिर्फ ड्राइंग से जीवन तो नहीं आगे लेके जा सकते।
0: हाँ, यहाँ पर मैं रेखांकित करना चाहता हूँ कि मॉरिशस में अभी ये सब जितना जो फ्रेमवर्क है वो ज्यादा ये है, क्या बोलते हैं उसको, मॉरिशस में नेसेंट स्टेज पर है अभी, समझे ना, एडवांस बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन आराम से ये धीरे धीरे वो आ रहा है।
1: तो अब तक
0: तो एजुकेशन में हमने बहुत ठोस कदम ले लिए है,
1: यानी कि पढ़ाना है, इनको कुछ सिखाना है, समझाना है। कल को अगर वो कहीं पे ट्रैवल कर रहे हैं, कल को कहीं पे वो जा रहे हैं, जैसे आपने कहा कि ऐसे लोग जो होते हैं, ऐसे बच्चे जो होते हैं, बहुत जैसे उनको बहुत ज़्यादा शोर शराबा, बहुत सारे लोग पसंद नहीं होते, तो धीरे धीरे करके क्या उनको इंट्रोड्यूस किया जाता है, उनको लोगों के साथ, जैसे कोई इवेंट हुआ या कुछ भी हुआ या कहीं पे उनको लेकर गए पिकनिक में, तो ये जो बच्चे हैं वो घुल मिल जाते हैं, तो उनको पता है कि वो, उनको क्या ये जो टीचर्स हैं उनको सिखाते हैं कि देखो आप एक नॉर्मल इंसान हो, आपको ऐसे बिहेव करना चाहिए।
0: तो यही है, यही मैं बता रहा हूँ कि होलिस्टिक एक तो हो गया होलिस्टिक एजुकेशन, दूसरा है कि एजुकेशन पर बहुत बल है, और जितने जो डिसेबिलिटी आँख हो गया, इक्वल अपॉर्चुनिटी आँख हो गया है, उन लोगों को जोड़ने, समेटने और इसमें रखने के लिए बहुत ज़्यादा काम हो रहा है,
1: यानी कि
0: अवेयरनेस बहुत ज़्यादा हो रहा है,
1: यानी कि इन बच्चों को उनका अधिकार दिलाने के लिए बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। और आपका जो लकी चाइल्ड है ये भी शामिल है इसमें, जैसे आपने कहा कि आप हर एक एनजीओ में, स्कूल्स में जाते हैं, और वहाँ पर बच्चों को पढ़ाते हैं, उनका सेशन चलता है, और साथ ही साथ जो छुट्टी पे जो बच्चे होते हैं, हॉलीडेज चल रहा है, उनको लेकर जाते हैं, उनको सिखाते हैं, दिखाते हैं कि देखो भाई इनका भी पूरा, तो उनको दिखाया जाता है, बताया जाता है कि इनका भी पूरा हक है समाज में, जैसा आपका अधिकार है वैसा उसका भी अधिकार है।
0: जैसे बुलिंग हो गया, बुलिंग तो एक तो फिजिकल भी होता है, असॉल्ट भी होता है,
1: ऐसे बच्चों को जब उनको बुली किया जाता है तो सरकार की ओर से भी लीगली उनको कदम उठाया जाता है,
0: क्योंकि उसको मार देते हैं या किसी को मारता है तो असॉल्ट हो जाता है, तो ये
1: ऐसे केसेस भी आए हैं।
0: हाँ, बहुत ज्यादा।
1: और ऐसे में क्या करते
0: हैं? तो पुलिस में जाते हैं, पुलिस में जाएंगे, उसमें कंप्लेन करेंगे, और वो सब बाद में वो कोर्ट तक चल जाता है।
1: ऐसी चीजें, ऐसे बहुत सारे केसेस आए होंगे,
0: बहुत ज्यादा नहीं, क्योंकि इन लोगों का अलग ट्रांसपोर्ट होता है ना। अब देखो ये मोबाइल पर
1: आस पड़ोस में भी ऐसे अगर कोई बच्चों के साथ ऐसे बुली करे, उनको कुछ बोले, या माँ बाप को, क्योंकि ज्यादातर लोग बच्चों को बुली करेंगे, बच्चों को तो कुछ समझ में आएगा नहीं, माँ बाप को बुली करते हैं।
0: ये
1: तो कोई हक नहीं बनता किसी को कि वो माँ बाप को भी बुली करे, अगर कोई भी उनको बुली करता है तो वो एक्शन ले सकते हैं।
0: एक्शन लेंगे, क्योंकि वो थोड़ा
1: चाहे बच्चा हो चाहे माँ बाप हो, कोई भी हो, आपने अगर किसी ऐसे बच्चे को बुली किया तो ये एक
0: कानूनी अपराध है
1: जी,
0: तो कानून में अपराध है, और हमको चुप नहीं रहना है,
1: आपको आवाज उठानी चाहिए,
0: आवाज उठानी चाहिए।
1: तो जितने भी हमारे श्रोता इस समय हमें देख रहे हैं, अगर आपके घर में कोई ऐसा बच्चा है, या आपको कोई, अगर आप ऐसे माँ बाप हो जहाँ पर आपको बुली किया जाता है, तो आपको चाहिए कि आप रिपोर्ट करें, क्योंकि किसी को कोई हक नहीं बनता कि वो आप पे आकर उंगली उठाए, आपको बुली करे या तो फिर आपके बच्चे को बुली करे। तो इसीलिए आपके लिए लीगली ये आपका अधिकार है, कानूनी अधिकार है कि आप जाकर उनके बारे में कंप्लेन करें। और जो लोग आपको परेशान कर रहे हैं, जो आप लोगों को ठीक से रहने नहीं दे रहे हैं आपको, क्योंकि कहते हैं ना कि भाई परेशान करके रख देते हैं, तो किसी का हक नहीं बनता कि आपको परेशान करे। आपको टोटली हक बनता है कि आप ऐसे केसेस को कंप्लेन करें। तो देखिए, हमारा प्रोग्राम जो है वो भी अभी थोड़ी देर में समाप्त होने जा रहा है, लेकिन जाने से पहले हम चाहते हैं कि थोड़ा सा हम वाइंड अप कर ले, थोड़ा सा फिर हम उन बच्चों के बारे में बात करें। और जैसे आप कह रहे थे कि जो लक्की चाइल्ड है आपकी, जो एनजीओ है, ये भी पूरी कोशिश कर रहा है कि उन बच्चों को, जो बच्चे हैं, वैसे अभी आपने कहा कि 20 साल पहले जो हो रहा था और अभी जो हो रहा है अलग है। पहले एनजीओज नहीं हुआ करते थे, इतने स्कूल्स नहीं हुआ करते थे, अभी हैं। बच्चों को पूरी तरह से उनका ख्याल रखा जाता है, और यहाँ तक कि आपने कहा कि स्कूल में जो हेल्पर हैं उनको भी कहीं ना कहीं उनको भी नौकरी मिल रही है, कि चलो आपको भी नौकरी मिल रही है। तो काम तो दोनों तरफ से बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन लीगली हम जब बात करते हैं बच्चों की, तो कोई भी बच्चा घर पे, ऐसे बच्चे जिनको स्पेशल नीड्स वाले बच्चे, उनको घर पर रखना सही बात नहीं होता है, ये अपराध होता है।
0: अपराध है, और जैसे बोलते हैं राइट टू एजुकेशन अप टू द एज ऑफ 16, तो 16 years you should be in that system. तो ये सिस्टम में 16 साल तक you have to be in the system. और यहाँ पर मॉरिशस में बहुत बढ़िया काम सेना कर रहा है, स्पेशल एजुकेशन नीड अथॉरिटी, और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन भी अच्छा काम कर रहा है उसमें. तो बहुत आदान प्रदान हो रहा है विदेश से, जैसे यूनिवर्सिटी हो गया, जैसे देश में दूसरे देश से वहाँ
1: सब साथ में काम
0: सब कर रहे हैं, कंसल्टेशन भी हो रहा है, एक्सचेंज प्रोग्राम्स भी हो रहे हैं, अलग अलग यूनिवर्सिटी से हम ये कर रहे हैं, और वी आर नॉट लिविंग एनीबॉडी बिहाइंड, ठीक है,
1: सबका हक बनता
0: है, सबका हक बनता है।
1: हम यहाँ पे लोगों की बात करते हैं, अधिकार की बात करते हैं ज़्यादातर हमारे प्रोग्राम में। तो आज हमारे जो स्पेशल नीड्स वाले बच्चे हैं उनका अधिकार क्या है, ये भी आप भी समझ गए हैं, और समझाना ज़रूरी है। और अभी आप कहते हैं ना अवेयरनेस, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि लोगों को बताएं कि देखो ये बच्चे जो हैं ये हो सकता है कि

0: मुझे लगता है ऐसे बच्चों को स्ट्रेस नहीं होता है क्योंकि वो अपने ही धुन में रहते हैं, उनको जो समझना है बस वही समझते हैं, है ना। तो सारे जो बच्चे होते हैं हमारे बच्चे हैं, सारे जो बच्चे हैं वो हमारे क्या कहते हैं हमारे हम अपने सपनों की तो बात नहीं कर सकते क्योंकि हर माँ बाप का एक सपना होता है कि उनका बच्चा कुछ करे, तो वो बच्चे भी उनका भी अधिकार होता है कि वो अपने देश के लिए कुछ करे। जैसा आपने कहा कि अगर कोई पेंटिंग कर रहा है तो हो सकता है कोई किसी और चीज़ में माहिर है तो क्यों नहीं, तो सारे बच्चों को उनका अधिकार मिलना चाहिए।
1: तो एक चीज़ है मॉरिशस में है ओम्बुड्समैन फॉर चिल्ड्रन, श्रीमती अनिता गुरा जी अभी उसका ये है हेड है, तो वहाँ पर भी उनका ऑफिस है, तो वहाँ पर भी ये कंप्लेंट जब भी बुलिंग होता है या कुछ ऐसी परेशानी तो बच्चों स्पेशली बच्चों का तो वहाँ पर भी हो सकेगा। तो ये एक एक माध्यम है, या पुलिस में नहीं करेंगे तो ओम्बुड्समैन
0: लीगल एक्शन लेना पड़ता है।
1: हाँ हाँ, तो वो वहाँ पर आपको गाइड करेंगे कैसा क्या करना चाहिए।
0: तो बच्चों को, ऐसे बच्चों को आप घर पे ना रखें क्योंकि उनका अधिकार है कि वो स्कूल जाएं, और उनका अधिकार है कि वो पढ़ाई लिखाई करें, उनका अधिकार है कि वो समाज में सबके साथ घूमें फिरें। बुली करना मना है, याद रखिए। अगर आप ऐसे किसी परिवार को जानते हैं तो उनको समझाना, क्योंकि वो क्या करते हैं कि भाई अब हैं तो हैं, हम क्या करें, उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी खो जाता है, ऐसा होना नहीं चाहिए। उनको भी थोड़ा सा एजुकेट करना चाहिए, उनके समझाना चाहिए। तो हमारा जो आज का कार्यक्रम है, अश्विन कतवारू जी जो एक जूरिस्ट हैं आज हमारे प्रोग्राम में आए हैं इन बच्चों के बारे में बात करने के लिए, जो स्पेशल नीड्स वाले बच्चे हैं उनकी जो शिक्षा है उनको क्या हक है, और इनके बारे में हम बात कर रहे थे। तो हमारा प्रोग्राम यहाँ पर समाप्त होता है। आपने अपना कीमती समय निकाला, उम्मीद करती हूँ कि आपका जो लकी चाइल्ड NGO है वो सबके साथ कर सारे बच्चे जो है उनको स्पेशल बनाएं, और जो बच्चे हैं वो अपने आप को अकेला ना समझे, अलग ना समझे, बल्कि वो अपने आप को, जैसे कहते हैं ना स्पेशल, हम स्पेशल नीड्स, तो हम वो उनको स्पेशल नीड्स नहीं बल्कि उनको हम खास बनाना चाहते हैं, और हम चाहते हैं कि उनको खास तौर पे उनको देखा जाए। और जैसे मैंने कहा था ना कि वो जो ऑटिज्म वाले बच्चे होते हैं वो ज़्यादा स्किन वो टच पसंद नहीं करते हैं, लेकिन एक बार अगर उनका दिल आ गया ना आप पे तो ये बच्चे जो है ना बहुत खुश हो जाते हैं। ये खुशी मैंने महसूस की है, मुझे पता है मैं क्या कह रही हूँ। और कभी ना कभी अगर आपको मौका मिलता है तो ऐसे बच्चों के साथ ऐसे स्कूल में थोड़ा सा समय ज़रूर बिताएगा, फिर आपको पता चलेगा कि हमारा जो दुख है ना वो बहुत कम है, क्योंकि ये जो बच्चे होते हैं शायद उनको पता नहीं कि उनके साथ क्या हो रहा है, उनके माँ बाप जो हैं उनके साथ रहते हैं उनको तकलीफ़ हो सकती है, लेकिन ये बच्चे अपने ही धुन में रहते हैं। तो रिस्पेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, बच्चा जैसा भी हो रिस्पेक्ट का हकदार वो भी है।
2: अपनी घर मिलाते चलिए, शाम के ठीक 4 बज रहे हैं। समय हो चुका है संक्षिप्त समाचारों का, तो आइए इसे हम रजनी के साथ है सुनते हैं। नमस्कार आपको रजनी।
3: नमस्कार श्रोताओं को भी नमस्कार। समाचारों में आप सभी का स्वागत करते हैं। शुरुआत करते हैं कृषि के साथ। जी हाँ, एक टिकाऊ कृषि और कृषि डाइवर्सिफिकेशन के लिए खाद्य सुरक्षा की राष्ट्रीय स्ट्रेटेजी के सिलसिले में कृषि उद्योग मंत्री डॉक्टर अरविंद दुलेर और जूनियर मंत्री फाविज दाविद ने रोजवेल शुगर स्टेट द्वारा संचालित कृषि जमीनों का कल दौरा किया। यहाँ पर जमीन तैयार की जा रही है जहाँ पर मुख्य रूप से सब्जी पैदावार की जाएगी। 300 बीघा कृषि जमीन में से 150 खेती के लिए निर्धारित, साथ ही अन्य जमीनों पर ईख के गन्ने उगाए जाएंगे। लोगों से वापस जमीन की ओर जाने के अलावा उत्पादन से फसल तक सभी चरणों में मशीनीकरण पर जोर दिया जा रहा है ताकि श्रम शक्ति खर्च कम किए जा सके। कैप मालेगांव में कैप लिस्पोर शेल्टर के मैनेजमेंट की ओर से बताया जा रहा है कि वहां पर खाद्य सुरक्षा तथा साफ सफाई और किस्म को लेकर नियंत्रण प्रक्रियाएं बढ़ाई जा रही है। जेंडर इक्वालिटी मंत्रालय द्वारा कल प्रकाशित एक विज्ञप्ति से ये बात सामने आई। असल में शेल्टर में रहने वालों के लिए निर्धारित भोजन परोसे जाने में बर्गर ब्रेड खराब होने के तथाकथित आरोप मिलने पर सोशल मीडिया पर चित्र दिखाए गए, जिसके बाद ये मामला सामने आया, प्रतिक्रिया सामने आई। इसके अलावा विज्ञप्ति में ये भी बताया गया कि मामले को योग्य अधिकारियों के हवाले किया गया है, जैसे पुलिस और रिव्या चौक पर स्थित सैनिटरी दफ्तर। बोपलों के एक पंप स्टेशन में चलाई गई ये कार्रवाई के बाद दो संदिग्ध लोगों को हिरासत में लिया गया जिनके पास से भारी मात्रा में मादक द्रव्य बरामद

0: हुए। बताया जाता है कि बरामद मादक द्रव्य की लागत 2.7 मिलियन रुपए से अधिक की है। गानव्या नौफ़ेस्ट के कैदखाने में पेश आए हादसे के बाद एक जांच शुरू की गई है। दो कैदियों पर अस्थायी आरोप है कि उन्होंने एक अन्य कैदी पर हमला किया। 46 वर्षीय व्यक्ति को चेहरे पर चोट लगी। कैदखाने के एजेंट जल्द ही स्थिति को नियंत्रित करने पहुंचे, साथ ही अन्य दो कैदियों पर अन्यों ने हमला किया। कैदियों की को मेडिकल यूनिट की ओर से तीनों घायल लोगों संभाला गया, जिसके बाद इलाज के लिए उन्हें रोजवेल स्थित जवाहरलाल नेहरू अस्पताल ले जाया गया। विदेशी समाचारों की ओर बढ़ते हैं, रुख भारत। पश्चिम बंगाल में ऐतिहासिक राजनीतिक परिवर्तन की घड़ी आ गई। कोलकाता में जारी बीजेपी विधायक दल की बैठक से बड़ी खबर आ रही है कि शुभेंदु अधिकारी को पार्टी ने अपना नेता चुन लिया है और वे बंगाल के अगले मुख्यमंत्री होंगे। अमित शाह और मोहन चरण मांझी की मौजूदगी में हुई इस बैठक में उनके नाम पर मुहर लग गई। शुभेंदु अधिकारी कल यानी 9 मई को सुबह 11 बजे कोलकाता के ऐतिहासिक रायगेट परेड ग्राउंड में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। संक्षिप्त समाचार ये पर समाप्त हुए। आपने ध्यान दिया, धन्यवाद, नमस्कार।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio TV, NBC Radio TV.
2: Center 95.5, North South 95.6, East West 98.2.
3: You are listening your RM3 Manoranjan Radio.
4: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.

की चिट्ठी मिली, की चिट्ठी मिली। आपकी चिट्ठी मिली कार्यक्रम सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं का हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। ये रेडियो मनोरंजन का प्रसारण है और इस समय स्टूडियो की घड़ी में शाम के 4:09 हो चुके हैं। अभी से लेकर शाम के 5 बजे तक मैं हूँ रत्ना, आपका साथ देने आई हूँ कुछ ऐसी अद्भुत कहानियों के साथ जो आप ही के लिखी द्वारा, आप ही के द्वारा लिखी गई चिट्ठियों में हमें प्राप्त होती है। तो चलिए आज की ये पहली चिट्ठी जो आई है बहुत ही हालांकि हमारे ऐसे कई सारे श्रोता हैं जो हमें कई बार ना केवल चिट्ठियों के द्वारा पर यूं ही रूबरू होकर फ़ोन के द्वारा या फिर मैसेजेस के द्वारा भी अपनी कहानी बताते हैं। और आज की ये जो कहानी है एक ऐसी माँ की है जो बहुत ही मुश्किलों का सामना करती हैं और आज के समय में वो घर घर जा जाकर हाथों से बनाए हुए फूलों को बेचती हैं। चलिए आज उन्हीं की जुबानी जो कहानी हमें उन्होंने बताई वो हम आज आपके समक्ष रखते हैं। और बिल्कुल अगर ये चाची हमारे साथ प्रोग्राम में जुड़ी हुई हैं, सुन रही हैं, तो चाची आशा करते हैं कि आज की ये कहानी जो आपने हमें बताई है बस हम उसे ठीक से डेपिक कर पाएँ, ठीक से कह पाएँ, नरेट कर पाएँ, बस यही आशा करते हैं। और सच में जब आप हमें ये अपनी दर्द भरी कहानी बता रही थी ये बहुत ही मुश्किल, हमारे सिर्फ उनको सुनकर हमें ऐसा लग रहा था कि उन पर क्या बीत रही है। जी हाँ, आज का दौर जहाँ हमें लगता है कि मुश्किलों का घेरा जो है वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा है और ऐसे समय में जब हम ना केवल आर्थिक परिस्थिति से गुज़रते हैं साथ ही साथ अगर हमारे घरों में भी कोई ऐसा वाकया हो जाता है तो उसे हैंडल करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। अब ये चाची जो हैं वो हाथ से, अपने हाथों से बिल्कुल रिबन और क्रेप पेपर और टिश्यू द्वारा फूलों को बनाती हैं। हाथों से वो फूलों को बनाकर घर घर जाकर बेचती हैं। और घर जाना मतलब बस में सफ़र करके अपना बड़ा सा टोकरा लेकर फूलों की जो गुच्छियाँ उन्होंने तैयार की हैं वो हाथों में उठाकर बस में वो सफ़र करते हुए बहुत ही लंबा सफ़र तय करती हैं और घरों में जाकर वे लोगों से मिलकर इन फूलों को बेचती हैं। जब उनसे मुलाकात हुई तो वे कहने लगी कि मुश्किल है बेटा,

सफ़र बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। 2 साल हुए मेरे पति गुज़र गए, और पति के गुज़र जाने के बाद एक महिला के लिए ज़िंदगी कितनी ज़्यादा तकलीफ़ों से भर जाती है ये तो हर महिला समझ ही सकती है कि आसान नहीं होता। पर इससे ज़्यादा तकलीफ़ देने वाली बात जब उन्होंने कहा कि अभी पिछले साल ही उनका बेटा गुजर गया। दो बेटों की मां हैं। अब आप खुद सोचिए कि जहां पर पिता के गुजर जाने के बाद जिम्मेदारी बेटे पर आती है, वही बेटा भी अगर मां को छोड़कर चला जाए, गुजर जाए, तो मां के दिल पर क्या बीतती है। पर इससे भी ज्यादा तकलीफ देने वाली बात जो वो चाची ने हमें बताई, जब हमने पूछा कि आपके बेटे की मृत्यु कैसे हुई, तो वो कहने लगी कि क्या बताऊं बेटी, आज का जो दौर है, आज का जो समय है, वो कितना ज्यादा मुश्किलों से घिरा होगा, ये कभी हमने सपने में भी नहीं सोचा था। मेरा बेटा, जिसे मैं जान से ज्यादा चाहती हूँ, वो मादक द्रव्यों के पीछे लग चुका था, और उसे ड्रग्स की आदत कब और कैसे लगी ये मैं बता नहीं पाऊंगी, क्योंकि मैं खुद नहीं जानती कि इस कदर वो उसमें डूबता चला गया। ना उसे परिवार का कोई होश रहा, ना अपनी सेहत का कोई होश रहा। अब मैं करूं तो क्या करूं। बहुत समझाया, लाख समझाया, और लाख समझाने के बावजूद वो इन झमेलों से नहीं निकल पाया, और ना उसने खुद कोशिश की निकलने की। अब आप खुद सोचिए, एक माँ के लिए ये कितना तकलीफ दह होगा जब अपनी आंखों के सामने वो अपने बच्चे को एक ऐसे खाई में गिरता हुआ देख रही है और कुछ नहीं कर पा रही। ये तो कुछ भी नहीं है, मैं आपको क्या बताऊं। मेरे बड़ा बेटा, जिसकी मृत्यु 1 साल पहले हुई, और मेरा दूसरा बेटा, वो भी शराब की लत में यूं डूबा हुआ है कि ना उसे अपने परिवार का होश है, ना बीवी बच्चों का होश है। अब आप बताइए, एक माँ होने के नाते मैं क्या करूं। सब तो यही कहेंगे कि माँ को ध्यान रखना चाहिए था, पर क्या कोई माँ चाहेगी कि उसका बच्चा एक ऐसे रास्ते पर चले जहाँ पर सिर्फ अंधियारा ही अंधियारा हो, जहाँ पर सिर्फ दुख ही हो, जहाँ पर सिर्फ तकलीफें ही हो। मेरी परिस्थिति बहुत ही मुश्किलों से भरी हुई है। अब आप खुद सोचिए, अगर मैं ये छोटा सा कारोबार उसे ना देखूं, उसे ना मैं इसमें अपना समय ना दूं, तो मैं कैसे अपने परिवार का भरण पोषण कर पाऊं। चीज़ें महंगी होती चली जा रही हैं, ज़िंदगी महंगी होती चली जा रही है, और ऐसे समय में अगर मैं सिर्फ बच्चों का ही ध्यान रखूं, तो मेरा पालन पोषण कौन करेगा, कौन संभालेगा मुझे। जिंदगी आसान नहीं है, लोगों का क्या है। बस ये कह देना कि कहीं ना कहीं गलती आप ही की है, आप खुद सोच कर देखिए, क्या कोई माँ चाहेगी अपने बच्चों को ऐसे रास्तों में ढकेलना। मैं विनती करती हूँ हर उस माँ से कि आज मेरी झोली खाली हुई है, ये आसान नहीं है।
दोस्तों उनसे बात करके मैं पूरा दिन बस यही सोचती रही कि उनकी ज़िंदगी में जो दुख आया है वो जिस कदर, और आप नहीं मानेंगे, ये जो चाची थी ये लगभग 70 वर्ष की होंगी। आसान नहीं होता 70 वर्ष की आयु में अपने पीठ पर लाद कर एक बड़ा सा बक्सा, हाथों में लंबी लंबी फूलों की टहनियों को लेकर बस में सफर करना, मीलों चलना, आसान नहीं होता। आज की ये चिट्ठी, ये जो कहानी थी, मैं समझती हूँ ये कहानी सुनकर कहीं ना कहीं हमारे दिल में भी, कई बार कहते हैं ना कि किसी के लिए राय निकलती है, किसी के लिए एडवाइस निकलती है, किसी को हम जज करते हैं, किसी के बारे में हम बस यही कह सकते हैं कि हाँ गलती इनकी ही होगी, या हो सकता है कि इन्होंने लापरवाही की और इनके बच्चे ऐसे रास्ते पर चले गए। पर आप उस माँ की मनोस्थिति को सोच कर देखिए, उनके मन पर, उनके दिल पर कितना गहरा प्रभाव होगा। और एक ऐसी परिस्थिति में कौन माँ चाहेगी अपने बच्चे को तड़पता हुआ देख, बिलकता हुआ देख, और ऐसी परिस्थिति में वो इतनी ज़्यादा असहनीय हो गई कि वे निकालना चाहें भी तो उनके बच्चों को निकलना नहीं है इन सब दलदलों से। फिलहाल आपकी चिट्ठी मिली कार्यक्रम, और जहां पर हम आपके लिखे हुए पत्रों को शामिल करते हैं, आपके कहे गए कहानियों को शामिल करते हैं। और हालांकि ये कहानियां तो नहीं हैं, ये हमारी ज़िंदगी है जो कितने मोड़ से गुज़रती है, और इन सभी मोड़ पर कहीं ना कहीं हमारे लिए क्या सरप्राइज़ रखा है ये कोई नहीं जानता। बस दिल से यही दुआ निकलती है कि माता पिता की आंखों में कभी औलाद के कारण, संतान की वजह से कभी आंसू ना आए।

चलिए यहाँ पर एक बहुत ही प्यारा सा मैसेज आया है कि रत्ना बहन ये कहानी सुनकर मेरे आंखों में आंसू आ गए। बिल्कुल, बहुत ही दर्द, कई बार कहते हैं ना कि जब दूसरों का दर्द सुनते हैं तब जाकर लगता है कि हमारा दुख इसके सामने कुछ भी नहीं। वैसे हमारे समाज में ऐसी बहुत सारी कह सकते हैं गाथा है, बहुत सारी ऐसी कहानियां हैं जिनसे हम रोज़ गुजरते हैं और कुछ लोग हिम्मत दिखा पाते हैं उसे चिट्ठियों में हम तक पहुंचाने के लिए, कुछ लोग हिम्मत दिखा पाते हैं टेलीफोन के माध्यम से हमें बताने के लिए या फिर मैसेज के द्वारा हमें लिख भेजते हैं। ये बहुत ही बड़ी बात है। यहाँ पर हमारे साथ एक भाई जी हमारे साथ जुड़े और उन्होंने अपने घर की कहानी हमें बताई कि जब वे छोटे थे तो उनके बड़े चाचा के बेटे, यानी कह सकते हैं कि जो बड़े कज़न थे, वे उन्होंने बहुत ही कम उम्र में जिम्मेदारी उठाई घर की। अब जिम्मेदारी ऐसे उठाई कि माता पिता के गुजर जाने के बाद उन्होंने अपनी बहन की देखभाल की। घर में बड़ा भाई होने के नाते उन्होंने बहन की बहुत ही ज़्यादा उनकी देखभाल करी और उनकी जो शादी हुई, बहन की जो शादी हुई वो कुछ देर में हुई और बस किस्मत का खेल देखो कि शादी उनकी देर से हुई और कुछ ही दिनों में, यानी शादी के लगभग एक या डेढ़ साल के बाद उनके जो पति थे, यानी जिस लड़की की शादी हुई उनके जो पति थे, उनको एक बीमारी के कारण उनकी मृत्यु हो गई। अब मृत्यु तो हो गई पर ये जो लड़की थी वो पेट से रही।

यानी वे प्रेग्नेंट थी। और उस समय आप खुद सोच सकते हैं कि प्रेग्नेंट होने के इस समय में उनको कितना ज़्यादा कष्ट सहना पड़ा होगा, कितना ज़्यादा उन्होंने ज़िंदगी का सामना किया होगा। और ऐसी परिस्थिति में एक बच्चे को जन्म देना, बच्चे को जन्म देने के साथ साथ उनकी देखभाल करना, क्योंकि कहते हैं ना कि एक बच्चे की देखभाल में केवल माँ नहीं, पिता का भी उतना ही सहयोग होता है, उतना ही साथ होता है, इमोशनल साथ, फिजिकल साथ। और आप खुद सोचिए कि इस महिला ने उस बच्ची को जन्म दिया, ऊपर वाले की मेहरबानी देखिए, उसे एक बेटी हुई, और इस महिला ने इस बच्चे की खातिर दोबारा शादी नहीं की, उसे पढ़ाया लिखाया बड़ा किया। पर भगवान कहते हैं ना कि जब भगवान आपके जीवन में एक तरह से दुख देता है तो दूसरी ओर आपको हिम्मत भी देता है। ये महिला ने बेटी को जन्म भी दिया, उन्हें पढ़ाया लिखाया, और सबसे अच्छी बात ये रही कि उनका परिवार का जो सहयोग था, उनका जो साथ था, वो लाजवाब। और जब परिवार करीब हो, परिवार का साथ हो, तो बड़े से बड़े तूफान से इंसान झेल सकता है उसे। और ऐसा ही हुआ, जब इस महिला ने अपनी बेटी को पढ़ाया लिखाया तो उनके परिवार का उनको बहुत ही ज़्यादा साथ मिला। और इतने समय के बाद, बस अभी हाल ही में, उस बेटी की शादी हुई। जी हाँ, यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ऐसा परिवार ईश्वर सभी को दे। और सबसे बड़ी बात तो ये है, कहते हैं ना कि कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो हमें हमेशा याद रह जाते हैं। वक्त पर हाथ छोड़ने वाला और हाथ पकड़ने वाला, दोनों ही जिंदगी भर हमें याद रह जाते हैं। चलिए, इनको ईश्वर साहस दे, हिम्मत दे। और जिन भाई जी ने हमें ये कहानी हमें टेलीफोन के माध्यम से बताई, आशा करते हैं कि आपके जीवन की ये गाथा, ये जीवन की कहानी है, इसे हम ठीक तरह से नरेट कर पाएं। आपको कहेंगे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।

0: You're listening to RM3 Radio Manoranjan.
1: चलिए, हमारे समाज में तो ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं, पर जिस बेटी की अभी अभी शादी हुई है उनके नाम हम जरूर ये गाना करना चाहेंगे आपके लिए और आपके सभी परिवार के लिए।

बहुत ही प्यारा सा गीत, 90s के ज़माने की मूवी दिल का क्या कसूर, और बिल्कुल इस गीत के बोल का हर शब्द हमें महसूस करवाता है कि आज हम ऐसी दुनिया में जीते हैं जहां पर कई बार लोग बस कहते हैं ना, फ़ायदा उठाते हैं आगे बढ़ने के लिए, और बस एक बार आगे बढ़ गए, एक बार नाम कमा लिया, फिर कहते हैं ना आम भाषा में, तू कौन मैं कौन। इसी तरह से ज़िंदगी में हम कई सारे लोगों का सहारा ज़रूर लेते हैं आगे बढ़ने के लिए, हमें सहारे की पग पग पर ज़रूरत पड़ती है, पर उस सहारे को हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। एक स्तर पर पहुंच जाने के बाद ये भूल जाना कि भाई इस व्यक्ति ने हमारी कितनी मदद की थी, कितना सहारा दिया था, और कई बार कहते हैं ना, वो छोटी छोटी जो हेल्प होती है वही हमें आगे बढ़कर बहुत ही कामयाब इंसान बनाती है। पर इंसान की फितरत तो देखिए, एक बार आगे बढ़ जाने के बाद हम भूल जाते हैं कि उन्होंने कभी हम पर एहसान किया था, और कहते हैं ना कि एहसान कभी हमें भूलना नहीं चाहिए। तो ज़िंदगी के इस सफ़र में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमारी ज़िंदगी में आते हैं कहीं ना कहीं, किसी ना किसी मोड़ पर हमारा साथ देने के लिए, और फिर धीरे कर कर धीरे से कहीं ना कहीं वो इस ज़िंदगी के भीड़ में गायब हो जाते हैं। पर हमेशा उनको याद करना, कहीं ना कहीं उनको याद करके उनका शुक्रिया अदा करना भी एक तरह से दिल से दुआ देने वाली ही बात होती है। और आज के इस कार्यक्रम में बस हम आ पहुँचे हैं हमारे आखिरी पड़ाव पर, तो याद रहे कि ज़िंदगी के सफ़र में जो आपके साथ जुड़ता है उन्हें कभी ना भूलें, और आगे बढ़ने के लिए हमेशा उनको याद रखते हुए उनको अपनी दुआओं में शामिल करें। और इसी के साथ आज के इस कार्यक्रम को हम फिल्म बेवफा के इस गीत के साथ समाप्त करेंगे। गुलाम अली साहब की आवाज़ में रखा हुआ ये आखिरी गीत, और इसी के साथ आज का ये कार्यक्रम बस यहीं समाप्त हो जाएगा। अगले सफ़र में फिर एक नई कहानी के साथ जुड़ेंगे। आपकी चिट्ठी मिली कार्यक्रम जो चलता है हर शुक्रवार शाम 4 बजे से 5 बजे के बीच रेडियो मनोरंजन के लहरों पर। वैसे हमारी और आपकी मुलाकात अभी थोड़ी ही देर में गी

और गजल कार्यक्रम रेडियो मॉरिशस पर भी होगी, तो हमारा साथ जरूर दीजिएगा। इसी के साथ आप साथ दे सकते हैं रोशन जी का, रोशन हरनाम जो हमारे बाद आ रहे हैं अगले कार्यक्रम को लेकर, जिसमें आप की मुलाकात वे करवाएंगे मॉरिशस के एक स्थानीय कलाकार के साथ। अब वे कौन है उसका कीजिए थोड़ा सा इंतजार, और इसी के साथ रत्ना को दीजिए अनुमति। नमस्कार, शुभ संध्या आप सभी को।

0: ऐसन रोचक कार्यक्रम सुनला अभी आपकी चिट्ठी मिली प्रस्तुत करलन रत्ना तुहर अपन सहेली अभी त चल घड़ी मिला ला शाम के 5 बजगल और ई प्रोग्राम वा के समय आगल
1: कलाकार की बात
2: RM3 Radio.

0: प्यारे प्यारे श्रोतागण हमारा सुना सुना संगतियालोगन तो हर यहाँ पर हमने शानदार स्वागत करते हैं इस अपन मनपसंद रेडियो चैनल रेडियो मनोरंजन और एम फ्री पर शुक्रवार के सांझ के बखत बा पांच बज गल बा और कलाकार के बाद और बहुत ही हर्ष और उल्लास के साथ आज हमने स्वागत करब जा एगो बहुत ही चमकीला सितारा से वो कलाकार भोजपुरी के जो रंगमंच में बा चाहे वो गायकी में भी बहुत ही प्रचलित कलाकार होवन तो चल हमने बहुत ही धमाकेदार स्वागत करत हैं जा अपन कलाकार के नमस्ते
1: नमस्ते भाई रोशन
0: नमस्ते और बोलो अपन परिचय द
1: अच्छा बहुत बहुत धन्यवाद और सबको सुनने वालों को बहुत बहुत नमन है मैं हूँ परमानंद सिपोल वैसे नंदेव सिपोल नाम है लोग प्यार से परमानंद सिपोल बोले लंजा अच्छा। हम त्रियोले के हैं
0: त्रियोले रहे लंजा
1: हाँ हाँ
0: हाँ हाँ और जिंदगी में क्या करेला भाई सिपोल जी
1: अभी तो हम रिटायर्ड हैं
0: रिटायर्ड हुआ
1: हाँ
0: बुझात नहीं बा तो तुहर एकदम बढ़िया स्वागत बा रेडियो मनोरंजन पर
1: बहुत बहुत धन्यवाद
0: हमने के निमंत्रण स्वीकार कर ला और है जापन कीमती समय निकाल के आईला तो श्रोतागण के बता दे ला जा कि आज के हमने को जो कलाकार हुआ जा नाम है परमानंद सिपोल जी और वो त्रियोले निवासी होवन और संगीत के क्षेत्र में बहुत दिनों से जुड़ल होवन और अभी तक जुड़ल होवन और ओकर से बहुत लोगों के प्रेरणा भी प्राप्त होला तो चल हमने के बतावा इतना हिंदी में बात करत हुआ भोजपुरी में भी अच्छा सुन तू बात करत हुआ बोला हमने के कैसे तुम्हारा भोजपुरी भाषा से लगाव होल बोला
1: देखो भाई जी जन्म ले ले हैं जा जब से जन्म ले ले हैं जा तब से भोजपुरी भाषा सुनते आवत हैं जा छोटा ही से भोजपुरी ही बोली ला जा अभी तक घर पर भोजपुरी बोली ला जा तो वैसे आलबा हमने के ई भोजपुरी भाषा और कोशिश करत हैं ऐसा कि एक आगे भी बढ़ाए के हमें नया पीढ़ी लोग आगे लेके चली
0: बहुत अच्छा भोजपुरी के बहुत मान देवत हुआ ई जोन कलाकार के बात है ई प्रोग्राम निर्धारित कर बा सब भी कलाकार के शान बढ़ाए खातिर अच्छा। और भोजपुरी के मान भी बढ़ाए खातिर और भोजपुरी के आगे ले जाए में जितना तू सहयोग देवत हो आप सहयोग देवत हुआ वो काबिले तारीफ बा ऐसे ही तू आगे बढ़ते रहिया और जब हमने परमानंद सिपोल जी के नाम सुनी लजा और ख़ासकर जोन सबसे लंबा गांव जोन हमनी के मॉरिशस देश में वो है त्रियोले और त्रियोले में जब हमनी परमानंद सिपोल जी के नाम सुनी लजा तो तुरंत वो लोग के मन में आवेला संगीत वो लोग के मन में आवेला गाना बजाना और नाट्यकला तो नाट्यकला एकर बारे में हमने बाद में चर्चा करब जा खाली कलाकार गायन के क्षेत्र में या इंस्ट्रूमेंट के क्षेत्र में नहीं है बल्कि नाट्यकला में भी कला जो कलाकार के जो हुनर है ओके देखल जाला तो हमने के बतावा संगीत

0: के सफर तो हर कैसे एक और शुरुआत हो बताओ।
1: देखा बचपन से ऐसे आल रहल जैसे कैसे बोली ला जा खून में जहाँ कुछ मिले ना हम कोनो बर्तन मिली कुछ मिली तो हम के बजावल करत रही।
0: अच्छा
1: तो हमार पिताजी देखलन ई तो एगो ढोलक किन के आन देलन बहुत छोटा के बात बोलत हैं तो ढोलक तब तक सीखे के नहीं रहल कहूँ गुरु जब सीखे और समय में लेकिन ऐसने सुनत सुनत बजावे लगली। तब हमार दादी रहलन हमार दादी जब गीत गवाई में जइन तो हमके ले ले जाते रहलन।
0: अच्छा
1: हाँ हमके ले ले जइन और उनकर जो दोस्त लोग रहलन जा वो लोग बहुत चाहते रहन कि हम आओ बोलने जा तोहर नतिया के ले ले आइए और जो ढोलकिया नतिया के वो बजावे ला ना नाचे के बहुत अच्छा लगेला।
0: अरे वाह।
1: हाँ तो ऐसे ऐसे
0: तो ढोलक में तो बजाए के तू तो बहुत ही माहिर हो जा। हम तो देख रहे हैं तोहरा परफॉर्म करते हुए सब महफिल में सभी सभी जगह जब मंदिर में भी है हॉल में भी तो ढोलक बजाए के बहुत ही स्विफ्ट हुआ जैसे बोली राजा।
1: हाँ हाँ बाद में मिलल मौका जाके थोड़ा सीखे कि हमारे पहला गुरु रलन हमने के गुरुजी धर्म ताका जी
0: धर्म ताका जी
1: उनसे पहला मिलल। वैसे ऐसे बहुत गुरु लोग संगे थोड़ा थोड़ा मिलल सीखे के
0: गुरु से शिक्षा पाकर काहे कि जो सबसे बड़ा दान है जीवन में वो है शिक्षा दान ना ज्ञान का दान और है दान तोहरा मिलल अपन गुरुजन की ओर से और तू भी है जो ज्ञान तोहर में बा वो भी बाटत हुआ। जो नई पीढ़ी बा ओकर से तनी बाटत हुआ और ये नेक कार्य करत हुआ पुण्य के काम जो है ऐसे ही बढ़ते चले जाइए। तो चलो 5:09 हो गए बात हमने के बतावा एगो गाना तोहर एगो गाना बा जो कंपोज कर ले रहा जा।
1: हाँ हाँ एगो नाटक खातिन वैसे एगो कहानी है एकर पीछे और नाटकवा सावधान नाम रहल जिनकर जिनकर डायरेक्टर नवन भाई हमने के भाई रंजन
0: राजेंद्र सदा सिंह
1: सदा सिंह। हाँ
0: तो चलो एकर बारे में विस्तार से बात करब जा पहले गाना सुन ले जा
1: जरूर
0: अगर तुहर अनुमति हुई तो हम गाना चला
1: जरूर जरूर जरूर।
0: ओके बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमने के श्रोतागण के हमने मौका देब जा और लोग सकियन से हमने के इस मेहमान से बात करे और हमने के प्रश्न के जवाब भी दे और नंबर बाद में बताब जा जोन जोन गाना चली है जा जोन जोन बात हमने के मेहमान है आज के जोन बात करियन तो ओकरे पर एगो प्रश्न हमने छठ से निकाल के तोहरा पूछब सा और देखब सा कि तू कितना पानी में खड़ा होल हुआ। तो चला रेडियो मनोरंजन से जुड़ल हुआ बहुत ही बहुत ही धन्यवाद। हे गाना सुना तो एक और उपरांत हमनी जो चर्चा हमनी की बातचीत फिर से जारी करल जाए।
2: You're listening to RM3 Radio Mana

0: RM3 Radio.
1: कलाकार की बात, कार की बात।
2: कलाकार के बाद भाई परमानंद जी के साथ है। हम तो जानी ना जब कोई तोहर से भेंट करेला परमानंद जी तो के परम आनंद प्राप्त हो जाला।
3: धन्यवाद।
2: तोहर नामो ऐसे है तो हम कहाँ बोलब तोहरा। बहुत ही सुंदर सा भी हमने एगो देशभक्त गाना सुनी जा तोहरे मधुर आवाज में भाई परमानंद जी। चले पर एकर पर एगो प्रश्न हमनी थोड़ा घड़ी में पूछब जामनी के श्रोतागण इंतजार करत हुए जा। तो चलो पहला तू बताओ कि है जो गाना निकल अभी देशवा आजाद होल भाई देशवा आजाद होल ये तोहरे बोल है भाई जी।
3: हाँ जी हाँ बोलवा हमरे हा।
2: तू ही लिख रहे हो।
3: हाँ मैं लिख रहे हैं।
2: और ओकर जो संगीत है वो के कर कंपोजिशन म्यूजिक कंपोजिशन के कर है।
3: हमार बेटा प्रभात।
2: तो हर बेटा
3: हाँ
2: वो म्यूजिक डायरेक्टर हो मन।
3: वैसे उनका डिप्लोमा है वोकल हिंदुस्तानी में।
2: वोकल हिंदुस्तानी में
3: वैसे तो सिविल इंजीनियर है मास्टर कर ले हुआ।
2: अरे वाह।
3: लेकिन संगीत में बहुत रुचि रखे और एल्बम भी निकल ले हुआ।
2: अच्छा बहुत गिने चुने जो हमनी के प्रोफेशनल है चाहे वो इंजीनियर हो या वकील या बड़ा बड़ा काम बहुत कम ऐसे व्यक्ति है जो जेकर पास ऐसा अकेडमिक नॉलेज है ज्ञान है और फिर भी वो लोग संगीत में इतना रुचि रख के और डिप्लोमा पाके और संगीत में कंपोजिशन भी करे लंजा। हाँ, नहीं तो हाँ, बहुत ही बधाई के बात है। तो ये सब तोहरे संस्कार है।
3: हाँ, हाँ, हाँ, एक एक बात रह इनमें आई करके कि है जो गानावा बना एक पूरा जितना इंस्ट्रूमेंट बा वो खुद बजैले होन।
2: उही बजले हो
3: उही बजले बा उही रिकॉर्ड कर ले बा घरी पे कर ले वन सब
2: ओकरे राग है।
3: हाँ हाँ सब पूरा पूरा और हम लिखले हैं और गईले हैं।
2: अरे वाह।
3: जैस हाँ हाँ
2: बोला
3: ई एगो नाटक खातिन सावधान नाटक खातिन ओकर शुरू में नाटकवा में चाह देशभक्ति गीत गाय के त डायरेक्टर जो रलन भाई सदा सिंह जी बोलन की चाहे लाए कुछ करे के तमोरी हम कोशिश करी ला कोशिश रहा कहाँ तक पसीनाल होई।
2: हाँ बहुत पसीनाल होई। तो बहुत सुंदर सा गाना भी हमने सुन लिया जा हमने के श्रोतागण भी सकेला बहुत ही खुश हो गलो जाए ऐसा देशभक्ति के गाना सुन के। तो चलो श्रोतागण के चर्चा कर ली तो प्रश्न लोग के खातिर रख ले जा हई गाना भी सुन ला जा बहुत ही ध्यानपूर्वक जो परमानंद जी गैले होन धमनी के बताओ 4028070 पर कत सौदे का तो मैं सोसा जिस पर बताओ हई गाना पर एगो शब्द आवेला देशवा आजाद होल। देश के आजादी कौन तारीख के मिल रहा है प्रश्न नहीं है श्रोतागण इतना आसान प्रश्न हम तो से पूछब कदापि नहीं। देशवा आजाद होल 12 मार्च 1968 यानी 1968 के। तो जल्दी जल्दी हमने के बताओ वो कौन दिन रहल सप्ताह के कौन दिन रहल। हम तोहरा तीन गो ऑप्शन देवत हई ए एतवार रहल रविवार बी सोमवार रहल या सी मंगलवार रहल। बहुत आसान हो गल बा संडे मंडे या ट्यूसडे सोच के जल्दी जल्दी बतावा जैसे हम बोलत हैं जाता बजे लगल आई जाता फोन की ट्रिंग ट्रिंग बजे लगल। चलो हमनी परमानंद जी से बात करब जा चलो हमनी के श्रोतागण के तनी हमनी स्वागत करी ल जा। हेलो हेलो हेलो। हाँ आशा जी आशा जी कैसे हो।
4: अच्छा है रोशन जी और आप अपन सुनावा।
2: हम भी ठीक हैं। ये प्रोग्राम में दिलचस्पी रखे ल बहुत बहुत धन्यवाद।
4: चाचा जी के सादर प्रणाम उनकर पहलावे गीत देश भक्ति पर रहल जो देश प्रेम की जोत जगा देलन।
3: धन्यवाद धन्यवाद।
2: जोत जगा देलन ना बहुत सुंदर एगो शब्द इस्तेमाल कर ल प्रयोग कर ल जोत। तो चलो बाद में एगो सरप्राइज बा है शब्द पर। तो आशा जी हमेशा जब आवेला तो सही जवाब दे के ही चले जावे जाला। तो बोला हमनी के जो परमानंद जी भाई के जो गाना सुनल भी और देश के जो आजादी के दिन रहल सप्ताह के कौन दिन रहल आशा जी बोल त
4: शुभ दिन रहा मंगलवार
2: मंगलवार अच्छा देखा मंगल ही मंगल हो या नहीं तो हर जवाब नोट कर लेला हम ओके आशा जी धन्यवाद
4: आपके भी बहुत बहुत धन्यवाद फिर से चाचा जी के बोलते आप ऐसे ही गीत गाते रहिए हमें के देश प्रेम के जो जगते रहिए
3: बहुत बहुत धन्यवाद
2: बहुत धन्यवाद आशा जी हमेशा आवेला हमनी के कलाकार के उत्साह बढ़ा के चले चल जालो धन्यवाद आशा जी चला दूसरा लाइन पर हमनी देखें राजा के इंतजार करत हुआ हेलो हेलो हाँ जी नमस्ते जी नमस्ते नमस्ते कौन नाम है कौन नाम है इंदिरा जी तो हर रेडियो सेट ऑन बाई खातिर तुहर आवाज अच्छी तरह से नहीं सुनात बा हमनी श्रोतागण के से मांग करी ला जा कि जब तो लोग फोन करत हुआ जा हम जानी ला कि तो लोग अपन आवाज़ रेडियो पर सुने खोजत हुआ लेकिन का करब हमनी के अच्छा से नहीं आवेला फीडबैक है जा पर यही खातिर हमनी बोले जा रेडियो तनी ऑफ कर दिया अपन आवाज़ सुने जा इतना जुड़ी जुड़ी आवाज़ बा तुहर चलो मॉरिशस भर के सुना दहो बोला इंदिरा जी कौन जवाब देब लें जी सोमवार अच्छा हम तोहरा जनाब अभी सही जवाब है कि नहीं ओके अच्छा इंदिरा जी बहुत बहुत धन्यवाद तोहरा अरे चलो एगो दूसर एगो तीसर श्रोता के हमने स्वागत करी लचा हेलो
5: हेलो रुसन भाई नमस्ते
2: नमस्ते

0: तो विजय भाई है, जानी पहचानी आवाज, कैसे हो आप?
1: ठीक बा ना?
0: हाँ ठीक बाजी, और हमने के मेहमान के भी नमस्ते कर लो।
1: पामानंद भाई के बोल दो, बहुत ही बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्ते बहुत है।
2: नमस्ते भाई जी,
1: नमस्ते। हर जीवन में इसने हमने नवा नवा गीत दिले जाइए, जितना गीत बात हो हमने सुनी ला सर मिले ला रेडियो पर।
0: अच्छा,
1: बहुत धन्यवाद बहुत है। खुशी से हमने के आर नीमन निमन आर दिबा आर तोहर बेटा की बहुत है फेस्ताशो जुलील हम जी बने ले बटे।
2: बहुत बहुत धन्यवाद।
0: देखे ला कैसे उत्साह बढ़ावत हो जब हमने के श्रोतागण हो, जब इंग्लिश में बोले के हो तो हम तोरा बोल विजय सो काइंड ऑफ यू। बोलो भाई विजय, कौन जवाब दे बजा?
1: सोमवार रले जी,
0: सोमवार। ओके सोमवार, ओके। अरे धन्यवाद तोहरा,
1: धन्यवाद धन्यवाद।
0: ओके अंतिम श्रोता के लिए जा, काहे कि समय जाता अभी हमने के भाई जी के से बहुत बात करे के बाद चले गो अंतिम श्रोता के हमने स्वागत कर रहे थे। जा हेलो,
3: हेलो रोशन भाई, मैं बिना
0: तेगू से बिना बहन कैसे हुआ?
3: मैं परमानंद भाई जी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, और बेटा प्रभात को मैं उनसे परिचित हूँ, वो शायद भूल गए होंगे।
0: ओ परिचित हैं आप उनसे?
3: संस्था में मिले थे।
0: अच्छा।
3: और बेटा के बारे में भी जो वो कार्य कर रहा है संगीत को लेकर, तब वो तबला वादक था उस समय में, बहुत पहले की बात है, तो मैं बहुत प्रसन्न हो गई आज सुनकर उनकी उन्नति, और भगवान करे वैसे दिन दुनी रात चौगनी बेटा उन्नति करते रहे। और भैया का वो जो गाना उन्होंने गाया ना, सच में उसने उस गाने ने तो मेरा मन मोह लिया उसके।
0: क्या बात है दीदी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपके मुंह से तो फूलों के शब्दों के फूल झड़ रहे हैं।
3: जी जी, तो मैं बहुत बहुत उनको भैया जी को भी मैं शुभकामनाएं देती हूँ, और बेटा को आशीर्वाद देती हूँ कि और आगे बढ़े क्षेत्र में और उन्नति करे, भगवान उसको सफलता दे।
0: बहुत अच्छा।
3: तो हर से मैं देती हूँ, मैं भी थोड़ा कंफ्यूज हूँ, लेकिन मैं उत्तर देती हूँ कि वो शायद जो दिवस होगा ना वो सोमवार होगा, क्योंकि मैं भी गई थी उस दिन जिस दिन ये चौरंगा पहली बार के लिए पहराया गया था। अच्छा। लेकिन मैं छोटी थी बहुत तब उस वक्त।
0: अच्छा, तो थोड़ी देर में हम तोरा बोलब कौन जवाब है काटिया नहीं, अभी हमने के मेहमान तो से बात करी।
3: अच्छा,
2: बहुत बहुत धन्यवाद बहन जी, आप लोगों के तो लोग के आशीर्वाद से सब कार्य होता।
3: हाँ भैया जी, आपका तो चेहरा मेरे सामने है, क्योंकि हम एक ही गाड़ी में सफर गया थे हमारा।
2: अच्छा, अच्छा।
3: बहुत साल पहले जब अरुण जी राजेंद्र अरुण जी जीवित थे तो हम मिले थे।
2: हाँ,
3: लेकिन तब से हमारी मुलाकात नहीं हुई। अच्छा हुआ इस दौरान आपने काफी उन्नति प्रगति की है संगीत के क्षेत्र में, और खास कर प्रभात बेटा। हाँ। जब ने अपने प्रभात का नाम लिया ना, पहले तो मैं भूल गई थी, लेकिन जब आपने प्रभात का नाम लिया तो मैं एकदम से चौकन्ना हो गई, और बहुत बहुत ही प्रसन्न हो गई मैं।
2: हाँ, सही बात,
3: बहुत
2: सही
3: बहुत धन्यवाद।
0: हाँ। धन्यवाद दीदी जी, बहुत धन्यवाद।
3: ओके ओके ओके, धन्यवाद।
0: चला ई बिना जी रलन, तो चार श्रोता लोग जवाब दिलन। आशा जी बोलन मंगलवार, इंदिरा जी बोलन सोमवार, और सोमवार विजय भाई भी बोलन, और सोमवार बिना बहन भी बोलन। लेकिन जो सही सही जवाब है वह
2: मंगलवार,
0: मंगलवार। और ई सही जवाब है, खाली एक गो श्रोता है जवाब दिलन। तो चला हो श्रोता के लिए हम तालियों के गूंज से उकर अभिनंदन करत हैं। तो चला उकर, हाँ बहुत क्लोज रहल सब जो जवाब रहल, लेकिन मंगलवार के दिन रहल उ शुभ घड़ी, एगो मंगल घड़ी रहल उ, जब मॉरिशस के जो आज़ादी के दिन रहल, स्वतंत्रता मॉरिशस के प्राप्त हो दिन। तो परमानंद जी तू तो छुपा रस्तम निकल गया। इतना कोई मॉरिशस भर में तोहरा जाना था।
2: सिर्फ संगीत में नहीं, लेकिन जहाँ जहाँ मौका मिलल बा अपन अपन सहयोग दे के, अपन सहायता दे के, तो धार्मिक कार्य में दिले आल हैं जा।
0: बहुत अच्छा परमानंद जी, ऐसे ही करती रहिए। और बिना दीदी बोलन रामायण सेंटर में हो जो तोहर बहुत बड़ा योगदान बा।
2: हाँ हाँ, बहुत बड़ा योगदान।
0: और जब हम तोहरा बोली है गाना के बारे में, तब बोल म्यूजिक कंपोजिशन तोहर अपन सुपुत्र प्रभात जी, वो बहुत ही होनहार नौजवान हुअन, मॉरिशस में एगो कंपटीशन रहल सॉन्ग कंपटीशन, उनमें बहुत बढ़िया प्रदर्शन करे रहन, अपन बहुत सुंदर आवाज बा प्रभात जी के। एक दिन ओकर हम स्टूडियो में बुलाब ऐजा, और ओकर बारे में और बात करब सर, काहे कि गो सरप्राइज बा ओकरो अभी। तो चल ई रहल प्रभात जी के पिताजी परमानंद जी के बहुत सुंदर सा गाना, और देशभक्ति, तो अपन देश के खूबे खुशी हुआ।
2: चाहे लाना
0: चाहेला।

0: बिल्कुल तो चला ई हा कलाकार के बात और परमानंद जी के साथ एगो और गाना तो हरकतीरा में चला जा लेकिन ई गाना जो है सुपुत्र के आवाज में है एगो कहावत है जैसा बाप वैसा बेटा तो ई सिद्ध कर दिले होवन हमने के भाई परमानंद जी अभी तक तो लग सुन ला जा ऊ तबला खेलेलन ऊ ढोलक भी बजावेलन और गाना भी गावेलन और दूगो कला में निपुणता प्राप्त कर ले हुवन परमानंद जी ओकर बारे में हमने बात करब जा चला पहले हमने हई गाना सुनब जा जो प्रभात जी गेले हुवन एगो एल्बम निकले रलन कौन एल्बम के नाम है परमानंद जी
1: हे महादेव
0: हे महादेव बिल्कुल शिवरात्रि के अवसर पर हई गाना चलते रहेला बोला
1: जोन ई इनकर जोन लेखक बा हमके स्वर्गीय पंडित रजन अरुण जी लिखले होन
0: अच्छा
1: हाँ और उनकर कंपोज करले होन डॉक्टर मंगेश कुमार देमका जी
0: अच्छा
1: हाँ
0: संगीत में के संगीतज्ञ हो हाँ
1: और जो म्यूजिक डायरेक्शन वो इंडिया में अहमदाबाद में रिकॉर्ड होलबा
0: अच्छा
1: ये एगो जो हुआ म्यूजिक स्टूडियो में इकबाल अच्छा। मीर करके एगो
0: बहुत अच्छा तो चला बिना समय गवाए हमने हई गाना सुनब जा प्रभात जी के आवाज में हे महादेव एक उपरांत हमने बातचीत जारी रखब जा और हे महादेव में देखब सा कौन कहते प्रश्न तुम्हारे से पूछे के बाभी कौन प्रकार के प्रश्न ई बाद में देखब जा चला ई गाना के रसास्वादन कर और एकर बाद में फिर से हमने इसे आप जुड़िया जा अभी तक जुड़े हो बहुत बहुत ही धन्यवाद
2: You're listening to RM3 Radio Man

0: RM3 Radio.
1: कलाकार के बाद
2: कलाकार के बाद हमनी के भाई परमानंद जी के साथ है जा तो बहुत ही बढ़िया अभी एगो भक्ति गीत सुनना जा प्रभात जी के आवाज में हे महादेव चला हमनी के वो प्रश्न बा ई प्रश्न हम जरा गौर से सुनिया जा लेकिन एकर से पूर्व हमनी भाई परमानंद जी से बात करब जा ई गाना के बारे में और ई एल्बम के बारे में तन हमनी के ई जोन गाना है प्रभात जी के जोन परफॉर्मेंस है तोहर जोन योगदान है ई गाना में और ई एल्बम में तनी एकर पर चर्चा करे जा भाई
3: हाँ भाई जी एक है एल्बम हम ही प्रोड्यूस कर रहे हैं
2: तू ही प्रोड्यूसर हुआ
3: हाँ तो निवेदन कर रही हमने के स्वर्गीय पंडित जी से पंडित अरुण जी से कि हमने के चाहे ना लड़का तैयार कुछ करे के तो उनकर कृपा रहल उनकर आशीर्वाद से है मिलल आठ गो गाना तो लेके गईली प्रभात के अहमदाबाद
2: आठ गो गाना
3: हाँ
2: एगो एल्बम में आठ गो गाना एल्बम के नाम का है
3: हे महादेव
2: हाँ। और ये जो अभी गाना सुन रहे टाइटल सॉन्ग है
3: हाँ टाइटल
2: शीर्षक गाना
3: हाँ, हाँ,
2: बोला
3: हाँ। तब अहमदाबाद में जाके रिकॉर्डिंग हो हुआ परी
2: अहमदाबाद में भारत में
3: हाँ हाँ भारत में हाँ,
2: और जिन सब बोल है डॉक्टर राजेंद्र अरुण जी दिवंगत ओकर बोल है बहुत ही प्रभावशाली बोल बा
3: बहुत
2: ही ज्यादा हई सब बोल सुनबा त सचमुच तोहर मन में भक्ति के जो भावना बा जाग जाला और प्रभात जी के जो आवाज है बहुत मंजी हुई आवाज बा बहुत साधना करे के परेला हई ऐसा आवाज पाए के खाली के अगर सुंदर आवाज तोहरा आपको ईश्वर प्रदान करेला ये तो बहुत अच्छा बात बा परंतु ये आवाज़ के कैसे काम करे के कर पीछे कितना मेहनत बा ताकि हर तुहरा आवाज़ ई गाना पर जजी ई पर उतरी एगो दूसर लेवल है
3: हाँ।
2: साधना ढेर मेहनत ढेर चला करे के
3: हाँ उनकर भाग बा प्रभात की कि बहुत गुरुजन उनकर उनका आशीर्वाद देख दिले हवन जा
2: अच्छा।
3: उनकर में एक बार डॉक्टर देमका मंगेश कुमार देमका जी हवन और बड़ोडा से हुआ गुरु जी आवत रहल मोरिशस उनका रा
2: अच्छा बहुत तो बढ़िया
3: उनके छुट्टी के जब रहतल स्कूल के तो लोग आवत रहन जा इनका रा
2: ता जब ऐसे बात कर रहे थे हम के पता चला था कि भारत में भी तुहरा कितना संगीतज्ञ से संपर्क बा ना
3: हाँ बहुत दोस्त बा
2: सकब तोहरा बोले कि भारत तोहर दूसरा मकान घर है
3: सही बात
2: अच्छा
3: सही बात
2: हम नहीं तो हम सोचती कि अब छोटी मुंह बड़ी बात हो गई
3: नहीं सही बात बा हम हुआ नहीं जाइला तो वहां से टिकट चला वेला
2: अच्छा क्या बात बा बहुत बढ़िया परमानंद जी ऐसे ही लगे रहिए अपन क्षेत्र में और आगे बढ़ते रहिए तो चल अभी प्रभात जी के मधुर आवाज में ही गाना सुन ला हे महादेव चला एगो बहुत ही आसान सा प्रश्न बा और जरा गौर से सुना महादेव जी यानी शिव जी यानी शंकर शंभु रुद्र देवता मंगल महादेव महेश भगवान तो चला ओकर गला में कुछ लिपटल बा ओकर गला में कोची हो हम ही बता देला एगो सांप जो न सर्प महादेव के गला में लिपट के रहेला बताओ हमनी के उस सांप के नाम का है 4028070 पर अपन जवाब द दिमाग के घोड़े के लड़ावा तनी और हमनी के बताओ कि जो न सर्प है जो न शिव जी के गला में पावल जाला उकर असलियत में नाम का है तो चल भाई परमानंद जी इतना श्रोता लोग भाग ले हुआ था जा लोग के मौका दे दे ला जा
3: जरूर
2: अच्छा चला सुनी ला जा पहला श्रोता के और जवाब मांगी ला जा पहला श्रोता से हेलो
4: भाई रोशन नमस्ते
2: नमस्ते ही तो उदय भाई होवन
4: भाई परमानंद को भी नमस्ते
3: नमस्ते भाई जी
4: अच्छा अच्छा बोला था अच्छा नाम बोली
2: परमानंद जी हाँ
4: हमारे घर के बगल वो देखो काम होता तापाल का था शोरबा
2: अच्छा अच्छा
4: वही पूरा तरह निमन से नहीं सुना था
2: हाँ अच्छा अब सुना थोड़ा अच्छा से
4: अभी कमवार आ रही थी गलता हुई
2: हाँ तब बोला परमानंद जी के गाना सुन लो प्रभात जी के गाना सुन लो
4: जन शंकर शंभू के जन गीतवा चलल ई त बुझा था भारत के कोनो
2: कलाकार हो आज जो तो हमर मुंह के बाद
4: उठगल
2: हां तो हर रोंगटे उठ गए
4: गाना सुनब शिवरात्रि के दिन तब जस्ती दिल छू देने वाला बात है
2: हां बहुत अच्छा मुंबई को भारतीय कलाकार हो हां हां बहुत अच्छा तू तो हमर मुंह के बाद छू
4: ले ये पेई में चीज बा
2: बात इस का बोले
4: छुपा किसी बोल रहा
2: हां
4: जो काशी तालों काशी
2: हां छुपा रस्तम वो खुला रस्तम हो
4: लेकिन मुलाकात हुई भाई
2: बहुत बढ़िया तो हमने के बतावा तो हर जवाब का है उदय भाई
4: वासुकी
2: अच्छा देख अब सा तो हर जवाब नोट कर ले ला सा कंप्यूटर महाशय प्लीज लॉक द आंसर देखते हैं कि तो हर जवाब सही हो या नहीं ओके भाई उदय जी बहुत बहुत धन्यवाद ऐसा रुचि बढ़ाई खातिर चलो दूसरा श्रोता से हमने बात करी ला जा हेलो हेलो
5: नमस्ते रोशन जी
2: नमस्ते शोभा जी कैसे हो
5: हम ठीक है और तू कैसे हो
2: हम भी ठीक है शोभा जी वाकवा से बात करत हुआ ना
5: हाँ और मेहमान जी को भी नमस्ते
3: नमस्ते
2: हाँ शोभा जी बोला कैसे हाल चाल आजकल
5: आजकल तो अभी तो ठीक से चल रहा था
2: अच्छा तो आज प्रोग्राम कैसे लगा था तुम्हारा
5: प्रोग्राम तो एकदम बढ़िया
2: और गाना सुन ला भी हे महादेव
5: हाँ पहला वाला गीत सुनी है
2: पहला वाला सुन ला
5: हाँ बहुत सुंदर गीत
2: बहुत सुंदर और आवाज का बुढ़े ला
5: आवाज एकदम झकास
2: झकास बिल्कुल तो है महफिल के कर द खास अपन सही जवाब देकर बोला
5: हाँ हमारा जवाब है वासुकी
2: वासुकी चलो तुम्हारे जवाब के हमने नोट करत है सर देख अब सकी तुहर जवाब सही है कि नहीं ओके
5: ओके धन्यवाद
2: चलो एगो अंतिम श्रोता के हमने ले ले ला जा देख अब सकी सही जवाब बोलो के बा कि नहीं एगो अंतिम श्रोता के चलो हेलो हेलो
6: हेलो
2: हेलो हाँ जी नमस्ते
6: नमस्ते भाई जी
2: नमस्ते बहन जी मोसरमा से बोला थोड़ा संगीता बिसुन तुहर स्वागत बा
6: जन प्रश्न पुतला का उत्तर है वासुकी
2: वासुकी अच्छा हमने के मेहमान के नमस्ते नहीं कर बा
6: भाई सिपोल जी को बहुत धन्यवाद सुंदर वाने के लिए और आपको भी
2: धन्यवाद अच्छा संगीता जी बहुत धन्यवाद तो चलो वासुकी सही जवाब परमानंद जी एकदम परमानंद जी बोला थोन दिस इज द राइट आंसर तो चलो वासुकी
6: हाँ
2: धन्यवाद
6: शिव जी के बड़ी जुली पूजा गीत गैलन
2: हाँ वो कर बेटा गैलन
6: उनका बेटा ना
2: हाँ प्रभात जी गैलन ओके धन्यवाद संगीता जी
6: धन्यवाद
2: ओके
6: हर महादेव
2: हर हर महादेव तो चलो उदय भाई के लिए और
6: उदय भाई परमानंद जी के लिए
2: परमानंद जी के ओके धन्यवाद आपको
6: धन्यवाद बधाई

0: बधाई बोला था ओके तो चला शोभा जी उदय भाई और संगीता जी के लिए जोरदार तालियां ई रहल हमनी के श्रोतागण जो ई प्रोग्राम के बेचैनी से इंतजार करे लंजा और हमेशा लोग के मन में रहेला कि हर सप्ताह को ऐसा कलाकार आए जो हनी के मन मोहले तो बिल्कुल हम सकप बोले तोहरा 100% यानी 100% की आज हमनी के भाई परमानंद सिपोल जी ओकर बातचीत से गाना से प्रभात जी के गाना से अपन सभी जो श्रोतागण हुआ जो कर मन मोह ले ले हुआ तो चल भाई परमानंद जी हमने के एगो प्रश्न रहल तो ऐसे पूछे के अभी हमने गायन के क्षेत्र में गायकी और तबला वादक भी हुआ ढोलक भी खेलेला और एक पुराण हम सुनने हैं कि तू नाट्य कला भी में माहिर हुआ ड्रामा करेला नाटक करेला
1: हाँ जी हाँ हाँ
0: बोला
1: जब जब मौका मिलेला था अभी जन पछिला कर ली जा रामलीला
0: रामलीला
1: हाँ रामलीला उनकर मैं भाग ले ली और बहुत जगह मैं अपनी दिल्ली जा प्रस्तुति कर ली जा एकर से आगे रहल फुल लेंथ प्ले सावधान
0: सावधान एगो फुल लेंथ प्ले हो देखा था एगो हमके एगो पुस्तक दिले हुआ इमेल लिखा बा सावधान रिटन एंड डायरेक्टेड बाय राजेंद्र प्रसाद सदा सिंह और नॉर्दर्न आर्टिस्ट एसोसिएशन नॉर्दर्न आर्टिस्ट एसोसिएशन ई का है
1: ई ट्रियोले से एगो संस्था हम जेकर फाउंडर मेंबर हम
0: तू ही हो वजह अरे वाह
1: पॉमी है
0: अच्छा
1: और अभी उनकर प्रधान दूसरा भाई लेके चला था कैलाश विदा जी
0: अच्छा
1: और वैसे हमने 40 साल से एगो हमने के एगो संस्था रहल जागृति सरस्वती संघ ओकर में सिर्फ भजन गावत थे लीजा
0: अच्छा
1: हाँ तो उनका हम रली हमार दोस्त जिगरी दोस्त डॉक्टर मंगेश कुमार देमका और प्रीति विराज महाजी रलन
0: अच्छा।
1: हमने साथ मिलकर सब कथा सत्संग में जाके करते लीजा तो उनकर बाद में तनी बढ़ल और आर्टिस्ट लोग साथ आल तब उनका नाम होल नॉर्दर्न आर्टिस्ट एसोसिएशन
0: बहुत अच्छा
1: इनकर से प्रोमोट करते हैं जितना जो आर्टिस्टिक चीज बा जो कला कारी बा
0: अच्छा हम क्षमा चाहते हैं तुहरा तन इंटरप्ट करते हैं तो नॉर्दर्न आर्टिस्ट्स एक मतलब खाली त्रियोले के आर्टिस्ट नहीं
1: नहीं
0: जो उत्तरी क्षेत्र में जो सब कलाकार हुआ जा और लोग के सम्मिलित करके गो संस्था बने ले हुआ बहुत अच्छा बहुत अच्छा तो एक गो पुस्तक में देख ली सावधान ई में तू परफॉर्म कर ले हुआ जा काम कर ले हुआ जा कौन किरदार निभाला
1: हाँ एकर में छोटा छोटा हर छोटा छोटा एकर में रहल जो ड्रामावा में हर एगो कैसे बोले सिचुएशन
0: सिचुएशन
1: ड्रग्स पर रहल
0: अच्छा
1: और फ्लड्स पर रहल जो ऐसे ऐसे बहुत विषय रहल यहीं पर तो सब में थोड़ा छोटा छोटा रोल रहल और जो हाउ जो गानावा गैली अभी सुन लो हो आज़ादी पर तो वो शुरुआत नाटक के ऐसे हो रहा देश की आजादी हो तब देश में का का कुछ कुछ हुआ था हाउ सब
0: बहुत अच्छा
1: सावधान में
0: बहुत अच्छा और ये पहला है एगो और फुल लेंथ प्ले बा और उसका नाम है झनक पटक
1: ये सब ये एकर से पहले वाला है झनक पटक तनी कॉमेडी वाला रहा
0: ये हाँ उसका नमवे सुन के हमें पूछा था एगो हास्य ड्रामा है एक हास्य नाटक है ये मैं कौन किरदार निभाए हुआ
1: एकरो में तरह तरह के जैसे जैसे अथी होल बा चाहेला औसे
0: औसन औसन तो लोग एडजस्ट कर ले जा हां दले जा
1: कॉमेडी एकर में लोगों के हंसाई करनी है जैसे घर में होवेला झनक पटक तो उसने होवे चीज रहल
0: और हास्य भूमिका निभाए के कठिन लोग व्यक्ति लोग के होंठ पर एगो मुस्कुराहट लाने की बहुत ही कठिन बात है थोड़ा छनापन के वो किरदार में उतार ले के कैरेक्टर में जैसे बोले जा कैरेक्टर में घुस जाए के और नटराज आर्ट्स ग्रुप की ओर से और एक पुस्तक हम देखा था श्री राजेंद्र प्रसाद सदा सिंह जी लिख रहे हुआ और निर्देशन भी वही कर रहे हुआ और यह रामलीला एकर में कौन किरदार निभाले हुआ
1: इनकरो में परल बाग क्योंकि बहुत एकदम ढेर कोई के नहीं सकबन नाटक में डाले नहीं तो
0: अच्छा।
1: जाए के एक जगह से दूसरी जगह तनी मुश्किल होला। ऐसे ये खातिन चाहेला जो छोटा छोटा बहुत

0: श्री ओकर में किरदार निभाई के
1: हाँ
0: हाँ त जैसे मंत्री के रोल बा सिपाही के रोल बा
1: हाँ
0: ऐसन ऐसन दू तीन चार पांच गो हमार किरदारी बा
1: एक ओके जब हम पृष्ठ उलाटत हैं है ये रामलीला के जो पुस्तक है हमार नजर एगो बहुत अच्छा बात पर परल बा एगो जैसे बोली ला जाए एगो मुद्दा पर कि तोहरा अवार्ड मिलल बा प्रेसिडेंट बच ऑफ होनर्स एक बारे में सकब थोड़ा चर्चा करें कौन अवार्ड है कौन सम्मान तोहरा प्राप्त होल बा बोला था
0: हाँ ये है मिलल बा जो सोशल वर्क है जो धार्मिक कार्य में हम भाग ले ला वैसे कहूँ के कॉन्ट्रैक्टर हैं जा अभी अच्छा। तो बेटा काम ले बा बुष्पावी लिमिटेड कंपनी जो
1: अच्छा।
0: नाम है तो हमनी के जेसीबी है सब है तो है माध्यम से हम बहुत मंदिर ये सब बने में हम सहायता कर रहे हैं
1: अच्छा बहुत नेक कार्य कर रहे
0: एगो तो ही बा एगो भजन के माध्यम से और कंस्ट्रक्शन जो होल बा मंदिर सब के वो चाहे कोविल रहे मंदिरम रहे कोई जो सहायता मांगले बा तो पूरा कोशिश कर रहे जा सहायता दे के
1: योगदान बहुत
0: योगदान बा तो है सोच के मिलल रहा
1: अच्छा बहुत अच्छा ये तो बहुत ही जैसे बोली ला जा डिजर्व्ड हुआ
0: धन्यवाद
1: योग्य हुआ ये सम्मान पाए खातिर काहे कि इतना निस्वार्थ भाव से सेवा करेला योगदान देवेला ऐसा धार्मिक स्थल के निर्माण करे में तो बहुत ही अच्छा
0: और जैसे रामायण संत है
1: हाँ।
0: उनकर पहला जो काम है जितना हुआ पर बिल्डिंग बा जितना बा
1: बहुत अच्छा
0: और का मंदिर बा उनमें पहला हाथ हमरे हम ही शुरू कर लें
1: और सुनने में आ रहा कि तू फिल्म में भी भाग ले हो जा तनी फिल्म में भी तू भूमिका नहीं भले हो जा
0: हाँ हाँ हाँ छोटा छोटा जो है जो लोकल फिल्म बा जैसे अथी के बा वरुण ननकू के द लॉस्ट नोट गिर मिटिया
1: अच्छा
0: ये सब में भाग ले और जो सत्यन बंजन के जो बा द लॉन्ग जर्नी होम जे के पुरस्कार सब अभी मिलल है इंटरनेशनली तो इंडिया में तो उस सब में भाग मिलल बा मौका मिलल बा भाग ले के उसमें तो खुशी के बात है जहाँ जहाँ देखिला सहयोग सकब दे तो अपन सहयोग दे दिला जा
1: बहुत बढ़िया तो है जब हमने मूवी के बात कर ली सर तो एगो और एगो बात हमारे मन में होता कि तू खाली जो भोजपुरी गाना है उन्हें गावेला फिल्मी गाना भी गावेल
0: कभी कभी दोस्तों के साथ या परिवार लोग जब बोले लंजा कुछ सुना दा
1: तो ज्यादातर हम जब सुने हैं तोहरा मुकेश दा के गाना गावेल
0: सही बात
1: तो चले एगो मुकेश दा को गाना एगो टुकड़ा हो जाए
0: अच्छा पहला तो एगो भावगीत इला
1: अच्छा

0: चलूं।
1: क्या बात बा, बहुत ही सुंदर आवाज बा तोहरो भाई पर परमानंद जी बहुत अच्छा। और 5:51 हो गए बाटे, हमने एगो प्रश्न पूछे के रह लीजा है गाना पर, लेकिन इतना समय नहीं मिली, कहे कि और प्रश्न बा परमानंद जी से पूछे के अभी, लेकिन बात भी करे के और कितना कम समय रह गए बा। और ठीक 6 बजे आप लोग समाचार सुन बजा, तो हमने के बताओ जल्दी जल्दी कि तोहरा जब हमने सुनी ला जा देखी ला जा त्रिवेणी में, तो एगो ग्रुप में हुआ जा ताइक्वांडो करे ला जा, ताइक्वांडो हाँ, ये भी प्रैक्टिस करेला।
2: हाँ हाँ सही हाँ, बात।
1: ताइक्वांडो कहाँ है वो?
2: एको मार्शल आर्ट हाँ,
1: मार्शल आर्ट जैसे कराते
2: हैं। हाँ सेल्फ डिफेंस। तो हम खास में अपन बेटा के लेके गईली एको क्लब में ओके सिखाई का दिन, तो हुआ पर ही जो कोच वाल हमके बोलक तू सक करे ला हमर थौचिता ऐसे उम्र उम्र।
1: अच्छा
2: तो शुरू कर ली, तो वहाँ से शुरू करके 15 साल तक प्रैक्टिस कर ली ब्लैक बेल्ट।
1: 15 साल तक ब्लैक बेल्ट भी थोड़ा प्राप्त हो गया।
2: हाँ
1: हाँ अरे वाह,
2: फर्स्ट दान भी मिलल। तो ये सब थोड़ा थोड़ा जोन चीज मिलेला करे के करीला, ताकि लड़का जोन बाना उ तोहरा देख के सीखी
1: सीखे। हाँ, हाँ
2: एगो माध्यम है, जैसे संगीत हम में रली हम, तो हम लड़का के अपन धर्म और संस्कृति कैसे सिखाओ, तो हम संगीत के माध्यम ले ली।
1: अच्छा हम बहुत अच्छा।
2: हाँ तो हई माध्यम से लेके भजन करत हुआ सत्संग में जात हुआ, तो लड़का वो परफॉर्म करता और सुनत बा सत्संग में भाग ले हुआ।
1: बहुत अच्छा। जैसे कि हमने के गुरुजन बोले लंजा कॉलेज जेब नहीं तो स्कूल जेब पाठशाला भी गुरुकुल भी जेब, तो बोले लंजा कि पढ़ाई के साथ साथ संगीत और खेलकूद स्पोर्ट्स
2: हाँ, हाँ।
1: बहुत ही योगदान बाएगो बच्चा के जो विकास मानसिक और शारीरिक विकास अगर हो, तो ये 3 गो चीज अत्यंत अनिवार्य है, पढ़ाई संगीत और खेलकूद।
2: हाँ, सही बात।
1: बहुत अच्छा। तो हमने के बताओ भाई परमानंद जी के हमने के जो सुंदर से गुण स्वर्ग जैसा देश मॉरिशस में भोजपुरी के ओकर भविष्य ओकर फ्यूचर के बारे में तुहरा कुछ बोले के बा?
2: हाँ जरूर
1: बोला।
2: उतना अच्छा नहीं बा, लेकिन हमने के चाहना कोशिश करते रहे के खासकर जो बुजुर्ग लोग मन जा परिवार लोग मन जा चाहेला लड़का लोग के समझाई के कि है जड़ हमनी के, जब जड़ नहीं रही तो हमनी गुम हो जाब जा गिर जाब जा। तो है खातिन चाहेला कोशिश करके कोनो माध्यम निकाले के, संगीत के माध्यम या कोनो नाटक के माध्यम है जो कोशिश बा हमनी के हवे करते हैं जा, ताकि बढ़ी मर नहीं जाई है हमने के जो पूर्वज लोग लेके आल हो अंजा।
1: बहुत अच्छा, बहुत अच्छा भाई परमानंद जी। और अंत में गो अंतिम प्रश्न जो हम सब कलाकार से पूछल करीला हर सप्ताह, हमने के बतावा कि तोहर जो एगो छोटा सुन प्रभावशाली संदेश बा हमने के मॉरिशस वासी के लिए चा और खासकर यंग जनरेशन के लिए नई पीढ़ी के लिए कोची बा, कुछ बोले खोजत हुआ वो लोग से आज, ताकि वो लोग के जो रास्ता बा अच्छा सन रास्ता अपना यन जापन जीवन में बोला।
2: अच्छा पहला संगीत के बारे में बोलब जो अभी देखी लजा कराओके के बहुत बोल बाला बा, तो कराओके गाई बेजी देखा कोई अपन टैबलेट या रख दिले हों जा आगे और गावत हो जा, और चेहरा पर एक्सप्रेशन नहीं बा, हमनी गाय ला जा परफॉर्म करी ला पब्लिक खातिन, तो पब्लिक एंटरटेन नहीं हुई, तो तू खड़ा हो ऐसे एगो इस्ताची कहते नहीं करत हुआ। तो हमार हम अपन अनुभव बोलीला, हम पूरा कोशिश करीला कि जब गावत गावत हैं तो हमार बॉडी लैंग्वेज और जोन चीज बोलत हैं हम मीन करत हैं, यानी कि
1: जो गाना है ओकर ओके तुम्हारा पूरी तरह से जियत हुआ।
2: हाँ हाँ जैसे
1: हर एगो शब्द में एगो एक्शन।
2: हाँ हम हमर से बहुत फरमाइश करे लंजा एगो एगो गाना गाय के, क्योंकि ओकर में हम थोड़ा डांस भी कर लेला तो लोग के अच्छा लगेला।
1: अच्छा।
2: जैसे जैसे गाना हुआ

0: मकसूद
1: बिल्कुल हाँ, बहुत
0: जाना
1: अच्छा।
0: समय कम बा लेकिन हाँ। जो प्रश्न पर आवत हैं जहाँ जो हाँ। बोला हम निवेदन बा हम के जो माता पिता हम जा बुजुर्ग लोग हम जा हम जैसे बोल ली कि वो लोग के चाहेला बहुत छोटा जब लड़का लोग बहुत छोटा बा तो ओके तू सही मार्ग पर लाने खाए खातिन अपन धर्म संस्कृति पकड़े खातिन और अच्छा चीज सीखे खातिन तोहरा चाहेला छोटा ही से हो सब जिन अपना धर्म संस्कृति सिखाई की और ऐसे नहीं करे कि लड़का जाता कुछ सीखे थे तू तोहरा जाना साथ जाए के साथ ओकर संग बैठे के और जितना तोहर जोन चीज करब ऐसा करे के क्योंकि लड़का जोन है वो तोहर आक्षियों से बोली ला जा वो तोह सीखेला जैसन बोली बा ऊ सीखी जैसन कर्म बा हवे सीखी तो जी सिर्फ बहुत पैसा कमाने से बहुत बड़ा बड़ा अहदा पर जाने से नहीं हुई ऊ सकी आगे बढ़ के गलत रास्ता भी पकड़ ली तो है खातिन साथ साथ जो वैल्यूज बोली लिया जा हाउ सब चीज चाहना सिखाए की नहीं तो बहुत देर हो जाए पैसा रही सब चीज रही शांति नहीं बा समझना
1: बहुत बढ़िया बात बोल रहा तो चल श्रोतागण ई रहल हमनी के भाई परमानंद जी। परमानंद जी बहुत बहुत धन्यवाद हमनी के समय के अभाव के कारण तोहर से और बातचीत नहीं सकब जारी रखे फिर भी अपन समय निकाल के हमनी के स्टूडियो में आयला रेडियो मनोरंजन के जो शान होके बढ़ेला शोभा बढ़ेला है प्रोग्राम के बहुत ही धन्यवाद ईश्वर हमेशा तोहर रक्षा करी।

और जोन क्षेत्र में बा तू आगे बढ़ते जाइए और जोन तोहर अच्छा अच्छा सपना बा वो दिल से हम प्रार्थना करते हैं कि वो पूरा होए और ख़ासकर जब बहुत सामाजिक कार्य करेला और तोहर

0: रूटीन में आप सभी का स्वागत करते हैं और अब समाचार विस्तार से। एक टिकाऊ कृषि और कृषि डायवर्सिफिकेशन के लिए खाद्य सुरक्षा की राष्ट्रीय स्ट्रैटेजी के संदर्भ में कृषि उद्योग मंत्री डॉक्टर अरविंद दुलेर और जूनियर मंत्री फैब्रिस दाविद ने कल रॉसवेल शुगर स्टेट का द्वारा संचालित कृषि जमीनों का दौरा किया। यहां पर जमीन तैयार की जा रही है जहां पर मुख्य रूप से सब्जी पैदावार की जाएगी। 300 बीघा कृषि जमीन में से 150 खेतिहरों के लिए निर्धारित, साथ ही अन्य जमीनों पर ईख के गन्ने उगाए जाएंगे। लोगों से वापस जमीन की ओर जाने के अलावा उत्पादन से फसल तक सभी चरणों में मशीनीकरण पर जोर दिया जा रहा है ताकि श्रम शक्ति खर्च कम किया जा सके। सिंचामुतु करुणा लालू।
1: खाद्य आत्मनिर्भरता हासिल करने के मकसद से रॉसवेल शुगर स्टेट ने अपनी कृषि भूमि, खासकर किसानों द्वारा छोड़ी गई जमीनों के बेहतर उपयोग की दिशा में कदम बढ़ाया है। लगभग 300 बीघा जमीन की पहचान की गई है, जिनमें से करीब 150 बीघा किसानों को सौंपे जाएंगे। बाकी में मुख्य रूप से आलू की खेती की जाएगी। 118 किसानों को जमीन प्राप्त हो चुकी है। मंत्री अरविंद बुले ने कहा, खाद्य आत्मनिर्भरता की बात करेंगे तो जमीन उपलब्ध होनी चाहिए, उसे तैयार करना चाहिए। खेतिहरों को कृषि जमीन दी जा रही है। इस पहल में मशीनीकरण की अहम भूमिका है, जमीन तैयार करने से लेकर फसल तक के लिए। डॉक्टर अरविंद बुलेल कहते हैं, एक मशीन उसकी टेक्नोलॉजी जीपीएस के साथ ली जा रही है, जो दिन में 4 हेक्टेयर तैयार करेगी। इसके लिए संभवतः 75 लोगों की आवश्यकता होती। जूनियर मंत्री फैब्रिस दाविद ने कहा, एक लैंड बैंक कायम किया गया है। वैज्ञानिक अध्ययन की बदौलत एक लैंड स्विटेबिलिटी इंडेक्स भी तैयार किया गया है। ये जान सकेंगे कि कौन सी जमीन पर कौन सी खेती बेहतर होगी। किसानों की ओर से कुछ लोगों द्वारा खेती छोड़ने के बावजूद कई अभी इस क्षेत्र से जुड़े हैं। सूरज सुभन की तरह, जो 38 सालों से खेती करते हैं, कुल 50 बीघा पर खेती करते हैं, जिनमें से 25 बीघा रॉसवेल में स्थित हैं। बाजार जाने वाले लोगों के बस्ते में टमाटर, आलू, प्याज होने चाहिए। हमारी मांग अधिक जमीन की है ताकि रोपाई कर
2: सकें।
1: चेतन ने कहा, पढ़ाई करने के बावजूद मेरे पिताजी ने मुझे खेती बाड़ी करने की सलाह दी। आज खेती करता हूँ। आशा है सरकार हमें जमीन, ग्रांट और मशीन प्रदान करती रहे। कृषि भूमि के उपयोग के अलावा रॉसवेल शुगर स्टेट पिछले कई वर्षों से ऑर्किड की खेती में संलग्न है।
0: कृषि उद्योग खाद्य पदार्थ के क्षेत्र में ही रहते हैं। ईद उल अधा के लिए अंतर मंत्री समिति के नतीजे पर तय पहुंचे हैं। मांस का दाम किलो पीछे 186 रुपए तक तय किया गया है। आयातकों के मांगों के बावजूद प्रति किलो 220 रुपए की मांग कर रहे थे। मंत्री शकील मोहम्मद ने कहा कि तय दाम लोगों की खरीद शक्ति को बरकरार रखने के लिए है। ये कीमत तेवर के 10 दिन बाद तक बरकरार रहेगी। अधिकारियों ने सख्त काबू रखने का वादा किया है। किसी भी तरह की ज्यादती न हो, ये भी ऐलान किया गया है कि मवेशियों के आयात के मोनोपोल को खत्म करने के कदम उठाए जाएंगे। मंत्री शाकिल मोहम्मद को सुनते हैं।
3: Le prix a été fixé par le gouvernement. Le prix initial qui était demandé par l'importateur, c'était de 220 roupies par kilo. Le gouvernement fin fait ce comité interministériel. Le gouvernement répète lui fin considère tout le prix.
1: सरकार द्वारा दाम निर्धारित किए जा चुके हैं। शुरू में 220 रुपए प्रति किलो की मांग की गई थी। सरकार की अंतरमंत्री बैठक लगाई गई और उसके द्वारा सभी दामों को देखा गया, सभी लागत को भी, और तब ये फैसला लिया गया कि इसे 186 रुपए प्रति किलो होने चाहिए। भावी ईद उल अधा के लिए हमने एक उचित तरीका अपनाया है। हम सोचते हैं कि हद से ज़्यादा लाभ कमाने की ज़रूरत नहीं। सभी लागत को हमने देखा है, पहले ऐसा कभी नहीं किया गया, और तब हमने मैक्सिमम मार्कअप निर्धारित किया। चाहे लोग नाखुश होते हैं, लेकिन सरकार अपनी स्थिति पर बनी रहेगी, राय नहीं बदली जाएगी। कुछ लोग कहेंगे कि मुनाफा काफ़ी नहीं, कई बहाने होंगे। ये उनकी राय होगी, वे स्वतंत्र होंगे, लेकिन

0: कानून का पालन होना चाहिए। यदि ऐसा नहीं किया गया तो अगली बार परमिट जारी करते वक्त इसे ध्यान में रखा जाएगा। मत भूलना चाहिए कि सरकार का मकसद सब प्रकार की अति को रोकना है, चाहे ग्राहकों को लेकर हो या फिर आयातकों को लेकर।
1: Parce que nous n'oublions pas que l'objectif principal du gouvernement, c'est de ne pas autoriser toutes sortes d'abus, que ce soit vers le consommateur, que ce soit vers l'importateur. On a choisi un middle ground.
2: निवारण करुणा लालू का रहा। अगले समाचारों को बढ़ाते हैं, अब स्वास्थ्य की बात करते हैं। कौंदस स्थित विक्टोरिया अस्पताल में कैंसर के इलाज कर रहे मरीजों के लिए यह खबर। बता दें कि अभी के लिए रेडियोथेरेपी विभाग बंद है। रेडिएशन सेफ्टी एंड न्यूक्लियर ऑथोरिटी की ओर से इस सिलसिले में एक प्रोहिबिशन ऑर्डर जारी किया गया और तुरंत के लिए इसे बंद कर दिया गया। जाँच रिपोर्ट में इस बात का उल्लेख है कि रेडियो एक्टिव संबंधी इलाज से जुड़ी अपर्याप्त सुरक्षा कदमों के चलते लोगों और पर्यावरण को काफी खतरे हो सकते हैं। जिन मरीजों को कैंसर के लिए इलाज की जरूरत है उन्हें अब से सल्फेरिनो का नेशनल कैंसर सेंटर की ओर भेजा जाएगा। कुणाल गोजी, करुणा लालू।
0: रेडियोथेरेपी का उपयोग कैंसर के उपचार में व्यापक रूप से किया जाता है। इसमें एक्सरे, गामा किरणों और अन्य कणों का इस्तेमाल कर ट्यूमर कोशिकाओं को नष्ट किया जाता है। ये उपचार पद्धति अक्सर सर्जरी या कीमोथेरेपी के साथ मिलाकर दी जाती है। विक्टोरिया अस्पताल के रेडियोथेरेपी विभाग के बंद होने के बाद नेशनल कैंसर सेंटर की विभिन्न इकाइयों ने उपचार सुचारू रूप से जारी रखने के लिए विशेष व्यवस्था लागू की है। डॉक्टर एस प्रसाद चुरमुनी ने कहा, फ्लेक्सी टाइम पर काम किया जिस पर स्वीकृति मिल चुकी है, यानी कि एक रेडिएशन टेक्नोलॉजिस्ट और एक मेडिकल फिजिसिस्ट सुबह 7 से रात 7 बजे तक काम करेंगे, यानी सभी मरीजों को अपना इलाज प्राप्त होगा। चिकित्सकों के अनुसार स्टाफ और मरीजों की सुरक्षा सुनिश्चित की गई है। संजय बिहारी ने कहा, जब एक्सरे किया जाता है, इलाज किया जाता है तो स्कैटर्ड रेज निकलती हैं जिन्हें डिटेक्ट कर रखा जाता है। हर 3 महीने इसे फिजिसिस्ट को भेजा जाता है, वे देखते हैं कि कितना डोज दिया गया है, इसमें सीमा है, हमेशा ये नीचे रहता है। दो बंद दरवाजे, 60 से 45 सेंटीमीटर मोटी मजबूत कंक्रीट की दीवारें, बेसमेंट जहां रेडियोएक्टिव चीज़ों का इस्तेमाल करके इलाज किया जाता है, जिस पर कड़ा नियंत्रण रहता है।
3: मशीन लैम इनाम केसिंग लेड लैडम एंड लेड केसिंग कुट लाजासों।
0: वरिष्ठ मेडिकल फिजिसिस्ट मौशी जगन्नाथ बोरामबोली ने कहा, इसमें लेड केसिंग है जिससे इस मशीन के चारों ओर रेडिएशन बहुत कम है। सुरक्षा के कई चरण हैं। नेशनल कैंसर सेंटर में लगभग 40 कर्मचारी कार्यरत हैं और यहां प्रतिदिन औसत 70 मरीजों का उपचार किया जाता है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार इस वर्ष जनवरी से अब तक कैंसर के लगभग 3,000 नए मरीज पंजीकृत किए गए हैं, जबकि पिछले वर्ष ये संख्या पूरे साल लगभग 2,400 थी।
2: सुर्खियों में हम इसका उल्लेख कर रहे थे, कुछ पदार्थों के दामों में बदलाव बरकरार है, चाहे सब्सिडी भी प्राप्त हो रही हो तब भी। इन बदलावों के पीछे कई मुद्दे जुड़े हुए हैं, विनिमय दर से लेकर फ्रेट का दाम, स्टॉक की उपलब्धता आदि। व्यवसाय मंत्रालय की तरफ से इन सब का हिसाब किया जाता है। यासिन दैन महमूद की रिपोर्ट पर विवरण पूजा सुकालू।
4: 65.70 रुपये ये लक्की स्टॉक के हरे डिब्बे की कीमत है जो मंत्रालय द्वारा तय की गई है। अप्रैल महीने में ये 64.20 रुपये में बिक रहा था। कई अन्य सब्सिडी वाले उत्पादों की तरह कीमतों में बदलाव दिख रहा है। आज 1 लीटर का रीना तेल 63.92 रुपये में बिक रहा है, जबकि फरवरी में इसकी कीमत 69.70 रुपये थी। यही स्थिति 1 किलो वाला फार्मलैंड पैकेट दूध का है। मार्च में इसकी कीमत 269.29 रुपये थी, जबकि आज ये 252.56 रुपये में बिक रहा है। एक्सचेंज रेट के अलावा अन्य पहलुओं को ध्यान में रखा जा रहा है। वर्तमान में लागू नियम के तहत हर खेप की अलग कीमत हो सकती है। अधिकतम बिक्री कीमतें निर्धारित करने का काम व्यापार मंत्रालय की प्राइस मॉनिटरिंग डिवीजन द्वारा किया जाता है।
5: Donc, nous prenons en considération tout ancien stock et nouveau cargaison qui est rentré. Donc, nous avons un calcul appelé le weighted average cost, que nous prenons ancien stock et les nouveaux consignments, donc nous dit et nous calculons un prix qui est applicable au ancien stock aussi. À savoir, qui demande supermarché, il y a un produit qui est déjà au shelf, ça aussi les concerne. L'importateur, il y a 24 heures de temps pour lui applicable aux réunions. Donc, qui fait les 24 heures de temps pour lui capable de recevoir le prix qui est fixé par le ministère et deuxièmement communique avec son détaillant et revendeur.
4: Dam ko sabse zyada prabhavit karne wale tathyon mein freight pramukh hai.
6: Avant le conflit, disons une fret depuis le Kadali, depuis Jebel Ali, tire environ $2,000 et il est fini augmenté par à peu près 215%. Mais cela dit, ce qu'on nous guette ailleurs, par exemple de Chine, l'ICA a fini augmenté environ 22 à 27% en 20 pieds. De l'Inde, il y a un peu plus bas, les 8 à 10% le 20 pieds. Donc, à dire que depuis l'Europe, par exemple, pas fini aucune augmentation de fret, mais les lignes n'ajoutent une surcharge qui est à la hauteur de 10%. Et il y a impacté directement le coût de la marchandise qu'un importateur fait à venir.
4: इसके अलावा सब्सिडी वाले उत्पादों की एक नई सूची पहले से तैयार है।
7: La liste là bien intéressant. Donc valeur du jour c'est que mon capable dire où nous n'a demande feu vert ministère finance. Nous peut attendre ce feu vert dès que nous gagne feu vert, c'est-à-dire no objection du ministère des finances, les là nous parle au cabinet.
4: इस बात की भी घोषणा की गई है कि कीमतों पर बेहतर नियंत्रण और प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करने के लिए एसटीसी कई अन्य बुनियादी उत्पादों का आयात करेगी।
2: इक्वल अपॉर्चुनिटीज कमीशन ने नादरा अमीर और मुशीरा अब्दुल्लाही तथा उनके पुराने मालिक के खिलाफ मामले में अपनी रिपोर्ट प्रकाशित की है। इक्वल अपॉर्चुनिटीज कमीशन ने निष्कर्ष निकाला कि ये दोनों महिलाएं भेदभाव की शिकार हुई हैं। 2025 के जून महीने में हिजाब पहनने की वजह से उन्हें सस्पेंड कर दिया गया था। इसके बाद इनसबोर्डिनेशन को लेकर उन्हें नौकरी से हटा दिया गया था। काप मलेरे में कापले स्पोर्ट शेल्टर के मैनेजमेंट की ओर से बताया जा रहा है कि वहां पर खाद्य सुरक्षा तथा साफ सफाई और किस्म को लेकर नियंत्रण प्रक्रियाएं बढ़ाई जा रही है। जेंडर इक्वालिटी मंत्रालय द्वारा कल प्रकाशित एक विज्ञप्ति में ये बात सामने आई। शेल्टर में रहने वालों के लिए निर्धारित भोजन परोसे जाने में बर्गर ब्रेड खराब होने के तथाकथित आरोप मिलने पर सोशल नेटवर्क पर चित्र दिखाए गए, जिसके बाद ये मामला सामने आया, प्रतिक्रियाएं सामने आई। इसके अलावा विज्ञप्ति में ये भी बताया गया कि मामले को योग्य अधिकारियों के हवाले किया गया है, जैसे कि पुलिस और रिविया जोगों पर स्थित सैनिटरी दफ्तर। कल बोपलों के एक पंप स्टेशन में चलाई गई कार्रवाई के बाद दो संदिग्ध लोगों को हिरासत में लिया गया, जिनके पास से भारी मात्रा में मादक द्रव्य बरामद हुए। पुलिस ने गाड़ी को रोका जिसे निकोला कौंजी चला रहे थे। उनकी मॉरिशन एवं फ्रांसीसी दोहरी नागरिकता है। गाड़ी में अफसरों को 146 ग्राम से अधिक के तथाकथित हेरोइंस मिले, ड्रग के कई पैकेट भी मिले और साथ में कैलिबर 12 की बंदूक भी। संदिग्ध व्यक्ति गुडलैंड्स के रहने वाले एक वॉचमैन जॉन एमिलियो बंदूक के साथ था। उसके बाद जांचकर्ताओं ने पेरेबिया में निकोला कांजी के घर पर छापा मारा। वहां से गांजा और हेरोइन के कई पैकेट्स मिले। इसके बाद एक इलेक्ट्रॉनिक तराजू भी, जिस पर मादक द्रव्य के निशान थे। दूसरे संदिग्ध के यहां पुलिस के को शस्त्र और कैलिबर 12 की गोलियां भी मिली। संदिग्ध व्यक्ति ने जिस गाड़ी का इस्तेमाल किया था उसे भी जब्त कर दिया गया। बरामद मादक द्रव्य की लागत 2.7 मिलियन रुपए से अधिक की बताई जाती है। घान रिवे नॉर्थ वेस्ट के कैदखाने में पेश आई हादसे के बाद एक जांच शुरू की गई। दो कैदियों पर अस्थायी आरोप है कि उन्होंने एक अन्य कैदी को पीटा, उस पर हमला किया। 46 वर्षीय व्यक्ति को चेहरे पर चोट लगी। कैदखाने के एजेंट जल्द ही स्थिति को नियंत्रित करने पहुंचे। साथ ही अन्य दो कैदियों पर अन्यों ने हमला किया। कैदियों की मेडिकल यूनिट की ओर से 3 घायल लोगों को संभाला गया, फिर इलाज के लिए उन्हें रोजबेल स्थित जवाहरलाल नेहरू अस्पताल ले जाया गया। चलिए अब स्विमिंग तैराकी स्कूल की बात करते हैं। ये युवा एवं खेल मंत्रालय की पहल है जो मॉरिशस स्पोर्ट्स काउंसिल की ओर से संचालित मूल ढांचों के माध्यम से प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों के बच्चों को तैरने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करना चाहता है। देश के चार स्विमिंग पूल से संबंधित 18 मई

0: Maud Albert, Pavillon 4 Chobon, Rivière du Rempart, or Bouba Saint-Stide, Serge Alfred Swimming Pool. Sator Satraha Vajki ki umr ke beech ke bache isse sambandhit honge. Bata de ki teen charno mein training nirdharit hai aur 24 sessions honge. Sambandhit website par 13 aur 14 mai ko registration honge. Aur ab ye khabar surkhiyon mein iski charcha kar rahe the. सरकारी विभाग में वर्क फ्रॉम होम का ऐलान किए जाने से संबंधित एक सर्कुलर जारी किया गया और कुछ ही समय बाद इसे हटा भी दिया गया। इससे काफी कंफ्यूजन पैदा हो गया। मंत्रालय की तरफ से कहा जा रहा है कि मंत्रालयों और अर्ध सरकारी विभागों में इस दस्तावेज को भेजे जाने से पहले किसी भी प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। सार्वजनिक सेवा मंत्री राज पंचा ने इस बात का आश्वासन दिया कि इस तरह की प्रणाली कायम करने से पहले संबंधित पक्षों के साथ बातचीत की जाएगी। यासिंदन महमूद, करुणा लालू।
1: ये सर्कुलर बिना किसी आधिकारिक अनुमति के जारी किया गया था। सिविल सेवा मंत्री राज पंत्या ने कहा कि इस प्रकार का कोई भी निर्णय पहले मंत्रालय स्तर पर इस पर विस्तार से अध्ययन किया जाता है, उसके बाद मंजूरी के लिए मंत्री परिषद में पेश किया जाता है। इस मामले में आवश्यक प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया गया।
2: इसे
1: समर्थित करने के लिए कोई भी नीति नहीं। जांच के बाद कि चूंकि कोई पॉलिसी डिसीजन नहीं है, इसे हटाना चाहिए और आवश्यकताएं पूरी की जानी चाहिए। इस संबंध में किसी निर्णय से पहले श्रमिक संघ और सरकारी कर्मचारियों के साथ परामर्श किया जाना चाहिए। एक ऐसा फैसला जिससे 58,000 सरकारी कर्मचारी सीधे रूप से प्रभावित होते हैं, उनका परिवार भी, इस बारे में ठीक से विचार करना चाहिए। उसे लागू करने से पूर्व गहरा विचार विमर्श करना चाहिए ताकि वो स्वीकार्य हो। मंत्री राज पंत्या ने कहा कि इस विषय पर एक प्रारंभिक बैठक पहले ही हो चुकी है, लेकिन आगे की चर्चाओं के बिना कोई निर्णय नहीं लिया जाएगा। साथ ही मंत्रालय द्वारा ऊर्जा बचत के लिए अल्पकालिक उपाय पहले से ही लागू किए गए हैं।
0: बढ़ते हैं विदेशी समाचारों की ओर। भारत में विधानसभा चुनाव में मिली प्रचंड जीत के चार दिन बाद आज बंगाल को भाजपा का पहला मुख्यमंत्री मिल गया है। बंगाल के नए मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी होंगे। शुभेंदु अधिकारी को विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने बंगाल के सीएम के लिए शुभेंदु अधिकारी के नाम का ऐलान किया। विवरण सुमेरा अकबर अली।
3: आसाम में ऐतिहासिक राजनीतिक पड़ाव को मनाया जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह 12 मई के लिए निर्धारित है, जिसमें भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भाग लेने वाले हैं। अन्य वरिष्ठ बीजेपी नेता भी मौजूद रहेंगे।
4: ओथ टेकिंग सेरेमनी 12 मई को होगा, 11 बजे होगा। मुख्य अतिथि के रूप में आदरणीय प्रधानमंत्री श्रीयुत नरेंद्र मोदी जी उपस्थित रहेंगे। जो प्रमुख हस्तियां है, सभी के उपस्थिति में खानापाड़ा फील्ड में शपथ ग्रहण अनुष्ठान आयोजित किया जाएगा।
3: पश्चिम बंगाल में प्रांतीय मंत्री परिषद को भंग कर दिया गया, बावजूद ये कि ममता बनर्जी ने हार के बाद मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने से इनकार किया। अब शनिवार को भव्य शपथ ग्रहण समारोह लगाया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के संचालक भाग लेंगे। केरल में अभी तक लीडरशिप को लेकर विचार विमर्श किए जा रहे हैं। मुख्य मंत्रालय की जिम्मेदारी किसको सौंपी जाए, लगातार तीन दिनों के लिए सलाह मशवरे जारी है। सबने कहा कि हाई कमांड को फैसला लेना होगा। ऑब्जर्वर दोबारा दिल्ली जाएंगे और हाई कमांड को रिपोर्ट देंगे।
5: ऑब्जर्वर्स विल गो बैक टू दिल्ली एंड दे विल स्पीक टू द हाई कमांड एंड रिपोर्ट, दे विल गिव देयर रिपोर्ट्स।
3: तमिलनाडु में तमिलगा वेत्री कालागम की भारी जीत के बाद अब बाकी की सीटें समेटने की कोशिश की जा रही है। टीवीके को और सिर्फ 5 सीटें चाहिए ताकि वो सरकार बना सके। इसी मकसद से छोटी पार्टियों और स्वतंत्र उम्मीदवारों से बातचीत की जा रही है। विजय की पार्टी के साथ 5 निर्वाचित उम्मीदवार जुड़ चुके हैं। टीवीके के पास अभी 113 सीटें हैं। सरकार बनाने के लिए 118 सीटें जरूरी हैं। ईमेल और अन्य संचार माध्यमों से हमने पार्टियों से

0: राबता कायम किया और उनके समर्थन की मांग की। बड़ी घोषणा करने से पहले सलाहकारी बैठक लगाएंगे। कई राज्यों में यही सिलसिला है। मुख्यमंत्री और मंत्रियों की नियुक्ति के सिलसिले में अहम फैसले लिए जा रहे हैं।
1: और एक बार फिर से चुनावों की ही बात करते हैं। इंग्लैंड में इंग्लिश काउंसिल के प्रारंभिक नतीजों के मुताबिक रिफॉर्म की जीत हो रही है। ब्रिटेन के मौजूदा प्रधानमंत्री खैर स्टॉमर ने कहा कि वे जाएंगे नहीं। पूर्व लेबर गढ़ में रिफॉर्म सीट जीत रही है। अभी तक इंग्लैंड में 50 काउंसिल की ओर से नतीजे घोषित किए गए हैं, अभी भी 86 के नतीजे बाकी हैं। विजय दिवस पूरे यूरोप के लिए एक ऐतिहासिक पल दर्शाता है। 8 मई 1945 को नाजी जर्मनी ने अपनी हार स्वीकार करते हुए समर्पण पर दस्तखत किए थे। इस जीत के साथ कई सालों तक चली जंग का खात्मा हुआ। फ्रांस में लोगों ने आज़ादी और शांति की वापसी का जश्न मनाया। तब से ये तारीख हिम्मत, याद और आने वाली पीढ़ियों के लिए उम्मीद का प्रतीक बनी हुई है। ये दिन उन लाखों लोगों को श्रद्धांजलि देता है जिन्होंने युद्ध के दौरान दुख और कष्ट सहे, साथ ही उन सिपाहियों को भी जो आज़ादी और शांति के लिए लड़े। स्पेन में स्वास्थ्य मंत्रालय ने नए आपात कदम लागू किए हैं। कैनारी टापुओं में हंटा वायरस के चलते स्वास्थ्य चेतावनी जारी की गई है। एमवी हॉन्डियस जहाज पर उच्च निगरानी रखी जा रही है क्योंकि संक्रमण के कई शकी मामले, संदिग्ध मामले पाए जा रहे हैं। जहाज पर 5 मामलों की पुष्टि की गई है। इस बीच विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा कि इंक्यूबेशन अवधि के दौरान और संक्रमित मामले सामने आ सकते हैं। WHO ने निदेशक पेड्रोस अदानोम को सुनते हैं। विवरण सुमेरा अकबरअली।
0: विश्व स्वास्थ्य संगठन के पास पूरी रिपोर्ट है, कितने लोगों में संक्रमण के संकेत पाए जा रहे हैं, किसने संक्रमित यात्रियों से बात की या उनके करीब रहा। हम संबद्ध अधिकारियों के साथ सीधे तौर पर राबता कायम कर रहे हैं। संक्रमित होने के बाद इंक्यूबेशन अवधि 6 हफ्तों की है। इस समय के दौरान और मामले सामने आ सकते हैं। ये एक संगीन घटना है।
1: मौसम संबंधी जानकारियां कुछ इस प्रकार हैं। मॉरिशस के लिए आज रात 10 बजे से ऊंची लहर उठने की चेतावनी जारी की गई है, जो रविवार 10 मई 2026 को सुबह 4 बजे तक लागू है। दक्षिण पूर्व की ओर से बड़े ही कमजोर दबाव वाली हवा के साथ जो बादल जुड़े हैं वे आज रात से हमारे स्थानीय मौसम को प्रभावित करने लगेंगे। अगले 24 घंटों के लिए अनुमान लगाया जाता है कि आज रात धीरे धीरे बादल घिरने लगेंगे और रहकर बारिश होती रहेगी, मुख्य रूप से देश के पूर्वी इलाके, दक्षिणी इलाके और सेंट्रल प्लाटू पर। ऊंचाइयों पर कोहरे छाए रहेंगे। टापू भर में कल मौसम बरसाती ही रहेगा और ऊंचाइयों पर कोहरे छाए रहेंगे। पूर्व दक्षिण पूर्व की ओर से 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलेगी, जिनके झोंके 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकते हैं कुछ इलाकों में। समुद्र खराब रहेगा, धीरे धीरे ज्यादा खराब होने लगेगा। 4 मीटर ऊंची लहरें उठेंगी और ये ऊंची लहरें पश्चिमी एवं दक्षिणी लगुनों तटीय इलाकों तक भी पहुँच सकते हैं, खासकर ज्वार भाटे के दौरान। इसीलिए मच्छरों, प्लेजर क्राफ्ट चलाने वालों और आम जनता को सलाह दी जाती है, मांग की जाती है कि दूर समुद्र में ज्वार भाटे के दौरान ना निकले और समुद्र तटों के पास ना जाएं। तापमान सेंट्रल प्लाटू पर न्यूनतम तापमान 18 और 20 डिग्री सेल्सियस के बीच, अधिकतम 22 और 25 डिग्री सेल्सियस के बीच। तटवर्ती इलाकों पर न्यूनतम तापमान 22 और 25 डिग्री सेल्सियस के बीच, अधिकतम 27 एवं 29 डिग्री सेल्सियस के बीच। शाम 5:44 पर सूर्यास्त, जबकि सुबह 6:28 पर सूर्योदय।

0: मौसम संबंधी नई जानकारियों के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। आपने ध्यान दिया इसके लिए बहुत धन्यवाद। साथ ही धन्यवाद कहेंगे अपने तकनीकी सहयोगियों फैजन और लुविशा को। कुछ ही समय में शोक समाचार।
1: NBC Play, NBC Play, NBC Radio.TV, NBC Radio.

नंबर 77 मोसलमान ओबन बॉम्बू में, नंबर 77 मोसलमान ओबन बॉम्बू में 85 साल के 85 ईयर्स ओल्ड के श्री महादेव कहानू, श्री महादेव कहानू जो जिसु के नाम से भी जाने जाते थे कि मृत्यु हो गई है, उनकी अर्थी कल सुबह साढ़े नौ बजे उनके घर नंबर 77 मोसलमान ओबन बॉम्बू से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सेंसोवे बॉम्बू की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमरो एट 9:30 AM। नंबर 94 पियतों पेलावाल सेंट क्वा में, नंबर 94 पियतों पेलावाल सेंट क्वा में 88 साल के 88 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती सत्यज रशन, श्रीमती सत्यज रशन पैदाशी नाम रामनूत जो रानी नाम से भी जानी जाती थी की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल सुबह 10 बजे उनके बेटे श्री सतीश रशियन के घर नंबर 94 पियतों पियालावाल सेंट क्वा से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सिपाही ब्रुले वाले दिपत की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रोमेशन टुमरो एट 10 AM। जानकी स्ट्रीट पुथुदो विलेज में, जानकी स्ट्रीट पुथुदो विलेज में 79 साल के 79 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती बिद्वंती मधु पैदाशी नाम सोहन जो वंती नाम से भी जानी जाती थी की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थे कल सुबह 10 बजे उनके बेटे श्री संजय मधु के घर जानकी स्ट्रीट पुथुदो विलेज से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बेलमो पुथुदो विलेज की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रोमेशन टुमरो एट 10 AM। नंबर 31 सेंट फामी रोड सेंट क्वा में, नंबर 31 सेंट फामी रोड सेंट क्वा में 64 साल के 64 ईयर्स ओल्ड के श्री कुमार नेओल जो दत्त नाम से भी जाने जाते थे कि मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थे कल सुबह 10 बजे उनके घर नंबर 31 सेंट फामी रोड सेंट क्वा से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए वाले दिप्रत की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमरो एट 10 AM। फर्स्ट रोड फोंचीसाक में 44 साल के 44 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती दनिशा रघुबीर पैदाशी नाम निरंजन जो सुनंदा नाम से भी जानी जाती थी कि मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थे कल सुबह साढ़े दस बजे उनके घर फर्स्ट रोड फोंचीसाक से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए फोंचीसाक की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमरो एट 10:30 AM। रॉयल रोड ट्रूडो डूस में 84 साल के 84 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती कुलमंती बिखारी पैदाशी नाम होलमन और जो मानती नाम से भी जानी जाती थी और पहले ट्वेस्क होटल में काम करती थी की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल दिन के 11 बजे उनके बेटे श्री शैलेश भिखारी के घर रॉयल रोड थोदोदूस से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए थोदोदूस की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रोमेशन टुमरो एट 11 AM। जोली स्ट्रीट 4 सौ में 49 साल के 49 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती सुविना द्वारका प्रसाद पैदाशी नाम मंगुत्रोय की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी बाद में उनके पति श्री शरद चंद द्वारका प्रसाद के घर जोली स्ट्रीट 4 सौ से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए दुफ्रे की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। शमे शांतिनी जंती सैंपियर में 82 साल के 82 ईयर्स ओल्ड के श्री तगोमन महादिया जो जैक्सन नाम से भी जानी जाती थी कि मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल दिन के साढ़े बारह बजे उनकी पत्नी ललिता देवी महादिया के घर श्रीमे शांतिनी जंती सैंपियर से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सेकोस्तान सैंपियर की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रोमेशन टुमरो एट 9:30 AM। Avenue Guy Rosemont, Trèfle-Rosilmé, 67 साल के 67 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती पुष्पा बिसेसर जो रीता नाम से भी जानी जाती थी कि मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थे कल दिन के सवा एक बजे उनके घर एवेन्यू गी रोजमोंट ट्रेफ्ले-रोसिल से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए कॉलिवियर रोसिल की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रोमेशन टुमरो एट 1:15 PM। पाल्मा रोड कैटरबोन में 77 साल के 77 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती पुष्पा माला बूतन
पैदाशी नाम राम जो मीला नाम से भी जानी जाती थी की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल दिन के सवा एक बजे उनके घर पाल्मा रोड कैटरबोन से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए पाल्मा गांधी की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रोमेशन टुमरो एट क्वार्टर पास वन पी एम। फेलिक्स देवाटोर शां दे मॉस पोर्ट लुइस में 70 साल के 70 ईयर्स ओल्ड के श्री बिपिन रोही जो बिपिन नाम से भी जाने जाते थे की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल दिन के दो बजे उनके घर फेलिक्स देवाटोर शां दे मॉस पोर्ट लुइस से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए थॉकबाओ की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रोमेशन टुमरो एट 2 PM। रुथ रॉयल टे अरूज में 73 साल के 73 ईयर्स ओल्ड के श्री रामेश्वर गिरधारी जो रमेश बाजौ नाम से भी जाने जाते थे की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी अगले रविवार 10 मई को सुबह साढ़े नौ बजे उनकी पत्नी श्रीमती माला देवी गिरधारी के घर गुतवायाल तेहोश से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बुआमौशों की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रोमेशन ऑन संडे नेक्स्ट 10th of May एट 9:30 AM। नंबर 9 रुई ला रेनेसांस नंबर 59-120 फ्रांस में 72 साल के 72 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती चित्रलेखा गिरधारी जो अनीता नाम से भी जानी जाती थी और पहले ली बेतो वाकवा रहती थी की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी अगले सोमवार 11 मई को दिन के 2:15 उनके घर नंबर 9 रुई दे ला रेनेसांस लस फ्रांस से उठाकर उनका अंतिम संस्कार एली लील ऑफ्रांस में ही किया जाएगा। मोरा पे चित्रिविया में 62 साल के 62 ईयर्स ओल्ड के श्री महेश्वर सिंह लक्ष्मण जो पिपित नाम से भी जाने जाते थे की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी अगले मंगलवार 12 मई को मोरा पे चित्रिविया से उठाकर दिन के 10 बजे तेमिनिस त्रियोले की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रोमेशन ऑन ट्यूजडे नेक्स्ट 12th of May एट 10 AM। शुक्र मेरुविन सभी परिवारों के साथ हमारी दिली हमदर्दी है।

0: RM3 रेडियो।
1: नमस्कार, इस समय शाम के 6:35 हुए हैं। हमारी आपकी मुलाकात हो रही है रेनु मनोरंजन पर। अभी आप सुन रहे थे समाचार श्रुक समाचार और अब वक्त हुआ है कार्यक्रम नई सोच का। हम आपका स्वागत करते हैं नई सोच कार्यक्रम में और उम्मीद यही करते हैं कि दिन आपका बहुत ही अच्छा गुजरा होगा। उम्मीद करते हैं कि दिन आपका बहुत ही हिम्मत के साथ गुजरा होगा और सफलता के साथ भी।
2: नई सोच
1: कार्यक्रम में आपका स्वागत करते हुए हम चुनकर लाए हैं वो गाने जिससे आपके मन को हिम्मत मिले, जिससे आपके मन को बिल्कुल भी निराशा ना हो, जिससे आपके मन को आशा ही आशा नजर आए। चलिए जरा खुशियों की बात करते हैं। खुशियाँ किन को मिलती हैं? खुशियाँ उनको मिलती हैं जो औरों को खुश रखने की कोशिश करते हैं, जो खुशियाँ बांटते हैं उनकी खुशियाँ दुगनी होती जाती हैं। तो चलिए लव इन कनाडा मूवी का ये गाना सुनते हैं और लता मंगेशकर की आवाज़ के साथ हम अपनी आवाज़ भी मिलाते हैं और इन उपायों के साथ, इन बातों के साथ अपना मन भी मिलाते हैं।

दुख के कारण तो कई होते हैं, बस दुख से लड़ने के अलग अलग तरीके होते हैं। जहां हम चलते जा रहे हैं अपनी मंजिल की ओर, उस मंजिल के रास्ते में अगर रुकावट भी पड़े तो हम ना रुकें, उस रुकावट से लड़ने के का जज्बा रखें, तभी खुशी आती है हमारे जीवन में। संतोष जो आता है तो खुशी लेकर आता है। संतोष मिल जाए हमारे मन को इस होड़ के साथ, इस बाधा के साथ लड़कर, तो हमारे मन को ज़रूर खुशियाँ मिल जाती हैं।

हम तो है भाई राही राही चलते हैं चलते जाते हैं बाधाओं के साथ लड़ते जाते हैं जब मंजिल की ओर तो अपनी तरफ से हर तरह की लड़ाई लड़ते जाते हैं अपनी तरफ से हर तरह से हिम्मत दिखाते जाते हैं।

गम नहीं आएंगे आपके इर्द गिर्द। गम को हमें भगाना ही होता है, हमें हमारे में अगर वो हिम्मत आ जाए, अमर में वो हुनर आ जाए कि हम हिम्मत हम गम को भगा जाएं, तो हमारे आसपास गम भटकेगा नहीं। अगर मन की शांति पाना चाहते हैं हम, तो सबसे पहले जो मिला है उसमें खुश रहने की सोच रखें, उसमें खुश रहने से संतोष मिलता है। चलिए ज़रा हम इसी बात को मान लेते हैं कि जो मिलना है हमें वो मिल के रहेगा, जो नहीं मिलना है वो नहीं मिलेगा, लेकिन जो नहीं मिलता है उसके लिए कोशिश करना अच्छा।

चलिए हम ढूंढते हैं वो मंजिल जिस मंजिल की तलाश होती है हमको ढूंढना हमारा कर्तव्य होता है जहां तक रास्ता दिख रहा है वहां तक चलते जाना है आगे का रास्ता वहां पहुंचने के बाद जरूर दिखने लगेगा तो चलिए चलते जाते हैं आगे बढ़ते जाते हैं जिंदगी से शिकवा किए बिना जिंदगी से गिला किए बिना हम बस मंजिल की तलाश में चलते जाते हैं

0: तो बस इस समय 7 बजने वाले हैं, शाम के 7 बजे तक हमारा नई सोच कार्यक्रम रहा आपके लिए। उम्मीद करते हैं थोड़ी हिम्मत बंधी होगी, अगर कोई भी निराशा आपको सता रही होगी तो बस आप पढ़ते जाएंगे अपने रास्ते बहुत ही हिम्मत के साथ। तो नई सोच कार्यक्रम यहां समाप्त होता है, इस समय शाम के 7 बजे हैं। रेडियो मनोरंजन पर हम आप लोगों के लिए लेकर आएंगे इस बार दिलों की आवाज़।
1: You're listening to RM3 Radio Man.

0: सुनो, किन के ख्यालों में डूबे हुए हो? लगता है गहरा ख्याल है। हेलो,
1: कुछ कह रही थी क्या?
0: हाँ, तुम ही से बात कर रही थी। कहाँ खोए हुए हो?
1: ओह सॉरी, म्यूजिक सुन रहा था।
0: ऐसा क्या सुन रहे थे?
1: रेडियो मनोरंजन पर दो दिलों की आवाज सुन रहा था। रात 7 से 9 बजे तक कोई मुझे डिस्टर्ब न करे। मन पसंद गीतों का सिलेक्शन है, वाह क्या कहीं।
0: ऐसा क्या?
1: हाँ, जलने की कोई जरूरत नहीं, तुम भी अपना मन पसंद गाना सुन सकती हो। बस आसान तरीका है, बस नंबर मिलाओ 402-8070 पर और अपनी पसंद जाहिर करो।

0: अजीबे शक्लें कर आए हैं आप लोगों के मनोरंजन के लिए आपकी पसंद का ही के ही गाने दिलों की आवाज़ में और दिलों की आवाज़ में आपके दिलों की आवाज़ हम तक पहुंचने ही वाली है। बस आप हमें आवाज़ लगा लीजिएगा।
1: दिलों की आवाज़ की आवाज़
0: आपकी आवाज़ आएगी हम तक 5250-6200 नंबर के ज़रिए। अगर आप मैसेजेस भेजना चाहते हैं तो बेशक आप हमें मैसेज भेज दीजिएगा 5250-6200 पर, और अगर आप कॉल करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिएगा नंबर 4028070। तो चलिए बढ़ते हुए चलते हैं हम और आप लोगों के नाम में ये पहला गाना करते हैं ताकि हम आप लोगों के मैसेजेस भी पढ़ पाएँ, आप लोगों के कॉल्स भी ले पाएँ। फिलहाल तो खुशबू की ये बातें हैं, खुशबू जिनके मन से निकलती है उनके मन से प्यार ही प्यार निकलता है। चलिए ज़रा दिल वाले कभी न हारे मूवी का ये गाना सुनते सुनवाते गुनगुनाते हैं हम।

और चलिए जरा हम श्रीनल जी की पसंद का गाना आप तक पहुंचाते हैं। श्रीनल जी ने मांगा है फिल्म विवाह का गाना, उन्होंने ये गीत मांगा है भाई श्रवण, भाभी कृति के लिए, अभिनव, कियान, नाविया और पूरे तिलक फैमिली के लिए और उन सभी कपल्स के लिए जिनकी इस सप्ताहांत शादी होने वाली है, तो उनको मुबारकबाद हम भी देते हैं श्रीनल जी के साथ मिलकर।

हर किसी के जीवन में वो खुशी आए जिस खुशी के साथ पूरा परिवार एक जुट हो जाए, और ऐसे में पूरे परिवार के जुट होने पर आपकी जिंदगी भी बहुत प्यारी बन जाए। 7:17 और चलिए जरा कालिया मूवी का गाना सुनते हैं। कालिया मूवी के इस गाने की फरमाइश सुदेवी जी ने की है। ये गाना सुदेवी जी के लिए, हम वाकवा की सुदेवी जी के लिए बजवा रहे हैं। उन्होंने ये गाना मांगा है थयोले की दीदी ललिता के लिए और कुशल फैमिली के लिए, आत्माराम भैया जी के लिए और दीदी सुनीता, शोभा, देवीना, मालेगा के कृषय, केशनी, कृषिका, लक्षिका, प्रणीता के लिए और निया तथा वीर के लिए, रामरतन परिवार के लिए और हमारे सभी सुनने वालों के लिए। तो चलिए जरा कालिया मूवी का ये गाना सुनते हैं और उनका साथ पा जाने की खुशी हम भी बांटते हैं। जरा चलिए साथ मिल जाए आपको एक ऐसे परिवार का, ऐसे शख्स का कि आपकी ज़िंदगी बहुत प्यारी हो जाए, फूलों की तरह मुस्कराए ये ज़िंदगी, बहारों की तरह खिलखिल जाए और तितलियों की तरह उड़ती जाए, ऐसे ऐसे जहां में जहां बस सुखी सुख मुस्कुराहट ही मुस्कुराहट नजर आए।

0: continuous music.
1: कंटिन्यूस म्यूजिक आप लोगों के लिए है रेडियो मनोरंजन पर, और मनोरंजन तो आपका होता ही रहता है। चलिए ज़बरदस्त मनोरंजन हम आगे बढ़ाते हैं, आप लोगों के नाम करते हैं गाने। फिलहाल तो हम नाम करेंगे गुलशन जी के ये गाना, ये है दरार मूवी का गाना, कुमार सानू अलका याग्निक की आवाज़ों वाला। और गुलशन जी ने ये गाना मांगा है अपनी ममा प्रभा जी के लिए, बहन दीक्षिता के लिए और पूरे भोला परिवार के लिए। नो नो नो नो आयशा जी, आपको भूले नहीं है गुलशन जी, ख़ास तौर पर आपकी राहों में बिछा रखा है शेरों का फूल उन्होंने, और इन फूलों में महक इतनी आती है कि वाह लाजवाब समय बीत जाएगा आपका। वैसे अर्ज़ किया है सिर्फ आपके लिए आयशा जी, मोहब्बत भी हम एटीट्यूड से करते हैं, जिसको चाहा उसी पे मरते हैं। ज़रूरत नहीं है हर किसी को पसंद आने की, जो पसंद है हमें वही हम पे मरते हैं। सुभान अल्लाह आयशा जी, आपका तो समय बड़ा ज़बरदस्त हो गया।

7:32 और हम जरा बर्थडे विश करते हैं मुमुन जी को. हैप्पी बर्थडे टू यू मुमुन जी. आपको शुभकामनाएं आपकी मामा प्रिया की तरफ से मिली है, पापा श्याम की तरफ से, बहन नैना की तरफ से और पूरे कुशल परिवार की तरफ से और थयोले की ललिता कुशल जी की तरफ से. अ वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू. बस यही दुआ करते हैं कि आपको हर पल खुशियों लबाला मिले और सफलता आपके कदम चूमते रहे और ऐसे में आपकी ज़िंदगी खुशगवार हो जाए, फूलों सी महक रहे आपकी ज़िंदगी में और रहे जीवन में आपकी खुशबू ही खुशबू, सफलता का संतोष ही संतोष. वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू मुमुन जी.

की तरफ से वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू. आपके लिए दुआएं हमारे दिल से निकल रही हैं कि आपको संतोष मिले, आपको खुशियां मिले, आपको अपनों का प्यार जरूर मिले. तो चलिए इसी मौसम में हम आप लोगों के लिए तकदीर मूवी का गाना पेश करते हैं और तकदीर मूवी का ये गीत हम पेश कर रहे हैं गुड लेंस की हमारी श्रोता के लिए. गुड लेंस से हमारी श्रोता संध्या जी ने इस गाने की फरमाइश की है बाहुश गुड लेंस से. और संध्या जी ने इस गाने की फरमाइश अपने पापा देवचरण गोवर्धन जी की याद में की है और उन्होंने यही उम्मीद की है कि जो भी जहाँ भी हो उनके पापा उनकी बच्चों की तरफ मुस्कुरा कर देखें. और उनके बच्चे हैं सेजल और रायना और सभी सुनने वालों के नाम संध्या जी ने इस गाने की फरमाइश की है. ये है लता मंगेशकर की आवाज़ का गाना जब जब बहार आए. बहारें आती रहे सबके जीवन में यही उम्मीद हमारी है.

0: दिलों की आवाज की आवाज दिलों की आवाज
1: सुनाई दे रही है हमको आपके दिलों की आवाज एसएमएस के जरिए मैसेजेस के जरिए फोन कॉल्स के जरिए 5250-6200 नंबर मैसेजेस वाला है 4028070 कॉल करने वाला है आपके मैसेजेस हम तक इन्हीं नंबरों के जरिए पहुंच रहे हैं और आपके दिल की आवाज हम रेडियो पे जरूर सुनवा रहे हैं आपको रेडियो मनोरंजन पे अब देखिए ना दोस्ती की बात जो हम करें तो दोस्ती हमारी आपकी होती है और यहाँ पर ताया के रफीक मोहित जी ने हमारी उनकी दोस्ती का रेडियो के टीम की और उनकी दोस्ती का दावा किया है दोस्ताना मूवी के गाने की फरमाइश करके कोशिश करो तो कोई आपसे ना रूठे ज़िंदगी में अपनों का साथ ना छूटे दोस्ती कोई भी हो उसे ऐसा निभाओ कि उस दोस्ती की डोर जिंदगी भर ना टूटे क्योंकि कुछ दोस्त दोस्त नहीं होते दिल के सुकून होते हैं और ऐसे में दोस्ती एक ऐसा रिश्ता बन जाता है जो सिर्फ दिल से ही बनता है दोस्तों की दोस्ती में कभी कोई रूल नहीं होता और यह सिखाने के लिए कहीं कोई स्कूल नहीं होता तो बेशक हम ये गाना पेश करते हैं दोस्ताना मूवी का रफीक मोहित जी के नाम जो रहते हैं तायक

जरा इस वक्त हम प्रस्तुत करें वो गाना जिसकी फरमाइश फ्लिक ऑफ फ्लैक से आई हुई है। फ्लिक ऑफ फ्लैक से अनीता जी ने फरमाइश की है अगले गाने की, और ये गाना है फिल्म द ग्रेट गैम्बलर से लिया गया। और पहले पहले प्यार की मुलाकातों की ये बातें हैं पेश कर रही हैं, कर रहे हैं हम अनीता जी की तरफ से उनके पति राज के लिए, उनके बेटे अंतिश अंकुश के लिए, बहू मनीषा अशीमा के लिए, पोती हिमेशा आदिया के लिए और प्यारे से पोते अंश के लिए। उन्होंने तो हमारी पूरी टीम के लिए ये गाना मांगा है। ये गाना उन्होंने पहली मुलाकात वाला मांगा है। जी हाँ, पहली मुलाकात में कुछ ऐसा अंदाज था उनका, उनकी हर अदा का, कि उनके नाम से गुजरे दिन, उनके नाम से शामें हमारी, लंबी उम्र जीने का नहीं सोचते हम, बस एक पल उनके साथ जीने की ख्वाहिश हमारी।

चलिए जरा एक तोहफा पेश करते हैं हम पॉम्पलेमस के सचिन जी की तरफ से। सचिन जी ने मोहब्बत का ये तोहफा कबूल करने के लिए किया है इल्तिजा। चलिए जरा तोहफा मोहब्बत का मूवी का ये गाना आप लोगों के नाम करते हैं हम सचिन जी की तरफ से अनूप जलोटा और अनुराधा पौडवाल की आवाज़ों में।

तुक्के पे दुक्के हो या सत्ते पे सत्ता, अजी साथ साथ रहेंगे तो बात ही कुछ ऐसी होती है कि खुशियां खुशियों वाला गाना गाने का मन करता है। और ऐसे में हम जो पेश करते हैं आपके लिए सत्ते पे सत्ता का ये गाना आशा भोसले और साथियों की आवाज़ों में, तो आप भी साथ हो लीजिएगा। और किशोर कुमार, आर्य बर्मन, भूपेंद्र, सपन चक्रवर्ती, बासु, सबकी आवाज़ों के साथ आप अपनी आवाज़ ज़रूर मिलाइएगा, क्योंकि आवाज़ मिलाने से इतना जॉय पैदा होगा, इतनी खुशी पैदा होगी कि आप लोग बहुत ही इन्जॉय करेंगे। तो चलिए, अगर आप किसी ऐसी महफिल में हैं जहाँ इन्जॉय करने का मन करता हो, तो बेशक ये गाना आप ज़रूर इसको इन्जॉय कीजिएगा। फिलहाल तो हम पेश करते हैं ये गाना सूरज शर्मा सजादा जी की तरफ से। उन्होंने ये गाना मांगा है अपने बेटे निशाल और पूरे बिसेसर परिवार के लिए।

0: Continuous music. Music.
1: म्यूजिक तो आप तक पहुंचाएंगे, आपके दिल की गहराई में उतरने देंगे हम, क्योंकि ये म्यूजिक आपके चुने हुए हैं। और यहाँ पर चुनना हो अगर आपको अपना गाना, अपनी पसंद का गाना, तो 5250-6200 पर मैसेज ज़रूर भेज दीजिएगा हमको। अगर कॉल करना चाहते हैं तो 4028070 नंबर है हमारा। हम थोड़ा थोड़ा करके, एक एक करके आप लोगों के कॉल्स ले रहे हैं, बस आप थोड़ा धीरज धरिएगा, आपकी पसंद का गाना हम आप तक ज़रूर पहुँचाएँगे। फिलहाल तो चलिए आपको हम सुनवाते हैं दोस्ती का वो गाना जिसमें है बहुत ही खुशी, बहुत ही प्यार से भरे हुए पल। चलिए दोस्ती के इन पलों को ज़रा हम सुनते हैं शोले मूवी का। और इस गाने की फरमाइश की है डीके सुकंजी ने, जो पंथ पिमा के रहने वाले हैं। उन्होंने यह गाना अपनी मामा सोना के नाम, मौसी सिवंती के नाम, पंथ पिमा के सभी दोस्तों के नाम किया है। तो चलिए सलामत रहे दोस्ती आपकी, बहुत ही खुशियां दे जाए दोस्ती आपकी, मस्ती हो चाहे दर्द का आलम, साथ आपके दोस्त का आपका आपको हमेशा मिलता रहे, और मदद आपके दोस्त की हमेशा आपके सराखों पर रहे।

और चलिए मनोरंजन का ये जो सिलसिला है, इस सिलसिले में हम आपको सुनवाते हैं मधुमती मूवी का गाना। इस गाने की फरमाइश अब्बू जी ने की है वाकवा से। उन्होंने ये गाना मांगा है आफिज के लिए और अपने पूरे परिवार के लिए, जिनमें शामिल हैं आयान, असलम, आयास, जायान, जाहिरा, काला चोती, रईस, उनके दोस्त अप्पी और उनकी पत्नी। और साथ ही साथ ये गाना हम पेश करते हैं ज्योति जी के लिए, जो शातो बनारस की रहने वाली है, उनकी तरफ से आशनी, रेखा, सुरेखा और मंडप फैमिली के लिए।

चलिए जरा अभी शादी का मौसम है और शादी करने वालों को तो हम ढेर सारी दुआएं देते हैं. खुशनसीब हैं आप, आपकी शादी में आपको बहुत सारी दुआएं मिल रही हैं आपके पूरे परिवार की तरफ से और आपको बहुत से लोग दुआएं देने के लिए तैयारी भी कर रहे हैं. सो आप लोगों के जीवन में हर खुशी रहे, हर तरह का सपोर्ट रहे और आप अपने जीवन को सफल बनाने में कामयाब रहे, यही हमारी दुआ है आप सभी के लिए. फिलहाल तो हम आतिश जी, हम किशन जी की तरफ से एक गाना पेश करते हैं और विवाह मूवी का ये गाना हम आदर्श जी के नाम करते हैं. उनके कज़िन आदर्श की शादी हो रही है,

से वीकेंड और पूरा परिवार मिला हुआ है, मिलजुल के डेकोरेशन का काम कर रहे हैं सभी लोग। उनमें शामिल है सुधीर, आतिश, अनिल, पेपे, शैली, नलिनी, करिश्मा, अरविंद, प्रीति और सभी रिश्तेदार भी साथ में हैं, सभी फ्रेंड्स भी साथ में हैं। आदर्श जी को हैप्पी वेडिंग विश कर रहे हैं और हमारी पूरी टीम की तरफ से भी आदर्श जी आपके लिए इतनी सारी दुआएं हैं कि आपके जीवन में खुशियों की कमी कभी नहीं हो।

0: Continuous music. Music Radio.
1: RM3. Music है तो सारा जहां खुशी खुशी नजर आता है. Music है तो सारे जहां को तसल्ली सी रहती है. चलिए म्यूजिक का ये सिलसिला बढ़ाते हैं आगे और टैक्सी चोर मूवी का ये गाना पेश करते हैं साजिद जी के लिए. साजिद जी ने टैक्सी चोर मूवी का ये गाना मांगा है किशोर कुमार और उषा मंगेशकर की आवाज़ों में. झोंका ये जो हवा का है ये बहुत ही प्यारा सा ठंडा सा शीतल सा लगता है और इस ठंडे से शीतल से झोंके में आपको अच्छी नींद भी आती है, अच्छा सा सुकून भी आता है. तो चलिए इसी हवा के झोंके को आप तक पहुंचाते हम साजिद जी की तरफ से. रोजिल के साजिद जी ने ये गाना मांगा है. इंडिया में इस वक्त सरोवर जी हैं उनके नाम.

चलिए जरा हम बादल मूवी के गाने की ओर चलते हैं। लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजों का ये गाना है, पोर्ट लुइस के इब्राहिम जी की पसंद का ये गीत। चलिए सुनते हैं साथ मिलके।

और चलिए जरा हम चांद को चूड़ी का टुकड़ा समझकर के चूड़ी के टुकड़े को चांद समझकर आगे बढ़ते हुए चलते हैं। मेरा दांत और डाल के अग्नि की आवाज़ों का ये गाना बाजीगर मूवी से लिया गया, आप लोगों के नाम करती हैं हम उदेश जी की तरफ से। उदेश जी पंडित बापा से ये गाना सुनना चाहते हैं और सुनवाना चाहते हैं स्मिता जी को।

9:09 हैं और फरमाइशों का ये सिलसिला चल रहा है, म्यूजिकल सिलसिला चल रहा है। और जहाँ भी होंगे आप खुश रहेंगे, हंसते हंसते मुस्कुराते मुस्कुराते हर एक पल गुजारेंगे, ऐसी दुआओं के साथ हम ज़रा आतिश मूवी का ये गाना आप लोगों तक पहुँचाते हैं कुमार सानू साधना सरगम की आवाज़ों में। और ये गाना सुनने की इच्छा एक दिल को है और वो दिल है मोहन जी का। मोहन जी पौधी साक रहते हैं, उन्होंने ये गाना मांगा है अपनी पत्नी शांति जी के लिए और अपनी बेटी विद्या और स्नेहा के लिए। तो चलिए जरा इन हसरतों की बातें सुनते हैं, हसरतों की ये अदाएं सुनते हैं और ऐसे में दिल जो धड़क धड़क के ये बातें कहता है, इन बातों का ये नज़ारा देखते हैं।

तो चलिए जरा शादियों का मौसम है तो शादी वाला एक गाना पेश करते हैं। बहना को जरा छेड़ता हुआ ये गाना है शादी के अवसर पर, और ये गाना हम पेश कर रहे हैं अदालत मूवी से लिया गया। इस गाने की फरमाइश का तो वो उनके बाबू अनथवा जी ने की है, और बाबू अनथवा जी ने ये गाना अपने दोस्त की बिटिया ईशिका के नाम किया है जिनकी शादी हो रही है इस वीकेंड। और ईशिका जी को उनके उनके मम्मी पापा की तरफ से की बहुत बहुत मंगल कामनाएं, और बाबू अनथवा जी की तरफ से मंगल कामनाएं विदेश भावना उषा पूजा और पूरे अनथवा परिवार की तरफ से जो कथा बोन के रहने वाले हैं।

इस बार पेश करते हैं आप लोगों के लिए हम ये वो गाना जिससे हमने लिया है फिल्म दो आंखें हमारे हाथ से, 90s का ये ऐसा गाना है जो बहुत मशहूर हुआ था अपने ज़माने में और ये गाना आज भी सुनने में वही मज़ा देता है। चलिए ये गीत हम फ्रेंड मानियों के विकेश जी की पसंद पर पेश करते हैं उनकी पत्नी राधिका के लिए और उनके पूरे परिवार के लिए, खास तौर पर उनके माता पिता के लिए।

हम पेश करते हैं ये गाना होगा फिल्म कोई मिल गया से लिया गया और ये गाना हम रेखा जी के नाम करते हैं। रेखा जी ने त्यागूर से गाने की फरमाइश की है राधा के लिए, वीना और शांति के लिए। तो कोई मिल गया मूवी के इस गाने के साथ साथ हमारी आपकी मुलाकात दिलों की आवाज़ कार्यक्रम में समाप्त होती है। थोड़ी देर में हम आपके नाम करेंगे आज का भोजपुरी तड़का कार्यक्रम। मिलते हैं भोजपुरी तड़का में।

0: भोजपुरी तड़का
1: भोजपुरी तड़का।
2: नमस्ते हमी के सब श्रोता लोग के, नमस्ते नमस्ते सब श्रोता लोग के, और इले क्या लाइज हम के भोजपुरी तड़का कार्यक्रम भोजपुरी से तड़का लगाओ अब जहाँ स्वाद भोजपुरी की भाषा के मिली तो लोग के, और ये कर में तो लोग अपन फरमाइश के स्वाद भी जोड़ा जा और ये ऐसा छोंक लगाओ अब जा कि तो हर भोजपुरी के जन प्रेम बा और बढ़ बढ़।

जाए चले तो हर नाम करब जा तो हर पसंद के गाना हमने के कार्यक्रम में भाग ले बा जा ते टेलीफोन करिया जा 5251700005 पर मतलब एक पर मैसेज भेजे जा 5251700005 पर मैसेज भेजे जा और इतने मैंने करिया जा 4028085 पर और हम ही तोहर मैसेजेस ले अब जा तोहर से तोहर को ले अब जा और देख अब जा कौन गाना तोहर लोग पसंद करेला तोहरे पसंद के गाना चलाओ अब जा हम आई सोरे का तोहर संगे संगे चलब तोहर संगे संगे बढ़ब और बढ़ते चली जा हमने गीत संगे संगीत संगे राजकमल चिंतामणि जी के गवाली गीत संगे ये गाना हमने बजवाए लज्जा मानती जी के फरमाइश पर कथो बोन से मानती जी मंगले हमारी गाना अपन बहन विद्या खातिर Thank you.

चला जा संगे संगे चली जा हमने भोजपुरी के दुनिया में चले जा भोजपुरी के गीतवन के दुनिया में चली जा। अभी 9:21 हो बा चल अभी स्वानी दीपा जी के गावली गीतवा सुनी जाए गाना हमने से मंगले हवन ललिता जी प्रियले से ललिता कुशल जी गाना मंगले हवन अपन बहन लोग खातिर उनकर बहन हवन देवयानी ज्ञानी और उनकर ई गाना मंगले हवन ललिता जी अपन संगतिया लोग खातिर छोटी जी प्रभावती जी आत्माराम जी खातिर हरीश जी खातिर और उषा लोकाना खातिर सुखलाल मौसी खातिर और सब सुने वाला लोग खातिर तो चलो सुनी जाए गीत हमने बेस्वानी दीपवा जी के गावल

चले तने धिन तना सुनी जहाँ हमने राजीव मंगर जी के गावली गाना और ही गाना हमने बजवाए ला जा वीना जी के पसंद पर वीना जी का फुको से गाना मंगले हवन अपन पति रघु खातिर और अपन बेटा यादव खातिर ता चला सुनी जा हमने ई गाना राजीव मंगर जी के गावल हा चला तरी धिन तना हमने भी

और चला अभी कुछ हमने ज्ञान महीपत लाल जी की गावल गाना सुनी जा और ये गाना हमने सुनी जा आत्माराम जी की पसंद पर आत्माराम जी गाना मंगला वन अपन बहन ललिता खातिर बहन छोटी जी खातिर बहन प्रभावती जी और बहन सुदेवी जी खातिर और ये गाना इस परिवार खातिर मंगला हवन बेलिया के

चला सुनीजा हमनी चमके चमका थोला झुमका वो झुमका जो चम चमा चम चम केला पसंदराज जलीम जी गाना सुनावा था वन और इसने खोजा था वन शांति जी तेगोसे शांति जी गाना अपन पूरा मराठी परिवार खातिर मांगा था वन दागुचिया के और अपन दागुचिया के अपन भगीना ओम खातिर मांगा था वन हमने के पूरा टीम खातिर भी बहुत बहुत धन्यवाद शांति जी।

पाव के पयलिया अभी छमाछम बजते जाए इस जुबेदा गाना सुन के चला हमने रमराम तो हर जी के गाँव वाली गाना सुनी जा अब्बू जी के फरमाइश पर अब्बू जी गाना मंगले हवन हमने के पूरा टीम खातिर और आफेज आसलम आया जायान जाहिरा काला चोटी खातिर रईस खातिर और अप्पी और उनकर पत्नी खातिर

दादा के कहानी दादी के कहानी चला सुनी जो हमने ये गाना रंभा माफ करिए गासन सिंगारों जी के गावल ये गाना गासन सिंगारों जी के गावल और ये गीत हमसे मंगले हवन गायत्री जी नोवेल फ्रांस से अपन मामी कल्याणी मोहन जी खातिर मायबू के फिर अपन मौत आइलों के भाभी शकुंतला जी खातिर अपन बेटा अजय खातिर नोवेल फ्रांस के अपन संघतिया गीता बाई जी खातिर और यही गाना हमने फ्लिक ऑफ फ्लैग के अनिता जी के पसंद पर बजवावत हैं जहाँ उनका सब संघतिया लोग खातिर और उनका पूरा परिवार खातिर और ये गाना हमने बजावत है जहाँ गासन सिंगारों जी के गावल ये

दादा दादी की कहानी सुनला के बाद चलम और दालबे के अनीता जी के पसंद पर करुणा अमृता और ईतू परिवार खातिर गोगा परिवार खातिर लाल जी परिवार खातिर बसंत सुपोल जी के गावाले को गाना सुनी जा और ई गाना तो बनाने के सुनी ला जा चला अनीता जी के पसंद पर आज ही सुन ले ला जा

0: भोजपुरी तड़का, भोजपुरी के स्वाद, संगीत के खुशबू, सुरेखा संगीत, भोजपुरी तड़का।
1: तड़का लगाया जा हमने फ्लोरियल के वीना जी के पसीन के संगे संगे, और चला सुनी जा हमने सुना नयन के गावल गाना।

चले जागे बढ़ते चले जाओ और ये भोजपुरी तड़का कार्यक्रम में अभी कुछ हमने सुनी जा संजय सिंह गुलाम जी के गावल गाना और ई गाना हमने बजाया थे जब बोल दे एल्बम से लेवल गल्ला और ई गाना में चांद जैसन मुखड़ा लो कहता हमने के गाना हमने से मंगले हवन संध्या जी रहलन कौफुखो और कौफुखो से गाना मंगले हवन संध्या जी अपन बहिन इंदिरा खातिर अपन बहिन रेणुका और बहिन माया खातिर

0: भोजपुरी तड़का, भोजपुरी के स्वाद, संगीत के खुशबू, सुरेखा संगीत, भोजपुरी तड़का।
1: 10:19 हो गलबा और श्रीमती जी के पसंद के गाना हमने बजवावा था जा चंद्रदेव जीबो धन जी के गावल। श्रीमती जी सुयाक से गाना मंगले हवन चंद्रमुनि परिवार खातिर और लिस्कालिये के मोहित परिवार खातिर।

0: भोजपुरी तड़का
1: भोजपुरी तड़का
2: चला तड़का लगाए ला जा अब्रिकुत हमनी राकेश परमेश्वर जी के गीत संगे चिंता ना करे के सलाह देवत होवन और चिंता ना करे के सलाह मान ल चिंता कर बजा त बड़ी दुख हो जाला बाकी कोनो कोनो चिंता रही ओकरा एगो तरह से अपन एगो समस्या के हल के तरह देखी जा और ये जे हल खोज बजाता हल सब चीज के मिलेला खोजला से सब हल मिलेला चले ये गाना हमने बजवाए ला जा मनोज जी के पसीन पर मनोज जी रहे लन प्लैंदे गोश और ये गाना मंगले हवन अपन पत्नी सीता खातिर अपन बेटा कवि और बेटी मीना खातिर तो चला सुनी जा ये गीत हमने चिंता ना करे होला गाना है राकेश परमेश्वर जी के गावल

और अभी कुछ चला हमने राजन लक्ष्मण जी के गावली गाना सुनी जा माफ करिए राजन लक्ष्मण जी के पसीन के गाना सुनी जा और तो पसीन करे लनी गाना बसंत सिपोल जी के आवाज़ में दूल्हा राजा के लेके चले वाला गाना राजन लक्ष्मण जी के फरमाइश के गाना हमने बजवा थे जा उनकर पत्नी माला खातिर बेटी प्रगति खातिर और बेटी प्रार्थना खातिर लाफलो आके परिवार हवन जा और उनकर बहन मानती जी हवन भगिनी उर्मिला तुलसी हवन और बशही के पूरा लक्ष्मण परिवार खातिर मंगले हवन

रंभा राम तुहल जी के पोपुरी गाना चलो सुनी जाओ री पोपुरी गाना तो बहुत कई खुशी रहलन जा सुने के आज हम इसी गाना मंगले हवन सिद्धार्थ जी सुयाक रहलन और ई गाना मंगले हवन अपन पूरा परिवार खातिर अपन पत्नी राधिका खातिर और अपन बेटी मनीषा खातिर और संगे संगे उनका संगतिया लोग भी हवन जा अभी और उनका संगतिया लोग में शामिल हवन जा विजय विनेश और राकेश जी चला संगे संगे सुनी जाए गाना

0: भोजपुरी तड़का, भोजपुरी के स्वाद, संगीत के खुशबू, सुरेखा संगीत, भोजपुरी तड़का,
1: भोजपुरी तड़का,
2: भोजपुरी तड़का,
3: भोजपुरी तड़का में अभी कुछ सुनी जाने पूर्णिमा फुकी राज्य के गावले को गाना पल नाम है झूलेला श्री राम। और एक श्री राम जी आल हवन साबित जी के घर में, साबित जी के परिवार में एगो नन्हा सा प्यारा सा राम आलवा और उनकर बेटा अजय और बहू सुनैना के माता पिता के दर्जा दे दिलेवा। चल ई गाना हमने ई प्यारा सन राजा बेटा के नाम करी जा।

और अब समय हो बहमनी बजाओ थे जब बिहारी ये हरि प्रेम जी के प्रसिद्ध के गाना प्रियोले से मंगले हवन हरि प्रेम जी गाना यह अभितानंद बीजन जी के गावल

और चला हमने प्रस्तुत करी जा हमने के भोजपुरी तड़का कार्यक्रम के अंतिम गाना और ये अंतिम गाना हमने आदेश ठाकुर प्रसाद जी के गावल सुने थे जा ये गाना नया नया सफेद वालों पर ध्यान देवे के एगो सलाह चला ये गाना सुनी जा और ये हमने ये कार्यक्रम नीचे पर समाप्त करे जा रात के 11 बजे सुनिया जा आज के हमने के सुनहरे पल कार्यक्रम गिनीशा की प्रस्तुति में आवतला फिर मिलब जा तब तक खातिर शुभ रात्रि नमस्ते।

0: This is Radio Marxist.
1: 您好
2: ，Assalamualaikum. Kim to Mauritius.
3: Namaskar.
4: Shudrendri ki hrudaya purvaka namaskaram.
5: Ungal anaivarukkum vanakkam.
6: Radio Mauritius par dil se swagat hai aap sabhi ka.
7: सुनहरे पल रेडियो मॉरिशस के साथ
8: गुड इवनिंग जी, नमस्कार और गिनिशा का प्रणाम स्वीकार कर लीजिए. जी हाँ दोस्तों, रेडियो मॉरिशस पर लेकर आ रहे हैं वो खूबसूरत लम्हे, वो नगमे जो दिल को सीधा गुजरे हुए ज़माने में लेकर जाते हैं. आज रात सचेगी एक महफिल पुरानी बॉलीवुड के अमर गीतों का. लता

0: A sunehri pal on Radio Mauritius.
1: Oh, Mary.

आजकल विश्व एक ऐसा शो है जहां हर गाना लेकर आता है यादों की खुशबू, वो दिन, वो पल, वो मोहब्बत, सब कुछ फिर से महसूस होगा इन एवरग्रीन बॉलीवुड मेलोडीज के साथ। बिल्कुल जी, अगर आज आप भी चाहते हैं अपने किसी खास को डेडिकेट करने के लिए प्यारा सा गाना, तो बस आंखें बंद कर लीजिए और उनको याद कर लीजिए और अपने उन खूबसूरत यादों के सहारे आप बस इन गीतों को एंजॉय कर लीजिए। तो जुड़े रहे हमारे साथ और बने रहे इस शाम को और भी यादगार बनाने के लिए। पुराने गीत, सुकून भरी बातें और दिल से जुड़ी यादें, बस यही है सुनहरे पल की पहचान।

आई रियली होप कि आपको दिल से अच्छा लग रहा है हर एक गाने जो हम बस पेश कर रहे हैं आप लोगों के लिए। एक ऐसी शाम जहां वक्त धीरे ही चलने लगता है दोस्त, और पुराने बॉलीवुड गीत दिल को सुकून देने लगते हैं। बिल्कुल हम हैं गिनिशा जो बड़े प्यार से आपका साथ दे रहे हैं। वैसे देखा जाए चाहे वो पहला प्यार, बचपन की यादें या किसी अपने की मुस्कान, हर एहसास को फिर से जिंदा करेंगे ये अमर नगमे। तो अपने रेडियो का वॉल्यूम जो है थोड़ा सा ऊंचा कर लीजिए, दिल को हल्का सा मुस्कुराने दीजिए हमारे साथ और खो जाइए सुनहरे पल के जादू में।

पुराने गाने सिर्फ सुनने के लिए नहीं होते हैं मेरी जान, देखा जाए तो ये महसूस करने के लिए होते हैं, और ये हमेशा इस बात को हम दोहराते रहते हैं ताकि आप दिल से महसूस करें। और इसी एहसास के साथ रेडियो मॉरीशस लेकर आए हैं एक खास म्यूजिकल सफ़र, जहां हर गीत में बसी है मोहब्बत, बसी है दोस्ती और जिंदगी की प्यारी सी मिठास। तो जुड़े रहे हमारे साथ और चलिए लौट चलते हैं उस खूबसूरत दौर में जहां म्यूजिक में सच्चा सुकून था।

who are working right now, जी हाँ दोस्तों, बहुत कुराश तो यू, एंड जितने भी लोग फिलहाल ड्राइव कर रहे हैं, हम तो कहेंगे धीरे धीरे हौले हौले गाड़ी चलाना, और रेडियो का वॉल्यूम तो वैसे ही बढ़ा चुके हैं, तो चलिए ये अगला नगमा खासकर आपके नाम।

तो चलिए जी, फिलहाल के लिए इट्स टाइम फॉर गिनिशा टू से गुडबाय टू यू। आप हमें इजाजत दीजिए, शुभ रात्रि, शब्बा खैर, फिर से मिलेंगे एक और नए सुनहरे पल के खूबसूरत सफर में।

आपकी खट्टी मीठी यादों में आपके संग MVC रेडियो